0: dáva s kunžedy.
1: Lunchbox with Kaiten.
2: Kya namaste, sat sri akal, assalam alaikum, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein. Lunchbox show it is. Mera naam Kaiten hai aur aap mujhe abhi se leke 3 baje tak sunenge. पर यस आप बने रहिए बिकॉज बहुत सारी बातें करनी है और आप यहीं पे रहिए. अगर आपने ट्यून इन कर लिया तो ऐसे ही रखिए बिकॉज बहुत सारी बातें बतानी है आपको आज. वैसे हो सकता हो नहीं, डेफिनेटली हो सकता है भाई, लग रहा है मुझे कि ओवरनाइट आपको हीट पंप जो है घर पे वो ऑन ही रखना पड़ेगा या फिर अगर आप वुड फायर यूज करते तो उसे भी चालू रखना पड़ेगा बिकॉज इट गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड टुनाइट. 2 डिग्री बता रहा है यार. आई डोंट नो द लास्ट टाइम कब था ऐसा जब हमने एक्सपीरियंस किया. सो ऑफिशियली कह सकते हैं कि आज के दिन आपके लिए ठंड जो है एक्चुअल विंटर एंजॉय करने का मौका है. सो यस, गेट रेडी और रजाइयां सब निकाल दीजिए, स्वेटर 2-3 आराम से लेयर निकाल दीजिए ताकि आप घर पे बैठ के यू नो यू डोंट फील लाइक यू नो सो कोल्ड. सो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड बिफोर यू स्लीप. बट यस, बने रहिए, हम थोड़ी देर में होमसिक रेमेडीज के लिए भी बात करेंगे. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू मी. शुरुआत करते हैं ये बाबा फितना फरेबी नकाश अजीज की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना.
1: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स, मेरा नाम केतन है और यस शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट की। पहला सेगमेंट जो है वो है होमसिक रेमेडीज और यहां पे एक मैसेज आया है साहिल भाई का। एक्चुअली आया तो दो तीन है लेकिन उनका मैंने चूज किया है बिकॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा उनका मैसेज। यस्टरडे was a major festival back home and seeing all the family photos on WhatsApp made me so incredibly homesick. Back home in India, festivals meant public holidays, street decorated and lights, music everywhere and sweet being exchange and with every single neighbor. It's just another regular work day. You wake up at 6 a.m., drive through morning traffic in the rain, sit in a quiet office cubicle and come back home to do dishes. Celebrating festivals away from home feels so quiet and empty. How do we keep that festive spirit alive when the city around us is just business as usual? Well, pehla sawal to mera yahan pe ye ki ye festival kya hai? Like, you know, is it some regional festival jo aapne wahan pe celebrate kiya hai? Ya fir this is something jo aapke ghar mein program tha but you couldn't make it? So, साहिल भाई ये तो मेरा सवाल था पहला, बट yes, let's assume कि आपका कोई फैमिली फंक्शन था तो डेफिनेटली यार वहाँ पे तो यू डेफिनेटली गोना मिस और उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही मिस करेंगे। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि हम रिक्रिएट करें या फिर कुछ ऐसा करें, बट वहाँ पे उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ। कभी जब इंडिया में जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और मैं जा नहीं पाता हूँ, सो बेस्ट पता है क्या मैं क्या करता हूँ, मैं बस वीडियो कॉल कर लेता हूँ। आई नो दैट फिजिकली आई वोंट बी देयर, physically I won't be here, having a great fun as well, but at the same time aap video call kar sakte hain, aap sabhi se baatein karo. Maybe what we did this time, because Khushbu ke bhai ka, I remember Khushbu ke bhai ka ki wed engagement thi on in April, I guess, yes April ko engagement thi, and of course, you know, Ihan was so young so we couldn't travel, there was no point and uske liye safe bhi nahi tha एंड स्पेशली इतनी गर्मी होती है वहाँ पे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमने पूरे कपड़े पहने अच्छे से, एकदम नए जैसे शादी में पहनते हैं वैसे हमने कपड़े पहने, एंड देन व्हाट वी डिड इज वी जस्ट हैड वी कॉल्ड देम, सो आई कनेक्टेड माय लैपटॉप विद द बिगेस्ट स्क्रीन, क्योंकि लैपटॉप से ऑफकोर्स यू कैन मेक अ व्हाट्सएप कॉल एज वेल, इवन फॉर द कंप्यूटर एज वेल। तो एक बड़ी स्क्रीन हो गई, सो बेसिकली वी कुड एक्चुअली सी एवरीथिंग इन अ बिगर पिक्चर, और वहाँ से हमने कॉल कर लिया, देन यू नो दे स्टार्टेड पासिंग द फोन टू ईच एंड एवरी पर्सन, तो हम ऐसे करके बात करने लगे, एंड देन ऑफकोर्स स्क्रीन बड़ी होने से काफ़ी टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हमको ऐसा लगे कि हम भी वहीं पर इन्वॉल्व हैं। म्यूज़िक वहाँ पर चल रहा था, सेम तरह का म्यूज़िक मैं भी यहाँ पर चला रहा था, सो इट वॉज अ गुड एक्चुअली। ऑफकोर्स 100% तो कुछ कवर नहीं कर पाया, बट जहाँ ऑप्शन नहीं हो उसके हिसाब से तो बहुत ही बेटर है। आई होप ये जो जवाब मैंने दिया है आपके लिए कहीं ना कहीं काम आएगा, बट ये यहाँ पे अगर किसी और के पास बेहतर आंसर है कि उसको कैसे कर सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-4866 पे, या फिर आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। इट्स गुड यार, हेल्पिंग ईच अदर, कोई अगर यू नो होम सिकनेस के यू नो फेस थ्रू हो रहा है तो डेफिनेटली हमें हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे, यू नेवर नो यार, वी माइट बी द नेक्स्ट वन इन फ्यूचर, तो यस हेल्पिंग इज ऑलवेज देयर। बट यस थैंक यू सो मच साहिल भाई आपके मैसेज के लिए। एक का मैसेज आया है मोहम्मद भाई का, वो कहते हैं गुड आंसर केतन, अरे वाह क्या बात है, मेरी तारीफ हो रही है, थैंक यू मोहम्मद भाई। उसके बाद यस साहिल भाई थैंक यू सो मच, आप होप ये आंसर अच्छा हो, बट यस रिक्वेस्टिंग टू अदर लिसनर्स एज वेल, अगर आपके पास भी और कोई बेहतर सुझाव हो यहाँ पे तो प्लीज़ मुझे बताइए, बेहतर भी नहीं अगर कुछ और भी सुझाव हो, चाहे आपको लगे वो बेहतर नहीं हो बट स्टिल इट माइट गोना हेल्प सम ऑफ द लिसनर्स, बिकॉज हर कोई यहाँ पे मैसेज नहीं करता है, सम पीपल आर लाइक यू नो वो सिर्फ सुनते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक बट दे मे नॉट टॉक एज वेल, सो यस 5599 इज द नंबर।
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: on vacation.
4: A secret destination. Two lucky people. One.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
1: Andy didn't think he needed a DVS system.
2: Nah, we're all right, aren't we?
1: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
3: Yeah, Dad!
1: So, Andy got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it. Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
4: Escape to Fiji and Hawaii with Flight Centre. Book a 13-night fly, stay and cruise from $5,899 per person. Fees, T's and C's apply. Departs Auckland. Flight Centre, your centre for travel.
5: 2pm call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
0: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
6: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
7: Lunchbox with Ketan.
8: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
7: Hum. Office shout out.
9: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है. बस कुछ खास से बात यहाँ पे करेंगे. आज हमने मैसेज की रिक्वेस्ट नहीं की है, वैसे आप फिर भी कर सकते हैं. 5599 इज द नंबर. लंच टाइम यानी कि ऑफिस शाउट आउट के लिए मैंने मैसेज करने के लिए आपको बोला है, तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आप क्या खा रहे हैं, और अगर घर से बनाया है तो बताइए मुझे, अगर नहीं बनाया है कहीं और से लाए हैं, ऑर्डर किया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. बट यस, यहाँ पे कोई खास मेहमान आया है, और खास मेहमान वो नहीं, सैंडी नहीं, सैंडी नहीं, सैंडी होती है, बट आज खास मेहमान कोई और ही है.
10: फॉर अ चेंज.
9: हाय हाय पूजा, क्या हाल है?
10: सैंडी बोलने जा रहे थे.
9: नहीं नहीं, मैं वो सलाम पता नहीं क्या बोलने वाला था, बुला बुला बोलने वाला था.
10: बुला बुला, अच्छा,
9: तो वो आधे ही रह गया.
10: अच्छा, बट बुला तो बस से शुरू होता, तुम्हारा सा क्यों निकल रहा था?
9: सलाम मतलब, क्योंकि मेरी आदत है ना, मुझे तकिया कलाम जो बोलते हैं
10: आपका.
9: हाँ
10: अच्छा,
9: मतलब जैसे क्योरा नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, वो बुला के पहले सलाम वालेकुम आता था इसलिए.
10: चलो वापस से करते हैं.
9: हाँ नहीं यार वो अच्छा नहीं, वो एक बार जो निकल गया उसको सही, वो फिर वैसको वैसे
10: निकल गया तो निकल गया ना, वापस नहीं जाएगा.
9: हाँ मैं वैसे अच्छा कवर अप करता हूँ.
10: हाँ वेरी नाइस, आई नो, वही तो मेरे को वो पता चल गया. बट एनीवेज, हाँ वैसे तो कॉफी ब्रेक में आप रहते हैं अपना स्पेशल अपीयरेंस.
9: मैं रहते नहीं हूँ, राज रखा जाता है.
10: हाँ, जबरदस्ती
9: थोड़ा सा बात करके चलते हैं.
10: हाँ, तो फिर पूरा कॉफी ब्रेक निकल जाता है.
9: हाँ, आपके टाइम पे भी ये है ना कि एक तो अर्ली मॉर्निंग होता है.
10: मेरे टाइम पे कोई नहीं आता भाई, मैं तो किसी को फोन भी करो तो कोई उठाता पता भी नहीं
9: है। नहीं यार, फिर भी इतने लिसनर्स हैं यार, मैं तो जब भी
10: नहीं नहीं उसमें
9: हमेशा कोई ना कोई होता है।
10: टीम मेंबर्स की बातें कर रही हूं मैं।
9: नहीं आप फोन करो, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा।
10: नहीं मुझे पता है क्योंकि बहुत बार हुआ है कि लाइक जब भी हम किसी चीज के लिए कॉल करते हैं ना, तो हमें कोई भी टीम मेंबर को अगर हमें कॉल करना होता है सुबह करते कोई नहीं उठाता है, सो रहे होते हैं।
9: मेरे को करिए।
10: हाँ फिर भी आप नहीं उठाओगे, मुझे पता है। उस दिन तो मेरे को रुजबे ने भी कॉल किया, मैंने भी नहीं उठाया। मैंने बोला चलो आज बड़ा चेंज मैं भी फील करती ना कैसा लगता है। बट या तो लंच बॉक्स में आती है सैंडी अपना कैमियो देने के लिए, फिर रुजबे आ जाते कभी कभी, तो आज मैं भी आई हूँ।
9: तो मेरा दिल क्या धक धक करने लग जाता है कि तो भाई आज क्या होने वाला है।
10: मैं तो काम से आई थी, पर आपने बोला चलो बातें करते हैं। हाँ, ओके, मेरे को तो मजा आता है ना, इसी के तो पैसे मिलते हमको। अब यही करना बंद कर देंगे तो क्या होगा।
9: इतना भी रियल नहीं बोलना चाहिए
10: भाई।
9: लोगों को बोले, लोग पता क्या बोलेंगे, उनको लगेगा कि बहुत आसान है, तो बोलने ही बकवास ही करनी है, पैसे मिलते
10: हैं। वही है यार, आप तो हाँ, आपको तो मजे है ना, बस बैठे रहो वो चार घंटे बातें करो।
9: हाँ,
10: हो गया
9: बातें
10: काम
9: करो।
10: फिर वो दिमाग में
9: मुझे बोलते हैं। हाँ। मेरे काफी दोस्त है, वो तो बोलते हैं यार क्या कूल जॉब है ना तेरी। मैंने कहा क्या कूल है। मैंने कहा वो तो स्टार्टिंग में लगता है, जब एक्चुअली कंटेंट शुरू वो भी नहीं बताना था। मतलब ऐसा नहीं हो कि अपनी जॉब खतरे में आ जाए।
10: हाँ वो भी बात है,
9: ऐसा नहीं लगना चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें तो यार, पसीने छूट जाते हैं।
10: दिमाग की मेहनत होती है, थोड़ा सोचना पड़ता है बहुत। क्या बोले क्या ना बोले, भी कैसे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करे कि वो मैसेज भेजे, वो कॉल करे, तुम कर रहे थे अभी।
9: सही में
10: तो वो भी करना पड़ता है ना, सारे मैनिपुलेशन सीखने पड़ते हैं।
9: आप ऐसे रोज आया करो
10: ना, मजा आ रहा है ना, तुम्हारा टाइम जो निकल रहा है।
9: नहीं वैरायटी भी है।
10: अच्छा,
9: क्योंकि सेम चीज नो डाउट, बिकॉज दे ऑल्सो एंटरटेन अ लॉट एंड दे ऑल्सो गिव अ वेरी गुड आइडिया, बट यहाँ पे इवन यू वुड यू नो कनेक्टेड वेरी वेल, राइट। चेहरे बदलते रहे ना, तो
10: आप बुलाया करो, मैं आती रहूंगी।
9: हाँ बिल्कुल, आपका टाइमिंग ही तो ऐसा होता है ना, अब यू आर व्हेन आई कम यू ऑलवेज बिजी ऑन कंप्यूटर, यू प्रिपेयरिंग अदर थिंग्स।
10: क्या करे भाई, ये बोलते हैं कि सिर्फ बोलने के पैसे
9: बोलो
10: मिलते हैं।
9: किसी बोलने के पैसे नहीं। हाँ। बोलने के बाद का जो काम होता है ना, उसके भी पैसे मिलते हैं।
10: तो इसीलिए तो मैंने बोला कि हम सिर्फ बोलते हैं क्योंकि बोलने के पैसे मिलते हैं। मिलना पैसे तो तभी मिलते हैं जब बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी मिलता है। बट एनीवेज, ऑफिस आवर्स है ये, लंच लोग इंजॉय कर रहे होते हैं बहुत से लोग। मैंने तो ऑलरेडी आज थोड़ा अर्ली लंच कर लिया मैंने, बट अकेले में भी बैठ कर कभी खाना खाने का मजा क्या आता है वो फील हो गया मेरे को आज। हाँ मैंने अकेले बैठे बैठे लंच किया,
9: अर्ली लंच किया। मैं यूजली अकेले खाता हूँ, ऑब्वियसली इस टाइम पे वो टाइमिंग ही मेरा ऐसा है। बट व्हाट आई कैन नॉट ईट अलोन इज व्हेन देयर इज नथिंग फॉर मी एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स।
10: मतलब कुछ देखते रहना,
9: कुछ देखना, मैं उसके बिना खा नहीं रहा, निकलता ही नहीं है खाना। हाँ। ये मेरी बहुत गंदी आदत लग गई है।
10: I think it's a very common habit जो आजकल के जमाने में बहुत से लोगों को है, स्पेशली बच्चों को ही देख लो। हमने ही किया हुआ है ये, बट
9: नहीं बच्चों को तो चलो एक कह सकते कि हम आलसी हैं कि हम वैसा नहीं कर रहे हैं। मैं तो खा खा।
10: तुम जब बाप बने, हाँ। तुमने ऐसे अपने दिमाग में बनाया था कि मेरे बेटे को मैं तो खाना खिलाते समय कभी फोन नहीं दूंगा, आईपैड नहीं दूंगा।
9: मैं बोलूं क्या, वो तो खुशबू ने डंडा लगा रखा है मेरे को। गलती से उसने स्क्रीन देख लिया ना, ओ भाई, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि गलती करता बेटा है, पढ़ती बाप।
10: अभी तुमको ही पड़ेगी ना।
9: वो बेटा नहीं हो तो भी बाप को ही पड़ती
10: है। बट वो ये भी सोचो भाई कि इतना जो फ्रस्ट्रेशन है, एक तो पहले 9 महीने का फ्रस्ट्रेशन, फिर भी जो बाकी के जिंदगी जो साल गुजरेंगे उसका फ्रस्ट्रेशन तुम्हें भी आएगा।
9: नहीं लड़के भी फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं,
10: तुमको हक नहीं है फ्रस्ट्रेशन उतारने का।
9: हाँ हक नहीं है, ये तो खैर इसका तो जवाब ही नहीं है, ये तो अब क्या बोलूं मैं
10: इस मामले में। तुमको हक नहीं है ना, मैं वो बता रही हूँ।
9: मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों का किसी पे भी हक नहीं है।
10: नहीं नहीं बहुत से राइट्स है यार, पर इस मामले में
9: क्या गलती नहीं हो तो भी मानने का,
10: फ्रस्ट्रेशन निकालने का। बट यार दिस इज द थिंग ना, लाइक वी अभी आप देख लो, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, आई थिंक आजकल हमारे जो एल्डर्स है उनको भी बहुत बुरी आदत लग चुकी है कि खाते समय किसी से बात करते रहना,
9: right.
10: कुछ देखते रहना। आई नो आई रिमेम्बर माई ग्रैंड मदर, आई ऑलवेज रिमेम्बर हर। उनका एक था कि खाते समय वो अपना वो देखती थी, टेलीविजन पर प्रोग्राम देखती थी, और स्टार प्लस पे उस टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे।
9: आपके वहाँ पे आता था?
10: हाँ, मतलब क्या
9: हम कब की बात है ये?
10: हम कहीं गुफा में नहीं रहते थे।
9: अरे नहीं नहीं कहने का मतलब, क्योंकि
10: when I was growing up, like 2000s,
9: जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब जहाँ पे था वहाँ पे मेरे दूसरे कंट्री के नहीं आते थे ना।
10: हाँ हमारा आता था, बट वी हैड टू पे फॉर इट ना, इट वाज नॉट फ्री टू व्यू, it was a paid thing.
9: नहीं, paid तो हमारे इंडिया में रह के भी था हमारे।
10: अच्छा।
9: बट हमारे वैसा नहीं था, लाइक यू नो मेरे को पता नहीं एक्चुअली, हो सकता है मैं शायद नॉलेज
10: हमने बहुत से लाइक द शरारत वरारत सब हमने देख कर हम बड़े हुए हैं. और सारा भाई वैसे सारा भाई, ये खिचड़ी एंड वो क्या था बाबू बेबी, ऐसे बाबू बेबी.
9: अच्छा मैं कहा ये क्या है बाबू बेबी,
10: बहुत जल्दी जल्दी बोलती हुई तो ऐसा साउंड होता है. नहीं बहुत से शोज है, क्योंकि साथ बिग बॉस कभी बहू थी, कहानी घर घर की, बट माय आजी शी इज टू,
9: जो सारे डेली सोप्स जो है उसमें सबसे रिलेटेबल आपको कौन सा लगता है अब अपनी एक्चुअल लाइफ में?
10: अभी रिलेटेबल तो यार एकता कपूर का तो एक भी शो नहीं लगता, मतलब इतना तो नहीं होता.
9: चलो बहुत रिलेटेबल
10: नहीं, वैसा वाला तो नहीं होता. मैं ऐसे कोई खड़े होकर अपने दिमाग में ऐसे वही सब
9: नहीं,
10: वो वैसे प्लानिंग प्लॉटिंग भी मैंने एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं अभी तक. आई थिंक रिलेटेबल शोज ना पहले आते थे, लाइक इफ यू आई रिमेम्बर वाचिंग शांति, बाय द वे उस जमाने के शोज. शांति नहीं देखी तुमने? मंदिरा बेदी थी उसमें, उनका नाम था शांति.
9: और कुछ तो था, मैं बहुत छोटा था.
10: हाँ उस टाइम से देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. देयर वाज वन शो व्हिच यूज्ड टू कम,
9: वो दूरदर्शन पे आता था शायद,
10: प्रोबेबली. तू मैं देखी तुमने?
9: तो मैं याद दिला मेरे को,
10: रीमा लागू सास हुआ करती थी.
9: ये कौन है
10: रीमा लागू? यार आपको
9: क्या नॉलेज है आपकी यार.
10: I am shocked. This boy, this man doesn't know who रीमा लागू is.
9: नहीं वो पहला वाला सही था. पहला वाला सही था.
10: तुम्हें रीमा लागू नहीं पता?
9: मेरे शक्ल देखनी पड़ी है. मैं वेरी बैड विद
10: सलमान खान की मम्मी, किस शो में वो नहीं बनी है?
9: ओ वो ओ
10: शो नहीं, फिल्म में नहीं बनी.
9: मैं उसको उसके रीमा से नाम से जानता हूं, उसे मां नाम से जानता हूं.
10: उनका नाम रीमा लागू ही है,
9: क्योंकि हर मूवी में मां मां मां बोलते हैं उसको.
10: अनफॉर्चूनेटली शी इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड नाउ, बट रीमा लागू जी जो थी वो सासू मां बनती थी. और सुप्रिया पिलगांवकर जो की सचिन पिलगांवकर की वाइफ है, वो बनती थी बहू. और सचिन पिलगांवकर वॉज द आई थिंक प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द शो तू में. wow. मेरे को वो भी बहुत पसंद था,
9: मैं शायद देखा होगा.
10: अरे बहुत पॉपुलर शो था उस टाइम पे, तो ये सारे शोज हम देख के बड़े हुए. कहां की बात कहां लेकर चली गई मैं. ओह माय गॉड आई एम सो टैलेंटेड.
9: पूछना मेरे को ये था, बट मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि मुझे कितना कम बोलना पड़ता है.
10: तुम आओ ना ब्रेकफास्ट शो पे, कल आओगे?
9: हां हां बिल्कुल आऊंगा.
10: नहीं नहीं ब्रेकफास्ट शो पे.
9: अच्छा हां यार मेन पता क्या है, मैं इतना सुबह, अरे यार मेन दिक्कत है उसको छोड़ना पड़ता है किंडी.
10: अच्छा
9: तो इसलिए डिफिकल्ट है.
10: हम उन्हें बातें कर रहे हैं, मैंने बोला भूलना चाहते हो कि माइक ऑन है. मतलब अपने टेंशन में निकल चुके हैं हम.
9: हाँ नहीं नहीं मैं एक्चुअली बोला भी था दैट आई वुड लव टू कम एंड ऑल, बट द ओनली थिंग इज वो किंडी में ड्रॉप करना पड़ता है. तो बस वो इशू,
10: मुझे पता है भाई टाइमिंग का बहुत पंगा पड़ता है. मतलब लाइफ को इतना चेंज करना पड़ता है, एक सर्टेन टाइम पे सोना पड़ता है ताकि अगली सुबह थोड़ी एनर्जी के साथ जागो. बहुत कुछ जिम विम नहीं होता, ये सारी चीजें छोड़ दो, वीकडे में बाहर जाना छोड़ दो, वीकेंड में ही जिंदगी होती है हम लोगों की, ब्रेकफास्ट शो वालों की.
9: चलो बढ़िया यार.
10: Anyways,
9: चलो इसी बहाने
10: गुड टू बी ऑन द शो.
9: गाना थैंक यू यार, थैंक यू. काफी मेरे को लग रहा है पहली बार जगह बंदी हुई है. तो
10: नहीं यार किया है ना
9: इस टाइप की, तो मेरे को लग रहा है
10: के टाइम पे किया बस. उस टाइम तुम्हारा,
9: हां बट उस टाइम अलग टास्क थे ना.
10: नहीं नहीं तुम्हारा ध्यान ही अलग था, मतलब तुम ही अलग थे उस टाइम. तुम रेडियो थॉन वाला केतन मुझे बहुत पसंद है. आई जस्ट वेट फॉर दैट केतन.
9: क्या किया मैंने उस दिन?
10: अरे बहुत एंटरटेनिंग होते तुम, क्या करते तुम्हें याद ही नहीं रहता ना इसीलिए.
9: अच्छा मतलब मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ हो रही है? कोई नहीं फिर से लेके आएंगे, वो बाप बन गया ना.
10: हां अभी तो थोड़ा दब जाओगे ना,
9: सोच समझ के करना पड़ता. चलो गाना चलाते हैं अब.
6: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन में भी कॉशियस रह सकते हैं। ओवरऑल ये रिपोर्ट दिखाती है कि न्यूजीलैंड का जो जॉब मार्केट अभी भी प्रेशर में है और इकोनॉमिक रिकवरी को स्ट्रॉन्ग होने में अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है।
1: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. चलिए एक सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए Bollywood से। Basically आपको क्या करना है? आपको guess करना है कि वो जो dialogue है वो कौन सी फिल्म से है? So are you guys ready? I'm pretty sure you are. Well, सबसे पहले तो ये music को मैं down करता हूँ. And then yes. Now I'm gonna play the song और song नहीं actually मैं यहाँ पे play करने वाला हूँ वो dialogue और आप मुझे बताएंगे कि ये dialogue किसके बीच हुआ है like कौन किससे बात कर रहा है और कौन सी फिल्म का है. There you go.
3: मोहिनी बोल ना आती क्या अपन लोग को डांस सिखाने.
4: इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी नहीं है, दुनिया में दो ही लोग कर सकता है मालूम, एक जेलो आणि एक शकीरा. डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है. आर्ट
3: तो अपन ने का बोला ना हुए.
4: चल निकल यहां से.
2: दैट्स सो कूल है. So yes, 5599 is the number जहाँ पे आप मुझे भेजेंगे ये मूवी कौन सी थी और ये डायलॉग डिलीवरी जो हुई है किन दो लेजेंड्स के बीच हुई है. जी हाँ, आप 5599 पे मुझे टेक्स्ट भेजिए ताकि आपका जवाब मैं यहाँ पे रजिस्टर कर सकूँ. एंड लेट्स सी कितने लोग, कितने लिसनर्स जो हैं वो सही जवाब देते हैं. 5599 is the number, याद रखिएगा.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Lunchbox with Ketan.
3: हीरा लड़का है. Telescope लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
2: हम.
4: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल, आज 14 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 2 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज वैसे ओवरऑल कोई बारिश नहीं होने वाली है, बट सनसेट होगा 5:40 PM पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत डे के लंच बॉक्स शो में फिर से। इफ यू आर लिसनिंग टू मी, अभी ज्वाइन किया है तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आप मुझे अगर 12 बजे सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, सुनते रहिए। इस आर में आपको बॉलीवुड से लेके कुछ लेटेस्ट खबर पे भी नज़र मैं आपको बताऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी खबर आई कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो यस आप बस बने रहिए, उसके बारे में भी देखते हैं, कुछ बात करेंगे। बट यस, tune in and keep enjoying our show.

0: लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मुझे मैसेजेस भेजिए 5599 पे, जहां पे हम बात करेंगे क्या कुछ ऐसा हुआ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 5599 इज द नंबर अभी के लिए, लेकिन यस से जब मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0800-004-866 पे। लंच बॉक्स
1: विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम।
3: A secret destination.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: Get one free Disney Ooshie with every $30 you spend at Woolworths. Plus, receive a bonus Ooshie when you buy participating finished products in a $30 shop. T's and exclusions apply. While stocks last.
2: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
5: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
8: join the Tribe!
9: Lunchbox with Ketan.
10: मुझे पसंद है लड़का.
9: हम. Lunchtime Rant Line.
11: वेलकम बैक. लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है. आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपकी कोई यू नो रेंट वाली बातें, रेंट लाइन वाली बातें यहाँ पे 0800-004-866 पे, या फिर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 5599. वैसे एक मैंने डायलॉग चलाया था लास्ट आवर में और मैंने पूछा भी था कि वो कौन सी फिल्म का है. काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है और काफ़ी सही है. दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मूवी हैप्पी न्यू ईयर से हो रहा है. अभिषेक बच्चन उनके अपोजिट थे. शाहरुख खान नहीं था बेसिकली, वो दीपिका जो है, दीपिका पादुकोण वो बात कर रही थी अभिषेक बच्चन से. रोहिणी वेलिंगटन ने मैसेज किया है, ये वो कहती हैं उन्होंने सही 50-50 आउट से हैप्पी न्यू ईयर इज द राइट आंसर बट येस ऑफकोर्स शाहरुख खान इज नॉट इन द सीन. फिर लिखा है एक ने मूवी हैप्पी न्यू ईयर दीपिका पादुकोण और बोमन ईरानी, इन्होंने लिखा है नहीं. ये भी 50-50 आंसर है. मूवी का सबने सही जवाब दिया लेकिन किसी ने एक्टर का 100% नहीं दिया. भाई साहब, किसी ने भी अभिषेक नहीं बोला यार. नहीं, ये रहा अपूर्वा. अपूर्वा ने कहा है हैप्पी न्यू ईयर एंड इट इज़ अभिषेक एंड दीपिका के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. वेरी नाइस. एंड उसके बाद आयरनी ने भी सही जवाब दिया है, दीपिका अभिषेक हैप्पी न्यू ईयर. एंड उसके बाद मोस्टली दिल वाले किसने बोला है, दीपिका पादुकोण बोमन ईरानी. नोप, हैप्पी न्यू ईयर दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन, इन्होंने भी सही आंसर दिया है. बट दैट्स सो कूल यार. बट यस, रेंट वाली बातें ये रही. ये मैसेज मैंने शॉर्टलिस्ट किया है और ये कुछ इस प्रकार है. नरेश भाई का ये मैसेज है, वो कहते हैं मैंग्रे से शेयर्ड अ फनी स्टोरी. ही सेड लास्ट वीकेंड हिज होल फैमिली गॉट टुगेदर फॉर लंच. द टेबल वॉज फुल. बिरयानी, लैम्ब करी, फिश, सैलेड, स्वीट, एवरीथिंग वॉज रेडी. बट जस्ट एज नरेश वॉज अबाउट टू ग्रैब हिज फर्स्ट बाइट, वन कजिन शाउटेड, वेट, नो बडी touch the food. I need photos. Then another cuisine wanted a video of Instagram, and someone else said, let's take one with everyone standing behind the table. Oh God. And then poor Naresh stood there for almost 10 minutes smiling the food but not eating it. By the time the food session was over, the photo session was over, the hot food wasn't so hot anymore. He joked that in Fiji, Indian families these days, the camera eats first and the family eats later. That is so true, yaar. Not just in Fiji, Indian, but mere ko lagta hai ki aajkal काफी लोग करते हैं ये टू पोस्ट द फोटो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल. मतलब उसके चक्कर में मैंने नोटिस किया है, उसके चक्कर में लोगों को जब से जैसे फूड ट्रैवलर होते हैं या फिर फूड ब्लॉगर्स होते हैं, नो डाउट एक नाम बनने के बाद फूड ब्लॉगर्स को फ्री खाना मिलता है टू मार्केट. बट इनिशियली तो उन्हीं को अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके खर्चा करना पड़ता है, और जस्ट टू कीप एंटरटेनिंग पीपल वो हर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव हर दिन या फिर ऑल्टरनेट डेज में वो नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ का खाना भले ही उनको पसंद नहीं होगा बट फिर भी वहाँ जाते हैं, और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या तो वो झूठ बोलेंगे या फिर ऑफ कोर्स यू नो. बट व्हाट डू यू थिंक, लाइक कितने परसेंट हमको ऐसे व्लॉगर्स जो फूड व्लॉगर्स हैं उन पे बिलीव करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं. अब देखो सीधी सी बात है, आप हो सकता है कि उनको फ्री खाना मिल के या फिर उनको पैसा दे के यू नो अच्छी चीज़ भी बुलवाई जा सके, राइट? बट वॉट यू थिंक, कितना परसेंट हमें बिलीव करना चाहिए फूड व्लॉगर्स से? कोई है यहाँ पे फूड व्लॉगर्स जो शेयर करना चाहे अपनी स्टोरी? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफ़ी ऐसे भी व्लॉगर्स होंगे जो सच ही बताते होंगे, एंड दे रियली डोंट केयर वेदर दे आर गेटिंग पेड और नॉट, बट दे जस्ट वॉन्ट टू वर्क फॉर द व्यूअर्स एंड टू सर्व द ऑनेस्ट रिव्यू ओवर द टेस्ट. यहाँ पे हो सकता है दोनों तरह के लोगों, बट क्या लगता है आपको, क्या लगता है? आई मीन जस्ट लेट मी नो, आप 5599 पे मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं.
9: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। एक मैसेज आया है, जैसे कि वो ऑफकोर्स फूड ब्लॉगर की हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने मैसेज लिखा है, हाई अबाउट द फूड ब्लॉगर्स, मे बी दे गेट सम मनी ऑफ फ्री फूड बट इंडिविजुअल टेस्ट डिफर। आई वंस वेंट टू द डेजर्ट to a desert place on Auckland just because it looks so good on the reels. Unfortunately, the desert wasn't my kind. So, can't really blame the vloggers. Rachna, ye kaafi sahi baat boli inhone. Matlab, they are not actually blaming, but at the same time, they are giving, like, she personally didn't like the desert, according to what it has been showcasing. But yes, ye bhi baat sahi hai, but still, ek message aur aaya, unhone bola hai that over there, on the reels, it has shown a different price, but when I reached by looking at the reels, it was completely different. And when I asked why the price is different, then they said, oh, that is outdated. And then in return, I said, the reel just posted 2 days before. So in return, they had no answer. Wow, that's not so great, yaar. But yes, ye kaafi soch samajh ki baat hoti. My reaction over here would be that, you see, jo bhi social media pe hai ya jo bhi kahin pe bhi hai, those are the things which is just for you to know ki ye market mein hai. Sahi manna ya galat manna ya koi reaction na dena ya fir apna khud ka dimag likha ke. So that is completely depends on you personally. For example, एक movie की भी बात करें तो review तो बहुत जने देते हैं, but review वो अपने हिसाब से देते हैं, like what they personally feel. अच्छी लगी movie, नहीं लगी, ये आप तभी decide करने चाहिए जब आप खुद ना experience कर लें. तो basically वो आपका personal review होना चाहिए, ना कि generic review की भाई लोगों को पसंद नहीं आ रही है. भाई लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रही है? हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे है, जैसे मुझे, मैं आई एम वेरी कंसर्न, आई एम वेरी यू नो डिफरेंट देन व्हाट अदर रेडियो अनाउंसर्स आर. उनको मोस्टली मेरे को लगता है कि काफ़ी मूवीज़ जो है मुझसे ज़्यादा पसंद आती है, बट दैट डजेंट मीन दैट मूवी, अगर मेरे को भी पसंद नहीं आ रही, दैट डजेंट मीन कि मूवी बुरी है या मूवी अच्छी है. जैसे स्पाइडरमैन का भी मैंने बताया था दैट आई पर्सनली डिड नॉट लाइक द मूवी, बट दैट डजेंट मीन दैट मूवी ख़राब है. हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट हो. बट येस, दैट इज़ सो ट्रू यार, दोनों के लिए, दोनों ने अपना अपना पॉइंट रखा है, दोनों मैसेजेस डज मेक सेंस, दोनों ने अपना अपना पॉइंट रखा है, तो कुछ भी गलत नहीं यहाँ पे. यस, एट द एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़. आप अपना जो रिव्यू है वो खुद के हिसाब से दें, एंड दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन यू ओनली, नॉट कि भाई किसी ने बोला है इसलिए ये ऐसा है, वैसा नहीं.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
4: Say no to asthma and allergy triggers. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
5: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
8: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI.
9: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored.
10: Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
11: Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे?
12: हम।
11: लंच के मंच पे।
0: वेलकम बैक। चलिए बॉलीवुड की खबर पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। बॉलीवुड से क्या खबर है अभी के अभी पता पड़ जाएगा। तमिल सुपरस्टार सूर्या ने हाल ही में अपनी वाइफ ज्योतिका का दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म करुप्पू की रिलीज के टाइम उन्हें काफी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिल्म की रिलीज लास्ट मोमेंट पर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से अटक गई थी और सिचुएशन को संभालने के लिए सूर्या को एक्स्ट्रा लोन्स लेने पड़े। सूर्या ने कहा कि इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना सिर्फ उनका डिसीजन नहीं था बल्कि पूरी फैमिली पर उसका असर पड़ सकता था, और ऐसे वक्त में ज्योतिका ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया और बिना हिचकिचाहट के उनको सपोर्ट किया। सूर्या के वर्ड्स में, अगर कुछ गलत हो जाता तो पूरी फैमिली को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता, लेकिन ज्योतिका ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे वो एक्स्ट्रा लोन्स लेने दिया। इस पर ज्योतिका ने भी बहुत हम्बल रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा है कि इस डिसीजन का क्रेडिट उन्हें नहीं बल्कि सूर्या को ही मिलना चाहिए, बिकॉज उनके मुताबिक दोनों हर बड़े डिसीजन, चाहे फैमिली हो या करियर, मिलकर लेते हैं, लेकिन इस फिल्म को बेचने का इनिशिएटिव और हिम्मत जो है वो सूर्या की थी। आखिरकार करप्पू सक्सेसफुल थिएटर्स में रिलीज हुई है और ऑडियंस से अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ के बीच ट्रस्ट, पार्टनरशिप और डिफिकल्ट टाइम्स में एक दूसरे के साथ देने का भी एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दी है इन्होंने। दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल। बट ये तो थी आपकी, आपके लिए लेटेस्ट खबर। अभी वैसे सलमान खान की भी बात हो रही है कि कल एक्चुअली मैंने देखा है यार कितना VFX डाल रखा था। आई नो ही, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, Why any actor cannot pretend to be how he look? Why he needs to use so much of filter, जो और एक्चुअली ज्यादा गंदा दिखा रहा था। फॉर example, कल मैंने ट्विटर, देखो पहली बात तो ये मैं बात ऐसी बोलने वाला हूँ, पता नहीं, हो सकता है शायद काफ़ी सलमान खान के जो फैंस हैं वो शायद नाराज़ हो जाएंगे यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैं पहले बोल रहा हूँ, बट मेरा कोई पर्सनल हिट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आई एम जस्ट सेइंग इन अ जेनरिक वे कि आप जैसे दिखते हो, जैसे सलमान खान कैसे दिखते हैं आजकल, लोगों को ऑनेस्टली बताना, जो ट्रू फैंस हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रहे हैं। मतलब अगर लोग उनके फ़ैन हैं तो उनकी उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या उन्होंने, किस तरह की फिल्में बनाई हैं, उसके बेस पे उन्हें पसंद करते हैं। तो पता नहीं क्यों अननेसेसरी आप इतना फिल्टर डाल देते हो उनकी शक्ल पे, इतना मतलब स्मूथ बना देते हो, इवन दो ही इज़ लाइक क्रॉस 60 क्रॉस हो चुके हैं शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसमें और ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। यानी कि एक कल बिग बॉस का कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा रिलीज हुआ, उन्होंने टीज़र डाला कि पता नहीं कुछ ऐसा था कि शायद बहुत ही जल्द नया बिग बॉस आने वाला है, तो उसको लेके उन्होंने एक टीज़र डाला था सलमान खान ने, और उसमें मैंने मेकअप देखा, मैंने कहा भाई मेकअप नहीं था एक्चुअली, डिजिटल मेकअप बोलूँगा मैं उसे, इतना गंदा लग रहा था, इतना गंदा उन्होंने फिल्टर डाल रखी थी, पता नहीं जिन्होंने, जो भी एडिटर था, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं खुद एक एडिटर हूँ, तो पता नहीं क्या ज़रूरत थी। मैं यही चीज़ मैंने देखी कि हॉलीवुड में अगर होता तो हॉलीवुड में इतना नहीं दिखता है, यू नो दे जस्ट शो वॉट दे आर। सो या अगर कुछ बोलना चाहें यहाँ पे तो आप मुझे जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं, लाइक डू यू थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दीज बिग सेलिब्रिटीज टू पुट सो मच ऑफ फिल्टर आउट, या फिर इट इज़ फाइन टू बी हु दे आर, आई मीन क्वाइट इजी राइट। सो आप मुझे 5599 पे इसका जवाब दे सकते हैं। पर चलिए कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं, बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन आए हैं। दिल दीवाना हो गया, ये 0.16 का कलेक्शन किया है अभी तक इंडिया से। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इंडिया से 301 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वाओ, सुपर हिट होने वाली है। तो थोड़ी देर में देखता हूँ कि अभी तक इसका कलेक्शन जो है वर्ल्ड वाइड कितना हुआ स्पाइडरमैन का, ब्रांड न्यू डे का। आपको कैसी लगी स्पाइडरमैन मुझे बताइए 5599 पे। भाई तेरा स्टार है 0.78, अभी काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मूवी कैसी है, बट लोग उस बेस पे जज कर रहे हैं कि बंदे ने 25 करोड़ इंडिया के करेंसी जो है वो उस लगाए हैं, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ ही कलेक्शन किया है अभी तक, ये बताया जा रहा है। बैंड बाजा बारात 0.002, तेरा यार हूँ मैं 0.392 का कलेक्शन किया है। सो नॉट सो ग्रेट एज ऑफ नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वन हॉलीवुड फिल्म जो अभी लास्ट वीकेंड रिलीज हुई थी।
11: दिल से दिल तक,
13: property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Do you buy 0800 Rachna? Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: वेलकम बैक। अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट राइट्स जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक स्पेशल इंटरव्यू हमने लिया है अभय कोहली, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड MBIE में प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। उन्होंने बताया है कि हर एम्प्लॉय के पास रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इस कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी, वर्किंग आवर्स, एनुअल लीव, सिक लीव और बाकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के राइट्स वायलेट करता है तो मिनिमम एंटाइटलमेंट्स नहीं देता या अनफेयर ट्रीटमेंट करता है तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। न्यूजीलैंड में कई एम्प्लॉयर्स पर नॉन कंप्लायंस के लिए लाखों डॉलर्स, यू नो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के फाइंस भी लग चुके हैं। इंटरव्यू में ये भी डिस्कस हुआ है कि एम्प्लॉयज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन्हें साथ एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन या अनफेयर टर्म्स तो नहीं हो रहे। अगर आपको सैलरी, लीव या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डाउट हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों को फ्री एडवाइस, गाइडेंस और डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर वर्कप्लेस में कोई भी इशू है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने राइट्स और अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप एम्प्लॉय हो या फिर न्यूजीलैंड में नए माइग्रेंट हो या फिर बिजनेस ओनर हो, आपके लीगल राइट्स को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी लिए आप इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। बढ़िया, साथ में आप विजय एंड पूजा का भी बिट्स एंड कन्वर्सेशन अगर सुनना है ब्रेकफास्ट शो से तो आप हमें BF लिख के 5599 पे भेज सकते हैं। साथ में मेरा गाना आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, केतन सफायर, सफायर केतन, जो भी करना है आपको, जैसे भी करना है, सफायर

पॉइंट भी, तो आपको गाना मेरे को मिल जाएगा और उस गाने को आप देखिए, रिव्यू दीजिए कैसा लगा आपको, यहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं 5599 पे। बहुत कुछ नया कंटेंट हम लेके आने वाले हैं, तो बस आपको बने ही रहना है, बहुत सारी बातें होने वाली है। वैसे यस, भजन जैम्स भी आपके लिए लेके आ रहे हैं रितेश रवितेश देव अपने इनक्रेडिबल लाइव बैंड के साथ, एक बहुत ही बढ़िया फ्यूजन भजन एंड कीर्तन डिवोशनल म्यूजिक को लेकर। ये होने जा रहा है 22 अगस्त को शाम के 7 बजे के बाद, आप वैदिक सेंटर पहुंच जाइए 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो में। टिकट जो है वो सिर्फ $30 का है। वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो में होने वाला है। अगर बच्चे आपके 5 या 5 साल से छोटे हैं तो उनके लिए कंप्लीटली फ्री एंट्री है। स्नैक्स एंड कावा भी वहां पे मिल जाएगा आपको, जो आप परचेज कर सकते हैं। बट यस, टिकट्स जो है आपके लिए अवेलेबल है बहुत ही जगह, जिनमें से कुछ है eventbrite.com जो वेबसाइट है, आप वहां पे जाके खरीद सकते हैं, या फिर जयस फ्रेश पापाटोटो है यहाँ से आप खरीद सकते हैं, या फिर वैली फ्रेश पापाटोटो से भी आप खरीद सकते हैं, शिव प्रसाद केल्सन यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। सो जाइए अपने फ्रेंड्स फैमिली दोस्तों के साथ, ऑफकोर्स तो यू नो अड़ोस पड़ोस जिसके साथ भी आपको जाना है, एंजॉय करिए एक बहुत ही डिवोशनल कम्युनिटी को लेकर लाइव म्यूजिक विद फ्यूजन भजन एंड कीर्तन्स। बुक योर टिकट फ्रॉम eventbrite.com से।

0: मॉर्निंग्स विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: पास गूंजेगी।
1: बचाओ क्या,
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है, बने रहिए इस आर में। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है, जैसे कि स्पोर्ट्स से लेके करण औजला के शो के लिए भी बातें करेंगे यहाँ पे, यानी कि आपके पास मौका होगा जीतने का डबल पास, कैसे वो आगे जाके बताऊंगा मैं। लेकिन ये सभी के लिए आप बने रहिए और सुनते रहिए लंच बॉक्स शो अंटिल 3। उसके बाद सैंडी आएंगी फॉर द कॉफी ब्रेक एंड देन ड्राइव शो में उनका साथ देंगे रिज़बे।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं करण औजला के पी पॉप कल्चर के बारे में, जो होने जा रहा है ऑन 25th of August। वेल यस, पार्क एरिना में ये होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। टिकट्स जो है वो आपको hum.roa.nz पे मिल जाएंगे या फिर livenation.co.nz पे भी आपको मिल सकते हैं। वन नाइट वन सुपरस्टार वन एपिक शो, डोंट जस्ट हियर अबाउट इट, बी देयर। वैसे उनके साथ, वो अकेले नहीं, उनके साथ स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं की जो कि परफॉर्म करेंगे उनके साथ। आपका काम यहाँ पे ये है, अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं तो आप लक ट्राई करिए अपना, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे हमने पोस्टर डाला है हम FB पे, और उस पोस्टर को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। करण कमेंट करिए, कोई भी आपका मनपसंद का जो भी आपका कमेंट हो वो वहाँ पे करिए, और करण औजला को भी टैग करिए, यानी करण औजला को टैग करके उनके बारे में उनको जो कहना है आप फेसबुक पेज पे कहिए हमारे पोस्टर पे, और उसी के साथ आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। और अगर मौका मिलता है, करण रिप्लाई करें नहीं करें, हम डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट, अगर आपका नाम निकलता है तो आपको हम देंगे डबल पास।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
7: Jackie didn't think she needed a DVS system.
8: Our home is brand new.
7: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
8: Yeah, it does.
7: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
9: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advisor.
10: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: Flights to the Gold Coast now on sale with Qantas. Trade winter layers for sunshine, beach walks, rooftop cocktails and unforgettable family adventures. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
12: We've all been there. 6 p.m, traffic sucks and that chicken for dinner, still frozen.
13: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef and local produce. Ready in the fridge when you are.
12: Take back dinner time with HelloFresh.
14: Media voice complaints. How can I help?
15: My kids won't shut up.
14: I'm not sure that's our problem.
15: They keep reciting lines from one of your radio ads.
14: Aw, cute.
15: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
16: What do you want, son?
17: I want me some of that real southern chicken.
15: 28 times.
14: So where are you now?
15: Eating chicken.
18: Advertise with
19: Media Works.
18: New Zealand listens to us.

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्विमर आइजक कूपर ने डॉल्फिन टीम के लीडरशिप ग्रुप से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। ये डिसीजन तब आया जब रिपोर्ट्स में सामने आया कि वो ग्लासगो में ड्रिंकिंग सेशन में शामिल थे, जबकि उन्हें अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कंपटीशन वेन्यू और फाइनल टीम मीटिंग में होना चाहिए था। स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया से ने स्टेटमेंट भी दिया है कि आइजक कूपर का फाइनल नाइट्स के कंपटीशन और टीम मीटिंग मिस करना टीम एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था। इसके बाद कूपर ने खुद ही लीडरशिप रोल से स्टेप डाउन कर लिया। 22 साल के आइजक कूपर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए 4x100 मीटर मिडले रिले में गोल्ड मेडल जीतने में योगदान दिया था, लेकिन ये मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल से भी विड्रॉ हो चुके थे और बाद में उन्हें ड्रिंकिंग इंसिडेंट ने पूरी टीम का ध्यान जो है परफॉर्मेंस से हटा दिया। हालांकि स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि कूपर टीम का हिस्सा बने रहेंगे और उनसे पैन पैसिफिक चैंपियनशिप्स में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है जो इस महीने अमेरिका में शुरू होने वाला है।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल यस, आज के दिन आज 5th अगस्त है और 5th अगस्त को न्यूजीलैंड के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हुआ था। और इसी दिन 1914 में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री की थी। सब कुछ शुरू हुआ था 28 जून 1914 को, जब ऑस्ट्रेलिया हंगरी के क्राउन प्रिंस आर्किटेक्ट फ्रांस फर्डिनंड और उनकी वाइफ सोफी के उसमें हताया था। एंड इसके बाद यूरोप के कई देशों के बीच टेंशन जो है वो बढ़ चुकी थी। साथ में ऑफकोर्स 4th अगस्त यानी कि कल के दिन 1914 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की थी, क्योंकि उस समय न्यूजीलैंड ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था और इसीलिए ब्रिटेन के वॉर में जाते ही न्यूजीलैंड में भी ऑटोमेटिकली इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। 5th अगस्त 1914 को आज के दिन वेलिंगटन में गवर्नर लॉर्ड लिवरपूल ने पार्लियामेंट की सीढ़ियों से हजारों लोगों के सामने ऑफिशियल वॉर की अनाउंसमेंट की, और इस वक्त बहुत से न्यूजीलैंडर्स खुद को ब्रिटिश समझते थे और इसलिए वॉर को सपोर्ट करने का माहौल भी था। इसके बाद लगभग 100,000 न्यूजीलैंडर्स ओवरसीज सर्विस के लिए गए, करीब 18,000 न्यूजीलैंडर्स ने अपनी जान गंवाई और 41,000 से ज़्यादा लोग घायल या बीमार भी हुए। गलीपोली, सोमे और कई ऐसी जगहों पर जैसे नाम न्यूजीलैंड के इतिहास के हिस्सा बन चुके हैं। वर्ल्ड वॉर वन ने सिर्फ दुनिया के इतिहास नहीं बदला जबकि न्यूजीलैंड के नेशनल आइडेंटिटी को भी एक नई पहचान दी, और इसी दौरान कीवी आइडेंटिटी और एनजेक की लेगेसी को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना गया है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं। वेल, काफी स्पोर्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स, ये चल रहा है फ्रांस में, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन गेम्स भी चल रहे हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स हो रहे हैं उसमें, वो देख सकते हैं आप। उसके बाद आप अफ्रीका वुमेन कप ऑफ नेशंस फुटबॉल वुमेन, वो देख सकते हैं। साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं नेशनल बैंक ओपन मॉन्ट्रियल, ये आप देख सकते हैं, टेनिस में हो रहा है ये। नेशनल बैंक ओपन टोरंटो, ये भी आप देख सकते हैं। साथ में ऑफ कोर्स कुछ और भी इवेंट्स हैं जो एक दो दिन में शुरू होने वाले हैं। बट यस, बताइए कैसा आपको लगा ये महीने की शुरुआत स्पोर्ट्स के मामले में। अगर हम क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ मैचेस चल रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बीच में काफ़ी भी बढ़िया चल रहा है। वेस्ट इंडीज अभी 60 रनों की लीड पे है, 6 विकेट गवा चुकी है वेस्ट इंडीज़ अभी हाल फिलहाल, और डे 3 का स्टंप हो चुका है अभी, बहुत ही जल्द आज के दिन डे 4 शुरू हो जाएगा। लेट्स सी क्या रहता है बॉलिंग, लग रहा है शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है वेस्ट इंडीज़ का ये फिर से हारने का मैच, बट लेट्स सी क्या रहता है। उसके बाद और भी हैं, जैसे कि आज से अफगानिस्तान टूर ऑफ आयरलैंड शुरू होने वाला, फर्स्ट ओडीआई आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान होने वाला है, ये मैं मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एंड देन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 2023-27 ये होने जा रहा है, फोर्टल डॉन्डी कनाडा वर्सेस यूएई के बीच में, आप ये एंजॉय कर सकते हैं। वुमेन की अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल कोई मैच नहीं है अनटिल 20th ऑफ अगस्त, चाइना वर्सेस ओमान, उससे पहले कोई मैचेस नहीं है। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम
1: अ सीक्रेट डेस्टिनेशन

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
5: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox in a dash. Now that's a good call.
6: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
7: Non-stop Bollywood.
8: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
7: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
7: इसके पीछे
10: हम
7: Tech Talk.
11: Welcome back. Well. एक्चुअली काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है. इनफैक्ट मैंने कुछ डिवाइसेस देखे हैं जो सचमुच हम यूजुअली वही डिवाइसेस देखते हैं जो हमें लगता है दैट इट माइट गोना बी यूजफुल, बट यू वोंट बी सरप्राइज. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वोंट बी सरप्राइज एंड यू विल गोइंग टू बी वेरी वेरी शॉक्ड एज वेल. अगर मैं इन डिवाइसेज के बारे में बताऊँगा लाइक यू नो किस तरह की टेक्नोलॉजी आई है. सो दे इज़ वन फोन which came out, but glad that it wasn't in the market. I don't know, बहुत ही super flop होता because it looks like a Nokia. If you know anyone, Nokia के phones, उसी का design किया हुआ था ये phone. The special and the different thing about this Nokia phone was that you can actually change the pad. So one thing, you can make it as a touch screen that you can just write down digitally, but if someone wants to operate it as old style typo, like you know the stickers nahi, keypad aaya karte the purane time pe, sticker wo rubber type, to wo aap kar sakte. Ya fir agar if anyone has used the iPod, to iPod ka jo round circle hota hai usse bhi aap replace kar sakte hain. So ye is tarah ki innovations dekhiye. Ek phone dikha hai jo ghadi jaisa hai. So basically, the smartwatch, what you're using, only has that little of 1-inch screen, right? Or maybe 1.5 sometimes. But uska jo screen thi, wo basically, I would say, you know how the round shape is? Pura aapka jo hatiri hai, so ankle jo hai, wo pura covered ho jata, right? So that digital thing is actually covering almost, I think, 70% of the screen. So basically, you need to see up and down, so you need to roll your hand as well to see ki bhai iske niche kya hai, uske upar kya hai. So basically the jo innovators the unhone ye realize kiya ki people are not very happy with keep rolling their hand us tarah se upar niche dekhne ka, ya fir unko slide karna pade. So that was also not very good. Ek phone tha jisme jo basically metal phone kahe pata nahi kya bolenge, pura futuristic to tha hi definitely, बट उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं था. फॉर एग्जाम्पल वो फ़ोन जो था, एक पहली बात तो ये 1 kg का था, लाइक लिटरली 1 kg का वो फ़ोन है. और वो फ़ोन आज की तरह जितना स्लिम है वो स्लिम नहीं था, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा थिक था. एंड द मेन पर्पस फॉर दैट जो इनोवेटर्स ने बनाया, उन्होंने बनाया है उन लोगों के लिए जो यू नो ओवरनाइट काम करते हैं, जैसे कि बिल्डर्स हो गए हैं, ये सब हो गए एंड कंस्ट्रक्शन में होते हैं, तो ये लोग काम करते हैं. उन्होंने इस तरह का बनाया और उनके पीछे फ्लैश लाइट जो थी वो भी इन्होंने रखी थी. और छोटी मोटी फ्लैश लाइट नहीं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लैश लाइट थी कि रात के अंधेरे के टाइम जहाँ पे कोई लाइट नहीं है वो फ़ोन उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस दे सकता है. सो यस, ये कुछ इनोवेशंस थे जो आए थे मार्केट में, आई मीन फॉर टेस्टिंग. बट मुझे लगता है ग्लैड दैट प्रॉपर मार्केट में नहीं आनी, तो उनकी बेइज्जती बहुत ही ज़्यादा होती है. व्हाट डू यू थिंक इसमें से? वैसे आप बताइए, अगर आपको चांस मिलता तो आप कौन सा फोन ऑपरेट करना चाहोगे?
7: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: ascun jegi.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. कैसे हैं आप सभी? जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले इंट्रोडक्शन, क्रॉस इंट्रोडक्शन किया जाएगा यहाँ पे. कैसे हो सैंडी?
3: हाय रुजवे, कह रही थी.
2: अरे भाई.
3: हाय केतन. मतलब कैसे हो तुम
2: यार? इससे बड़ा
3: मतलब अभी देखा ना मैंने उसको.
2: कहाँ देखा? किधर है वो?
3: इधर से
2: उसको गए 15 मिनट हो गए. उसको गए हुए 15 मिनट. मतलब आप
3: वही ना.
2: इतना बेसब्री से बोल रही है भाई तू आ मेरा शो कर, मैं निकली चाय पीने.
3: हाँ ऐसा है.
2: थकान बहुत ज्यादा हुई ना?
3: थकान नहीं, इस जस्ट कि मेरे को लगता है एवरीवन इज अंडर वेदर राइट नाउ.
2: हाँ मैं देख रहा हूँ, लाइक यू नो नॉट एवरीवन कैन कोप अप विद द वेदर चेंज. है
3: या और ये कुछ ज्यादा ही हमने, बिकॉज अगस्त के महीने में इतनी ज्यादा ठंड एक्सपेक्ट नहीं की थी ना. वी वर एक्सपेक्टिंग दिस इन जुलाई, अभी एंड ऑफ जून एंड जुलाई की ऐसी ठंड पड़ने वाली है. और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ठंड तो निकल गई अब तो चिल करो, तभी एकदम से ठंड पड़ना शुरू हो गई. कर दो विलिंगटन में कितनी स्नोफॉल हुई है
2: यार. यहाँ पे भी हो जाए, मजा आ जाएगा. ऑकलैंड में हो जाता
3: हुई है पहले, आई थिंक इट वाज 2013 20, मेरे को ऐसा साल याद नहीं है कि साल
2: में हुई थी. एक्सपीरियंस किया तो मतलब आपके आने के बाद ही हुआ.
3: हाँ
2: आपके आने के बाद ही हुआ. बट आपको पता है यहाँ पे ना एक कहावत है ना गलत हो गई है.
3: क्या?
2: इंडिया में क्या कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे. यहाँ पे तो कोई भी बारिश में नहीं आना चाहिए.
3: सच में
2: कभी भी बीमार हो सकते हो.
3: कभी भी बीमार हो सकते हो. सच्ची में टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस.
2: इंडिया में तो समझ में भी आता है कि यार इतना पोल्यूशन है, लाइक यू नो इतना वो अनहेल्दी एनवायरनमेंट भी मिक्सअप हो चुका है. तो यू नो एक इंडिया में वे नहीं मिल रहा है उस डर्ट को बाहर निकलने का. दैट्स व्हाई यू नो विंटर के टाइम स्टक रहता है. यहाँ पे तो साफ है वातावरण, फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं.
3: It's not about साफ ना, ठंड है. ठंड तो लग सकती है ना आपको.
2: But आपकी बॉडी यूज टू हो गई ना. पहली बार तो ऐसा नहीं कि पहला साल है ये न्यूजीलैंड में. यू बीन हियर. और इनफैक्ट ये आपका नहीं है, आपका केस नहीं है. इवन इन साउथ जहाँ पे जैसे इनवकागल है वो हमेशा बहुत ज्यादा ठंडा रहता है कम्पेयर टू ऑकलैंड. ऑकलैंड तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे भी लोग बीमार हो रहे हैं.
3: It's a part of our क्या कहते हैं,
2: मेरे को लगता है ये रिबूट वाला सिस्टम है जो बॉडी बार बार जान उसकी करती ताकि आप और इम्यून जो है ना उसको और आपका इम्यून सिस्टम जो है और स्ट्रांग हो.
3: देखो जब ज्यादा ठंड पड़ती है ना उस समय पर हमें बाहर निकलना चाहिए प्रेप हो की ठंड है आज तो पहननी चाहिए.
2: हाँ अपन बाहर नहीं निकलते.
3: तो जब हम लापरवाही करते हैं तब हम बीमार होते हैं.
2: ये होता है
3: एक्चुअली में.
2: सो डॉक्टर सैंडी ने बहुत ही बड़ा बढ़िया ज्ञान दिया है. कितने लोग यहाँ पे एग्री करेंगे इस बात को लेके?
3: तो मैं लापरवाह रही हूँ इसलिए बीमार रहती हूँ.
2: आप भी हो. वैसे एक चीज नोटिस करी है इस अपने प्लेटफॉर्म पे, रेडियो पे जितनी भी लड़कियां हैं सब बीमार है
3: इस टाइम पे. तो यार सब कहाँ ही बीमार है. कशिका भी बीमार हो गई क्या?
2: थोड़ा बात करने में लग तो रहता है.
3: देखो ऐसा जज नहीं करना चाहिए.
2: जजमेंट क्या ये जज थोड़ी कर रहा है.

0: ये कोई टैलेंट थोड़ी है जज करूंगा, ये तो यार कंसर्न है
1: यार, लेटेंट शो थोड़ा है ये
0: यार, क्या यार आप बहुत बहुत ज्यादा रील देख रहे हो यार के चलो ऑन दिस नोट आपके लिए गाना चलाएं,
1: बाय।
0: हाँ, मैं बाय बोलता हूँ, आप संभालिए, आप सुनिए इनके गाने एक से बढ़कर एक, कॉफी ब्रेक में आपका स्वागत करेंगे बढ़िया से, कल मिलते हैं, हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम 12 से 3, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो.
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स. और सबसे खास बात, गो बनानास चाइल्ड केयर बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम. तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे.
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस. टीज एंड सीज अप्लाई.
7: व्हाई स्विच टू टावर? गेट कवर्ड इन मिनट्स एंड एंजॉय 2 मंथ्स ऑन अस व्हेन यू बाय न्यू कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस ऑनलाइन. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
8: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Ingham's Fresh Whole Chicken, 1.5 kg for just $8.99 each. And New Zealand grown The Odd Bunch Avocados, 1 kg, a fresh deal at just $5 a pack. T's and C's apply.
9: Flight Centre has Samoa on sale now. Book your Qantas full service flights from $699 return. Depart Auckland, book in store or online. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ. अच्छा
10: बताओ तो आड़ा फोकस साड़ा कुछ नहीं.
11: मिसेस सिंह.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन.

0: RNZ. Time check.
1: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. It took police less than 8 minutes to arrest the 49-year-old man accused of a violent spree in Auckland's Epsom. He allegedly assaulted a jogger before stealing a vehicle and ploughing down three cyclists, leaving one in a critical condition, then killing a dog. City District Commander Superintendent Sunny Patel says the cyclists were Auckland Grammar students.
3: There is CCTV footage to show that he actually veered into the cyclists from behind.
2: The student's headmaster, Tim O'Connor, is devastated by the incident. He says the school will be ensuring counselling and support services are available for affected pupils and their families. Three people have been arrested after 24 kilograms of opium was intercepted by customs. Found in Auckland en route to Western Bay of Plenty, the parcels are believed to have been sent from India and the UK. A community group in Oporiki has been picked to help design social services for the area in a pilot program. Toi Rāwhiti spokesperson Ricky Rangi-Gage says their on-the-ground knowledge makes them well-suited for the task.
4: Most of the government agencies are siloed organisations and you're dealing with systemic issues, in many cases systemic mess. So bringing the decision-making closer is important.
2: To sport, the opening game for the All Blacks in South Africa is against the Stormers on Saturday morning at 5 our time. First-year All Blacks coach Dave Rennie will announce the team tomorrow morning at 3 o'clock. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, the Warriors have re-signed powerhouse Australian front rower Jackson Ford until the end of the 2029 season. Ford is currently sidelined with an injury.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम के हालचाल में सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 11.1 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 1 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 5:40 पर.
1: The beat of Bollywood.
6: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं
1: है. Coffee break with Sandy.
5: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? 5th August इट इज. अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. आज ओवरनाइट टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप रहने वाला है, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल, कीपिंग योर सेल्फ वार्म एज वेल. इस आवर में कुछ न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे. कुछ यहाँ पे कस्टम्स ने बस्ट किए ही चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे. एंड एक आर्टिकल आया है बहुत इंटरेस्टिंग कि एयरलाइंस जो है, वाई दे कीप चेंजिंग कैरी ऑन बैगेज रूल्स. ये आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे, सो आपके लिए भी एक सवाल रहेगा. एंड और भी आसपास क्या हो रहा है, सो स्टे ट्यून. और आपका डे कैसा जा रहा है, आप भी यहाँ पर ज़रूर इसके बारे में शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

3:12 हो चुके हैं जावेद अली की आवाज में दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग रंजना मूवी का आप यहाँ पर सुन रहे थे। वैसे आज 5 तारीख है, 5th अगस्त है और आज ट्रेंड मेकर्स में हम एक एक्ट्रेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। वेल ये जो एक्ट्रेस है इनके बारे में मैं हिंट आपको देती हूँ एंड लेट्स सी कितने लोग गेस कर पाते हैं इनका नाम क्या है जिनको हम ट्रेंड मेकर्स में सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये जो एक्ट्रेस है ये 90s की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है एंड अभी तक ये एक्टिव है अपने करियर में। 90s में इन्होंने शुरुआत की, अभी तक एक्टिव है। दो अभी उन्होंने वेब सीरीज़ वगैरह भी करनी शुरू की है एंड इन रियल लाइफ में ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट्रेस है। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि काफ़ी मीडिया वालों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि ये फ्यूचर में लगता है कि जया बच्चन बन जाएगी। ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है बिकॉज उसको मैटर नहीं करता है और इसकी शादी इंडस्ट्री में ही एक एक्टर के साथ हुई है। 90s की ये कौन सी एक्ट्रेस है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आज ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद। वैसे उनकी सिस्टर भी है जो कि सेम इंडस्ट्री में है एंड उनकी मदर एक्चुअली में देखा जाए तो बीन इन द सेम इंडस्ट्री बॉलीवुड में। ग्रैंड मदर उनकी जो एक क्या कहते हैं मासी ना या मासी भी एक्चुअली में बीन इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री ओनली। सो क्वाइट अ खानदान इन बॉलीवुड दो बट वेल अपने बलबूते पे ये एक्ट्रेस बहुत अच्छी चली एंड खास तौर पे अपने यू नो अदाओं की तो अलग ही बात थी लेकिन जिस वे से अपनी ब्यूटी को इस एक्ट्रेस ने कैरी किया था 90s में काफ़ी लोगों के लिए एक एग्जांपल बन गई थी कि यस ब्यूटी यू नो कम्स इन एवरी वे। मतलब इन्होंने एक सिग्नेचर अपना वो लुक वहाँ पे जो दिया था। सो या किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हो 5599 पर लिख के भेज सकते हैं। इन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं आज हम ट्रेंड मेकर्स में। कॉफी ब्रेक विद सैंडी, इससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब बस कर दिए सब। हम 80s के रेट्रो गाने।

0: Candy. 3:17 हो चुके हैं एंड काजोल इज द राइट आंसर. यस, काफी लोगों ने भेजा है कि ये शिल्पा शेट्टी लिखा था, जनीलिया देशमुख भी लिखा है नितिका, वैसे वो भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है जनीलिया, बट या आई वॉज टॉकिंग अबाउट काजोल एंड काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है. एक ने लिखा है कि आई न्यू इट्स काजोल व्हेन यू सेड शी इज द फ्यूचर जाया बजा. मैंने नहीं, ये मीडिया बोलती है. और मीडिया का क्या होता है ना, मीडिया एज इनकी जो पेपराजी है, इनका क्या होता है कि इनको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलता है, जवाब देता है कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा यू नो रूड लगना शुरू कर देते हैं उनको, एंड देन उनको वो जया बच्चन बना देते हैं. एनीवेज, जया बच्चन का भी बाय द वे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. यू नो ओवर द ईयर्स हमने जया बच्चन को तो बहुत रूड देखा है, जितनी हमने वीडियोज़ में देखा है जहाँ पर वो पब्लिक के साथ इंट्रैक्शन है या फिर पेपराजी के साथ उनका इंटरेक्शन है. बट देन देर वॉज वन इंटरव्यू लास्ट ईयर जहाँ पे जया बच्चन गई थी एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जया बच्चन ने एड्रेस किया था ये सब चीज़ों को एंड हर लाइफ को भी. शी सेट वहाँ पे एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उस समय पर जया बच्चन ने बोला था कि जो जो उनकी लाइफ में हुआ है, जहाँ पे यू नो बोला जाता है कि हस्बैंड का अफेयर है किसी के साथ एंड देन इसी को ट्रॉल किया जाता है, हालांकि हस्बैंड को कभी कुछ बोला ही नहीं जाता है. सो ओवर द ईयर्स ऐसी काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने सुनी हैं, जिससे क्या है कि उनका पेपराजी के साथ थोड़ा वो खटास हो चुका है, जिसके कारण वो ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं करती है. सो ऑब्वियसली मेरे को लगता है ये बहुत ही ऑब्वियस है. मैंने एक और इंटरव्यू एक बहुत ही फेमस पेपराजी की देखी थी बेसिकली, जो कि जाके यू नो जहाँ पे एक्ट्रेसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, उनको कवर करते हैं. तो द पर्सन हु मैनेज दैट इंडस्ट्री, तो मैंने उनका देखा था एंड उन्होंने एक चीज़ बोली कि उन्होंने जया बच्चन को बुरा नहीं बोला एंड उसने एक और चीज़ बोली कि शाहरुख खान इज़ डूइंग इट सेम राइट नाउ, बट शाहरुख खान का खुद का एक रीज़न है जो कि वैलिड रीज़न है, बिकॉज उनके बेटे के साथ आर्यन खान के साथ जब वो सब हुआ था, यू नो उनके ऊपर केस हुआ था, जहाँ पे भी वो जा रहे थे, कि मीडिया ने जिस वे से वो कवरेज की थी और जिस वे से हेडलाइंस आर्यन खान के लिए बनाई थी, उसके बाद शाहरुख खान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ देते हैं पेपराजी को, जिनसे वो बहुत कमाते हैं, वो अब नहीं करने वाले. एंड सिंस दैट शाहरुख खान वो, बिकॉज वो पहले हमेशा अवेलेबल होते थे, बट जब उन्होंने देखा कि उन्हीं की फैमिली के साथ मीडिया ने उनको मतलब कीचड़ उछाला है कितना ज़्यादा, ही डिसाइडेड कि मैं ये अब चीज़ें नहीं करने वाला. एंड उन्होंने जहाँ पे भी वो जब भी बाहर निकलना, तो ही यूज टू पुट अम्ब्रेला इन फ्रंट ऑफ हिज फेस कि कोई उनकी फ़ोटो क्लिक ना कर सके, एंड ही स्टिल डूइंग दैट. एंड वहाँ पे वो जो इंटरव्यू थी पेपराजी की, उसने ये बोला कि उनके जगह कोई भी होता, कोई भी बाप होता, वो यही करता, कोई और एक्टर होता, वो यही करता जो शाहरुख खान कर रहे हैं, एंड उनका रीज़न वैलिड है. मे बी विथ टाइम उनका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा, बिकॉज केस ख़त्म हो गया, कुछ प्रूव नहीं हुआ, बट जिन लोगों ने उस समय पर ये सब किया होता है, वो तो इंसान को याद रहता है.
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 3:29 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं कॉफी ब्रेक. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. रिसेंटली अभी एक एयरलाइन जेटस्टार, इन्होंने कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं जो कि फेब 2027 से शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे दे विल अलाउ ओनली वन स्मॉल बैग जो फिट होता है अंडर द सीट फॉर फ्री. सो दे गोना चार्ज पैसेंजर्स हु वांट टू स्टोर अ लार्जर कैरी ऑन बैग इन द ओवरहेड लॉकर. एंड This include priority boarding with a paid overhead bag option. So basically ये replace कर रहे हैं the old 7 kg weight limit with a size based system. Although जो individual bags है still have a maximum safe weight. Now thing is कि इसके ऊपर यही चर्चा हो रही है कि airlines जो है carry on baggage rules को change क्यों करते रहते हैं. For airlines जो ये जो changes होती है rules की is about speed, cost and making money. It's not just about the luggage. मेन रीज़न है फास्टर बोर्डिंग. सो टू मेनी पैसेंजर्स जो है दे आर कम्पीटिंग फॉर ओवरहेड लॉकर स्पेस, जिसके कारण बोर्डिंग डिले होती है एंड डिपार्चर भी. सो सिंपलर बैगेज रूल्स जो है ये इनको सेव करेगा थोड़ा टाइम, ऐसा इनका कहना है. एंड देन दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एक्स्ट्रा रेवेन्यू. सो मेनी लो कॉस्ट एयरलाइंस जो होती है दे नाउ ट्रीट ओवरहेड बिन स्पेस एज अ प्रीमियम सर्विस. सो बाय चार्जिंग फॉर लार्जर कैबिन बैग्स they keep base fares lower while earning additional income from travelers jinko extra space chahiye. So extra revenue inko mil raha hai. A limited overhead space is of course the another reason. Modern flights jo hai ye full hoti hai, enough locker space nahi hoti for every passenger to bring a large carry on. So charging for overhead bag jo hai ye competition jo hai space ki competition ko thoda reduce kar raha hai. Less hassle at the gate because some airlines they are moving from strict weight limit to size based rules. So basically they are reducing ki jo bag ka weight hai usko reduce karne ke liye, so that jo boarding process hai usko thoda speed up kar sake. And they are also following industry trends as well. European and North American budget carriers jo hai, they have used this paid carry on models for years and kafi aur airlines bhi usko adopt kar rahi hai. Well, not very good news for us as a passenger because हमें होता है कि यार उसमें इतना नहीं सामान आ रहा है, थोड़ा 7 kg में ले लो, तो हम तो हमेशा वेट के साथ एडजस्टमेंट्स ही करते रहते हैं. What is your take on this? Would you pay extra for a carry-on luggage, जो कि 7 kg का जो लगेज होता है, would you pay extra for it या फिर आप नहीं लेके जाएंगे 7 kg का? सो अगर आप एयरलाइन में किसी में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आइदर आपको पे करना पड़ेगा 7 kg बैगेज के लिए, या फिर सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आपको वो नहीं ले रहे हो, आप वो स्पेस ही नहीं ले रहे हो, तो आप क्या करोगे? वुड यू पे फॉर इट और आप नहीं लोगे वो स्पेस? व्हाट इज़ योर, आपके लिए 7 kg बैगेज जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है? सो लिख के भेजिए 5599 इज़ द नंबर, या फिर कॉल करके भी शेयर कर सकते हैं 0800 00 हम पर. मुझे लगता है जब हम लंबा कहीं पर ट्रैवल करते हैं ना, लाइक वेन वी गो टू आर होम कंट्री, वहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूरत ज़्यादा रहती है 7 kg बैग की, बिकॉज जब भी होम कंट्री में हम जा रहे होते हैं तो उस समय पर सामान होता है काफ़ी, यहाँ से भी लेके जाने वाला और वहाँ से भी लेके आने वाला, तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि 7 kg थोड़ा नेसेसिटी हो जाता है. लेकिन अगर आप वैसे दूसरी ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे अवॉइड आप कर सको, बिकॉज वहाँ पे इतना बल्क में आप सामान नहीं लेके जा रहे होते, ना ही वापस लेके आ रहे होते हो. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? 0800 00 हम या फिर 5599 इज द नंबर, जहाँ पे आप एक्चुअल में कॉल करके शेयर भी कर सकते हैं.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं. हम Bollywood's biggest hits. On vacation.
2: A secret destination.

0: 3:37 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं. मेरे पास एक मैसेज भी आया है कि यू नो वुड यू रेदर पे फॉर 7 kg बैगेज या फिर आप ऐसे ही जाना चाहेंगे. वैसे एक ने लिखा है कि शॉर्ट एंड सिंपल, आई विल नॉट पे एक्स्ट्रा, आई रादर टेक एनी अदर फ्लाइट, प्लस ये सर्विस इस एयरलाइन की आपको खैर पसंद नहीं है. या तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का वो रहता है ना कि प्राइस चाहे थोड़ा और किसी फ्लाइट में पे करनी पड़ जाए, बट 7 kg जो है बैगेज की प्रेफरेंस रहती है. वैसे एक न्यूज़ आ रही है कि न्यूजीलैंड पुलिस एंड कस्टम्स इन्होंने अरेस्ट किए हैं 3 लोगों को. सो 24 kg ऑफ ओपियम जो थी ये हिडन थी इन पार्सल्स जो कि UK एंड इंडिया से आए थे. ये जो पैकेजेस थे दे वर स्टॉप्ड एट द बॉर्डर बिटवीन 1 June एंड 19 July. So before reaching the destination in Western Bay of Plenty. So key details are कि जो कस्टम से इन्होंने इंटरसेप्ट किया मल्टीपल पार्सल्स इन्होंने एक्चुअली में इंटरसेप्ट किए हैं जिसमें 24 kg ऑफ क्लास बी कंट्रोल्ड ड्रग ओपियम था ऑकलैंड बॉर्डर में. सो सर्च वारंट एग्जीक्यूट किए गए थे 11 प्रॉपर्टीज में. ये टोरंगा में, देन पापामोआ, देन ओमोखोरा, टेपुकी, जिसके बाद 3 अरेस्ट की गई. पुलिस ने सीज किए हैं एडिशनल ओपियम्स, स्टेरॉइड्स, कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यूरिंग दीज रेड्स. 2 मेन को अरेस्ट किया गया है एज्ड 31 and 36 अराउंड एंड इन्हें चार्ज किया गया है विद इम्पोर्टिंग ओपियम. 1 ऑफ देम ऑल्सो फेसेस अ रिप्रेजेंटेटिव चार्ज ऑफ इम्पोर्टिंग 48 kg ऑफ ओपियम ओवर द पास्ट 12 months. अनदर पर्सन इज चार्ज 38-year-old with possession of prescription medication. So, इन तीनों को खैर तोरंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पर अपेयर होना है. पुलिस ने बोला है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इट फॉलोज अनदर केस जो कि अप्रैल में था जहाँ पर ऑफिसर्स को 24 kg ऑफ ओपियम मिली थी एक सर्च के दौरान. ये तोरंगा प्रॉपर्टी में हुआ था. सो द एक्यूज मैन रिमेन्स बिफोर द कोर्ट. सो या ये लोगों को अरेस्ट किया गया है. डिफरेंट जो पार्सल्स हैं एक्चुअली में ये मिले हैं. वेल इससे याद आया कि हमारा पॉडकास्ट जो है ये भी सुनना ना भूलेगा. हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है एंड दिस पॉडकास्ट इज़ मस्ट लिसन फॉर यू. आप यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पे एक बिजनेस ओन कर रहे हैं, दोनों केसेस में ये पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट लिसन पॉडकास्ट है. और इसके वेरियस रीजंस है. बिकॉज अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो किसी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है. वैसे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड से आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती ही है, लेकिन फ्यू थिंग्स कई बार होते हैं जो हम नोटिस नहीं करते. इस पॉडकास्ट में हमने प्रीमियम केसेस के बारे में भी बातें की है जहाँ पे ओवरसीज में यू पे अ कंपनी ताकि आपको यहाँ पे बुलाया जाए एंड उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है उसके बारे में भी बातें की गई है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हॉलीडेज, सिक लीव्स, ये सब चीज़ों को लेके. एंड अगर कोई किसी के बारे में कंप्लेन करना चाहता है वो कैसे एनोनिमस रह सकता है पर्सन एंड क्या उसको कुछ अफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी इस पॉडकास्ट में हमने बातें की है. सो हमने एक्चुअली में अभय कोहले के साथ बात की है जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र है एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट में MBIE में एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड में. तो हमने एक प्रोफेशनल पर्सन से बात की है जिन्होंने खुद जाके बहुत सारे केसेस को हैंडल किया है. बहुत सारे केस स्टडीज़ के बारे में भी इन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है. सो दिस इज़ द रीज़न दिस पॉडकास्ट इज़ मस्ट लिसन फॉर यू. अगर आप जॉब शुरू भी करने वाले हैं, कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ भी है, ये आप ज़रूर सुनिएगा. ड्राइव लिख के अगर आप भेजते हैं 5599 पर आपको ऑटो रिप्लाई में लिंक मिल जाएगा. अदरवाइज़ आप रोवा पर जाके सर्च कीजिए अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे. स्पॉटिफाई पे भी आप सुन सकते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे.
1: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर

3:46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड बहुत ही जल्दी आपकी सुपर सिटी में पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके करण औजला पहुँचने वाले हैं। उनके लेटेस्ट जो एल्बम है उसका नाम भी वैसे पी पॉप कल्चर ही है। सो करण औजला पी पॉप कल्चर का जो गाना वैसे अभी आप सुनने भी वाले हैं, ये आप यहाँ पे इनकी लाइव परफॉर्मेंस तो देखने ही वाले हैं 25 अगस्त को स्पार्क अरेना में, लेकिन इनके साथ स्पेशल गेस्ट एक ही ये भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो बिफोर करण औजला स्टार्ट्स अ शो, जो माहौल है ये एक्चुअली में एक ही वहाँ पे बनाते हैं पहले अपने स्पेशल सॉन्ग्स के साथ वहाँ पे, डीजेइंग के साथ वहाँ पे, एंड देन करण औजला की वहाँ पे एंट्री होती है। सो बहुत ही सुपर प्रोडक्शन भी रहती है पूरे के पूरे शो की, जो कि स्पार्क अरीना में होने वाला है। मेक श्योर कि अपने टिकट्स आप जल्दी से खरीद लीजिए hum.rover.nz पे जाके। अगर आप जीतना चाहते हैं हमारा फेसबुक पेज विजिट कीजिए हम का, विच इज़ हम 104.2 FM। वहाँ पे आपको करण औजला की पोस्ट मिलेगी, पिंड पोस्ट मिलेगी वो, एंड उसके कमेंट सेक्शन में करण औजला को टैग करके ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख दीजिए करण औजला के लिए, एंड आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहाँ पे करण औजला के शो के लिए डबल पास आपके नाम हो सकता है।

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल, लेकिन इट्स गोइंग टू बी रियली कोल्ड टुनाइट। फ्रॉस्ट डेवलपिंग ओवरनाइट, सदर्लीज का भी साथ रहेगा। 5:40 पे होगा आज सनसेट, फील्स लाइक 9 डिग्रीज राइट नाउ। ओवरनाइट इज गोइंग टू बी एज लो एज 1 डिग्री टुनाइट।
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: 4:02 ऑन द 5th August, गुड आफ्टरनून ड्राइव शो में आपका स्वागत है। हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, कैसे हो तुम?
1: आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ?
4: मतलब अभी कैसे हो तुम?
1: अभी आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँ?
4: नॉट बैड।
1: ओके, या इट्स बीन या क्वाइट अ चोकी डे। मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा पूरा चोक्ड है, वैसा टाइप का फील,
4: वैसा वाला फील हो रहा है।
1: I should not be working actually, but अभी क्या करें, हम heavy short staff तो
4: क्या कर सकते हैं। बट या बहुत सारी चीजें थी आज एक्चुअली मैं कंप्लीट करने वाली। सुरुज बे ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ
1: और भी लोगों को बीमार करता हूँ।
4: या एनीवे गाइस, आप कैसे, आप भी यहाँ पे बताइएगा। और आज है वेंसडे, आज अब हम यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट के साथ बात भी करने वाले हैं। अगर आपको घर खरीदना है एंड अगर आप सोच रहे हैं घर खरीद चुके हैं एंड यू आर लाइक यार 20, 25, 30 years के यही चुकाना पड़ेगा क्या अब? यू नो द मोमेंट यू बाय द हाउस फर्स्ट थिंग ये भी आता है कि अच्छा अब तो ये रेगुलर थिंग है,
1: अभी तो फंस गए हम लोग,
4: अभी तो फंस गए, देयर इज नो वे आउट। सो इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं स्क्विरल मॉर्गेजेस में। सो दिस गोना बी टॉपिक एज वेल। सो अगर आपका कोई सवाल है यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं 5599 इज अ नंबर, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट राइट, कि जब आपका कोई सवाल होता है वो हम आगे तक पहुँचाते हैं, देन वी गेट टू नो मोर अबाउट इट।
1: या तो प्लीज लेट अस नो यहाँ पे कोई अगर आपका सवाल हो तो, एंड वी विल गेट आर एक्सपर्ट ऑन कॉल बहुत जल्द। इसी घंटे में बात करने वाले हम,
4: इसी आवर में बात करने वाले हैं
1: आज। And, yeah. 5 बजे के बाद आपके साथ हम यहाँ पे खेलने वाले हैं सिचुएशनशिप।
4: आपको एक सिचुएशन में डालने वाले हैं, एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करेंगे एंड आप उस सिनेरियो में होते तो क्या करते।
1: या ये आपने शेयर करना है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद अरिजीत सिंह, नीति मोहन एंड दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए।

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
3: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
4: Shower dome.
5: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस, एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक, योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट. एट अश्योर वन, नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड, नथिंग इज मिस्ड, नथिंग फॉरगॉटन, बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस, द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल. अश्योर वन, प्लान फॉर टुमारो टुडे. कॉल 0800 77 HIRA. नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस.
6: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol served everywhere this winter with a lime.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI.
9: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
11: You're listening to the Drive Show with Sandy and Rusbe. Super से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है और अभी हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, आर एक्सपर्ट इज जॉइनिंग अस शॉर्टली. अभी हम बात करने वाले हैं सुनील चंद्रा से फ्रॉम स्क्विरल और ये आज हमसे बात करने वाले हैं अबाउट हाउ वी कैन यू नो पे ऑफ आर मॉर्गेज फास्टर. मॉर्गेज लेने के बाद एक स्ट्रेस हो जाता है कि भाई 25-30 साल अभी हम अटक गए हैं, फंस गए हैं
12: और शायद इसी में हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है ये निकल जाएगी. बट या पूछते हैं इनसे, एक्सपर्ट से पूछते हैं इनका क्या टेक है इसके ऊपर.
11: हाय सुनील, वेलकम टू द शो, कैसे हो आप?
13: हाय सैंडी एंड रुस्बे, मैं बहुत अच्छा हूं, होपफुली आप भी सब अच्छे होंगे.
11: हाँ, बहुत ही बढ़िया. तो बताइए यार, ये स्ट्रेस जो होता है मॉर्गेज का, 25-30 साल अटक गए, तो ये इसमें इज देयर एनी वे आउट दैट यू नो वी कैन पे आवर होम लोन फास्टर?
13: जी देखिए, कुछ स्ट्रेटजीज जो लिसनर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. देखिए, न्यूजीलैंड में कोई भी लोन अगर आप लें, उसकी नॉर्मल लोन टर्म होती है 30 इयर्स. अगर आप उसको उसी फ्रीक्वेंसी में पे करें नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए, ऑलमोस्ट आप डबल रीपे करते हैं लोन को. सो अगर आप 500 से स्टार्ट हुए थे तो ऑलमोस्ट $1 million तक आप बैंक को देते हैं. तो इसमें फ्यू सिंपल स्टेप्स हैं जो आप अपने मॉर्गेज टर्म को रिड्यूस कर सकते हैं. जिससे एक है कि एक्स्ट्रा रीपेमेंट करिए. जो भी आपकी मिनिमम पेमेंट बैंक बोलता है उससे $50 या $100 अगर आप एक्स्ट्रा कर पाए तो जरूर कीजिए. और दूसरा है कि रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी. बैंकों का सिलेक्शन होता है वीकली, फोर्टनाइट या मंथली. कुछ लोग जो मंथली पे हैं वो जरूर सोचें कि वो वीकली या फोर्टनाइटली दे सकें पेमेंट्स को.
11: अच्छा, तो फोर्टनाइटली देते तो बेटर हो जाता है, ऐसा आप बोल रहे हो, वीकली फोर्टनाइटली.
13: हाँ जी, क्योंकि जब भी आप वीकली फोर्टनाइटली देते हो, क्योंकि मॉर्गेज रीपेमेंट बनी होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, तो अगर आप हर वीक प्रिंसिपल दोगे तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम के लिए प्रिंसिपल कम होता रहेगा जल्दी।
11: राइट।
13: और जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैं बताना चाहता हूँ वो है लमसम पेमेंट। अगर आपको कोई भी बोनस मिलता है या टैक्स रिफंड मिलता है या कहीं से एक्स्ट्रा कैश मिलता है, तो आप जरूर सोचिए कि वे अपने प्रिंसिपल की तरफ जरूर पे करें उस चीज को। इससे आपका प्रिंसिपल कम होगा और लोन टर्म भी कम होगी और जो इंटरेस्ट लोन पे लगा होगा वो कम होगा। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है सेविंग्स। अभी देखिए लोग हमारे क्या करते हैं कि सेविंग्स उन्होंने ऑन कॉल अकाउंट में रखी होती है, तो जो ऑन कॉल अकाउंट सेविंग्स हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 2-2.5%। पर अगर आप जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑफसेट या रिवॉल्विंग फैसिलिटी यूज करते हैं तो आप उतना इंटरेस्ट तो बचाएंगे जितना आप मॉर्गेज पे दे रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है कि अगर आप करंटली 1 ईयर का रेट से 4.69 है और आपके पास उतना ही 100 के आपके पास सेविंग पड़ी है, तो अगर आप अपने मॉर्गेज के अगेंस्ट उतना ऑफसेट करेंगे तो एटलीस्ट आप 4.69 तो बचाएंगे, विच इज फार बेटर देन पुटिंग इट इन अ सेविंग्स अकाउंट।
11: कूल। तो ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज है बेसिकली जिसके बारे में आप कस्टमाइज कर सकते हो हमारे लिसनर्स के लिए बेस्ड ऑन देयर करंट स्टेज एंड देयर रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी क्या करंट स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति भी।
13: एग्जैक्टली यही मैं नेक्स्ट बात पे आने वाला था कि जब आपका लोन रिव्यू पे आए आप जरूर किसी मॉर्गेज एडवाइजर से बात कीजिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, मे बी बाय वर्चू ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा पेमेंट या अपनी रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, क्या लमसम रीपेमेंट करें या फिर लोन को रीस्ट्रक्चर करें ताकि आप कुछ पोर्शन ऑफसेट या रिवॉल्विंग में कर सकें। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये लोन स्ट्रक्चर होती है, मतलब दैट्स नॉट सेट इन स्टोन। अगर आप एक लोन स्ट्रक्चर से जब आप लोन लेते हैं स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आपको उसी स्ट्रक्चर पे चलना है। ये एक डायनेमिक चीज है और आपके जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेज हैं जैसे इनकम है, आपकी सेविंग्स हैं, ये उसके बेस पे बेस होनी चाहिए। देन की आपको एक स्ट्रक्चर दे दी और बस आप उसको ही पूरे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें।
11: तो सुनील जी एक क्वेश्चन है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हम ये कब चेंज कर सकते हैं कि या ये मतलब हमारे जब फिक्स टर्म खत्म होता है तभी हम चेंज कर पाते हैं या इसको रुकना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट एंड तक?
13: नहीं, जब आपका फिक्स टर्म होता है रिन्यूअल पे आता है उस टाइम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई लिसनर पहले से चेंज करना चाहता है वो भी हो सकता है, पर उस केस में ब्रेक कॉस्ट हो सकती है तो बैंक से पता करना पड़ता है कि कितने चार्जेस हैं इस चीज के लिए। बट आइडली जब आपका रिन्यूअल पे लोन आ रहा है वो सही टाइम है लोन स्ट्रक्चर को रिव्यू और चेंज करने का।
11: दैट्स ऑसम यार। सैंडी का पास कोई सवाल है?
12: नहीं, ऑल गुड। एक्चुअली मैं यही सारी चीजें मुझे जाननी थी।
11: हाँ,
12: सैंडी बिकॉज़ अभी सब चेंज हो रहा है ना, तो लाइक ऐसा जल्दी
11: अभी काफी लोगों के अभी लोन इस पे आ गए ना, रीफिक्स के टाइम पे आ रहे अभी।
12: या
11: एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दोस क्वेश्चंस इन देयर हेड।
12: रीफिक्स पे आ रहे हैं और सारे बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज हो रहे हैं बैंक्स के, तो या वेरी इंटरेस्टिंग टाइम राइट नाउ।
13: इंटरेस्ट रेट्स तो ऊपर ही जा रहे हैं, तो देखिए वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जरूर हमारे कंट्रोल में है।
11: दैट्स राइट।
13: तो कोई अगर उसका इफेक्टिवली यूज कर पाए तो आपके लोन टर्म में काफी फायदा होगा इस चीज का।
11: दैट्स ऑसम सुनील, थैंक यू सो मच यार फॉर गेटिंग इन टच विद अस। इट वाज अ प्लेजर एंड होपफुली हम आपके साथ फिर जल्दी बात करेंगे एंड हमारे लिसनर्स को भी यहाँ पे मौका देते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है सुनील के लिए तो ज़रूर आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके नंबर पे। और आपका नंबर सुनील आप शेयर करना चाहेंगे?
13: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 027-533-7745, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sunil@squirrel.co.nz पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं जो है squirrel.co.nz।
12: थैंक यू सो मच सुनील।
11: थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।
13: नो वरीज, यू वेलकम।
12: थैंक यू, बाय।
11: तो ये है सुनील फ्रॉम स्क्विरल, इनको भी आप कांटेक्ट कीजिए अगर आपके पास कोई सवाल है, और अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो हम आपके बिहाफ पे पूछे तो हमें भी बताइए आप 5599 पे मैसेज करके ड्राइव कीवर्ड के साथ कि क्या आप सुनना चाहेंगे फ्रॉम सुनील फ्रॉम स्क्विरल।
2: अपना ए गेम
14: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits and बहुत ही sad news के बारे में पढ़ रहा था मैं. आज ही हुआ ये Epsom area में, जो एक बहुत ही popular area है.
2: Yeah.
1: एक बहुत ही अच्छी school के बाहर ये हुआ है. Auckland Grammar School, one of the top schools, I think.
2: Hmm.
1: जहाँ पे एक आदमी ने कुछ बच्चों को पहले तो चोरी हुई गाड़ी से ठोका.
2: Yeah.
1: उसमें से एक बच्चे को काफ़ी सीरियस इंजरीज भी हुई, जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको ऊपर सर्जरी भी हुई. एंड देन आफ्टर दैट ही वेंट टूवर्ड्स अ वुमन जो अपने डॉग्स को वॉक कर रही थी वहाँ पे. एंड आई थिंक दिस इज़ द रियली लाइक क्रेजी पार्ट एंड सैड पार्ट, जहाँ पे ही स्ट्रैंगल दैट डॉग यार टू डेथ.
2: What happened? मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है ये बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या था.
1: तो इसके ऊपर ऑलरेडी 14 चार्जेस थे.
2: Oh my God.
1: मुझे समझ में नहीं आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी 14 चार्जेस थे वो बाहर क्यों घूम रहा है यार.
2: Exactly. वो पर्सन ऑन रोड कैसे था.
1: He was facing 14 charges including assault with a weapon, dangerous driving and wounding with intent. तो ये सब होने के बावजूद वो बाहर घूम रहा है बंदा यार. That's so sad man.
2: Oh my God, this is really sad, Rusbe. So after he actually female victim को when he approached ना उसको भी उसने hit किया काफी.
1: Oh.
2: Yeah, he actually उसने वो hit किया और उसके बाद the जो offender था he fled in the stolen vehicle hitting several vehicles before striking three cyclists. जो कि एक्चुअली में स्कूल के ही थे. सो पुलिस सेड कि जो व्हीकल क्रैश हुआ है एट अ पेट्रोल स्टेशन द ऑफेंडर गॉट आउट एंड अप्रोच अनदर मेंबर ऑफ पब्लिक देन हु वाज वॉकिंग द डॉग. तो उससे पहले भी एक फीमेल को उसने असॉल्ट किया
1: है. दिया था उसने.
2: या
1: ओह माय गॉड,
2: दिस इज रियली सैड. द डॉग एक्चुअली डाइड एट द सीन.
1: आई नो दैट्स रियली सैड मैन. आई मर्डर का चार्ज होना चाहिए यार इसके ऊपर.
2: 100% 100%
1: सो सो सिक यार. रियली इट्स sickening to even read all of that. But anyway, take care of yourself guys. There's nothing like safe area I think now in Auckland. And if there's someone crazy out there, there are out anywhere. Kyunki yaar Epsom aur ye jo Manukau road pe ye jo incidents ho raha hai, ye one of the prime areas bolte hai Auckland
2: mein. It's a good area bola jata hai ki wahan pe aisa kabhi kuch hota nahi hai, but you know hota hai ki ye area safe area, पॉश एरिया ये सब बोला जाता है. सो ऑकलैंड ग्रामर स्कूल ने भी वैसे इसके बारे में बोला है. दे सेड कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली दे आर क्वाइट अपसेट रिगार्डिंग ऑल दिस.
1: डेवास्टेटेड है वो. ऑब्वियसली यार ये बहुत ही बुरा किस्सा है ना. मतलब ये नोबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड बिकॉज़ इट्स वेरी सैड. But yeah, we hope कि यू नो
2: 100% द मैन वाज नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड.
1: और ये ना मैंने ये ऐसा किस्सा ये पहली बार नहीं देख रहा हूँ मैं. मेरे एक दोस्त के साथ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था जहाँ पे उसके साथ रोड रेज हुआ था. उसने उसकी गलती थी, उसने हॉर्न मारा था. बट वो बंदा बहुत ही रफ चला रहा था और सिग्नल विग्नल तोड़ के गया, तो इसने हॉर्न बजाया तो जो बंदा था वो आगे जाके रुक गया इसके लिए कि तू आ अब मैं तेरे को दिखाता हूँ. रास्ता ब्लॉक किया उसने वहाँ पे रुका, बाहर निकला एंड माय फ्रेंड वाज विथ हिज पेरेंट्स एट दैट पॉइंट ओवर देयर इन द कार. वो बंदे ने बाहर आके उसके गाड़ी पे मारा वारा, डेंट है अभी भी उसकी गाड़ी पे.
2: ओह माय गॉड. तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया.
1: उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस ने उसको क्या बोला. पुलिस ने बोला कि देख इसके ऊपर ऑलरेडी इतने इतने चार्जेस पड़े हैं, तेरे को करना है क्या, मतलब कुछ होगा नहीं, फालतू में तेरे को इनकन्वीनियंस होगा.
2: दिस इज सो सैड यार.
1: तो लिटरली उसको तभी वो टाइम पे वो फील आया कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि मैं इंडिया में हूँ. मतलब नो हार्ड फीलिंग्स बट कि लिटरली उसको ऐसा बोला कि भाई कोई पॉइंट नहीं है ये करके. इसके ऊपर ऑलरेडी वो डिपोर्टी लिस्ट जो होता है ना.
2: yeah.
1: वो क्या कौन सा तो भी एक डिपोर्टी था जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे भेजे उनको वापस.
2: वो
1: तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस थे.
2: तो व्हाई वाज दैट पर्सन ऑन द रोड.
1: या एंड ऑल्सो कि भाई ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत केसेस चल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही छोटा केस है. ये इसके ऊपर हम अब हमारे पास उन्होंने फाइल दिखाया, बोला हमारे पास इतने सारे केसेस पड़े हैं, अब तू मेरे को बता ये तेरा रोड रेज वाला केस कहाँ पे आएगा. बट नाउ समवन लाइक दैट हैज द पोटेंशियल टू डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑल्सो.
2: 100% 100% इसका मतलब कि रिव्यू करने की जरूरत है जिन लोगों के ऊपर ऐसे चार्जेस हैं,
1: no hard feelings, no hard feelings with the police as well because they are also quite swamped with a lot of
2: swamped cases. उन्होंने reality बताई उसको.
1: हाँ, reality बताई उसको.
2: I will say कि उनके हाथ में ज़्यादा नहीं है, law and order ही कुछ ऐसा है. उन्होंने reality बताई कि this is what's happening. तो वो उसको जबरदस्ती तो अंदर नहीं रख सकते हैं.
1: नहीं, वो तो नहीं, अरेस्ट नहीं कर सकते उसको. उनके भी हाथ बंधे हुए ना. सो इट्स वेरी सैड यार, लाइक व्हाट वी आर सीइंग अराउंड. आई होप थिंग्स चेंज फॉर द बेटर एंड होप दीज बॉयज आर वेल एंड होप द वुमन दैट आर अफेक्टेड राइट नाउ आर आल्सो डूइंग वेल. यार, जस्ट प्रेयर्स विद देम.
0: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपर.

0: don't break my heart.
1: X amount of respect due to you.
2: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. Stereo Nation का ये गाना आप सुन रहे थे on your Humpling Bollywood's Biggest Hits. वैसे हमारे साथ off air भी अभी बात हो रही थी हमारे एक listener की and yeah we are talking about what recently happened at Epsom this morning. बहुत ही shocking incident and something that is very unfortunate but needs some action. क्योंकि हम जब इनसे बात कर रहे थे off air वो अपनी identity नहीं reveal करना चाहते. उन्होंने काफी चीजें कही in regards to his experience as well. जहाँ पे काफ़ी बार शॉप्स में भी वो एक्सपीरियंस करते हैं कि लोग आते हैं और यू नो कुछ उठा के लेकर जाते हैं एंड देन पुलिस को वो कंप्लेन करते हैं ट्रेसपास का नोटिस भी डालते हैं बट फिर भी उनको दिखते हैं आसपास.
3: मुझे लगता है ना कि रुजबे शायद टाइम आ चुका है कि हमें एक बार फिर से रॉब से बात करनी पड़ेगी.
2: मेरे को लग रहा है बात करने का टाइम अभी
3: टू नो द व्यू अबाउट द पुलिस एज वेल. कि कई बार हमें नहीं पता होता कि पुलिस के पास कितने राइट्स होते हैं चीजों को लेके या नहीं.
2: आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्पीक टू द पॉलिटिशियंस नाउ क्योंकि अभी वोटिंग का टाइम आ गया है ना इलेक्शन का टाइम है. तो आई थिंक इट्स टाइम वी स्टार्ट रेजिंग दीज थिंग्स और इसके ऊपर हम अकाउंटेबिलिटी मांगे ताकि हमको पता चले कि भाई हम कौन सी पार्टी को वोट करें.
3: कौन सी पार्टी है जो इसके ऊपर एक नया रिफॉर्म लेके आ सकती है.
2: कौन सी पार्टी इसके ऊपर काम करना चाह रही है या इस पॉलिसीज के ऊपर करना चाह रही है. एंड अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे या हम इसके ऊपर कॉन्वर्सेशंस नहीं करेंगे और हम ये जुड़कर अगर नहीं करेंगे तो मैं अकेला यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कोई फायदा नहीं होने वाला है. राइट
3: मेरे को लगता है कि जिनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे चार्जेस होते हैं एक पंगा यहाँ पे हाउस डिटेंशन का होता है कि हाउस अरेस्ट या हाउस डिटेंशन काइंड ऑफ होता है. मुझे नहीं पता कि वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है लेकिन जिसके ऊपर इतने सारे चार्जेस ऑलरेडी है मुझे लगता है कि हाउस डिटेंशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया. इज़ नॉट इक्वल टू प्रिजन. सो प्रिजन में यू आर एटलीस्ट श्योर कि वो बंदा बाहर नहीं है.
2: पर प्रिजन में डालने के लिए भी काफ़ी झमेला है ना सैंडी. प्रिजन में भी डालने के लिए खर्चा फिर वापस ऐसी मतलब द अदर साइड ऑफ इट
3: आई नो व्हाट यू सेइंग कि इसीलिए ये सारी चीजें भी हैं. सो देयर
2: शुड प्रॉपर पॉलिसीज अराउंड इट एंड प्रॉपर लाइक पनिशमेंट्स.
3: पनिशमेंट मेरे को लगता है कि देन केस बाय केस भी स्टडी होना चाहिए ना. अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इतना कैपेबल है बाहर आके ये सब चीजें करने के लिए. वी हैव सीन न्यूलिन में जो हुआ था न्यूलिन सुपरमार्केट में जो हुआ था वहाँ पे वुलवर्थ्स में हुआ था इंसिडेंट जहाँ पे वो पर्सन वाज हाउस रिटेंशन में. उसके ऊपर भी काफ़ी केसेस थे ऑलरेडी एंड उसने बाहर आके स्टैबिंग की थी वहाँ पे आके उसने.
2: ये सैंड्रिंगम वाला भी बोल रहे हो आप. सैंड्रिंगम में भी हुआ था ना.
3: सैंड्रिंगम में भी हुआ था. दिस वॉज इन वुलवर्थ में हुआ था ये कुछ साल पहले.
2: राइट इनसे भी बात करते हैं.
4: हाय हेलो के यू हियर अगेन.
2: हाँ जी बोलिए
3: बताइए.
4: Yeah, when you are planning to do the conversation with the politician, I would love to come with you guys. And you also are required to invite the constable, the police constable in Auckland to join us to discuss this kind of things, man. Because this is such a risky and now the life-threatening incidents are happening here.
2: देखो केवर हम एज अ मीडिया हम बस ये कर सकते हैं कि हम मुद्दों को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू. इट्स अप टू आवर लिसनर्स टू पार्टिसिपेट इन देम टू कॉल टू इंटरेक्ट ऑन देम. क्योंकि हमारा तो एक ही काम है भाई. हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो हम टॉपिक लेकर आएंगे. अगर कोई कॉल नहीं करेगा कोई बात नहीं करेगा तो

0: If
1: Oh.
0: you could initiate some kind of some gathering with the relevant people, so we can join together on the through the social, like your media platform. We can invite as much as people to join us, and then we can decide what to do, and we can discuss much as much as point we could. That's
1: सो
0: my main
1: ऐसा करते हैं,
0: purpose.
1: लेट्स सी, ड्राइव्स कीवर्ड के साथ यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिख के भेजिए, कितने लोग सॉरी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि यू
0: I'm
1: नो
0: in there for as a
1: ओके
0: first.
1: चलो ठीक है. चलो आप हैं सो और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ड्राइव कीवर्ड के साथ मैसेज कीजिए 5599 का.
0: Yeah,
1: आर
0: would
1: यू
0: you
1: इन
0: be
1: अबाउट इट, वुड यू लाइक टू हैव कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग ऑल दिस,
0: political
1: व्हाट्स हैपनिंग,
0: conversations and like policy related
1: एंड
0: conversations,
1: दिस इज
0: would you
1: द
0: be keen?
1: ईयर 2026 इज द ईयर जब हम ये कन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी बिफोर द इलेक्शंस.
0: या
2: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: 5:03 हुए हैं. You're listening to Power Drive at 5. Good evening. Miss out अगर आपने कर लिया है तो हमने एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें की. एंड दिस इज अराउंड एप्सम जो हुआ आज सुबह मनुकाव रोड पे. यहाँ पे एक आदमी जिसके ऊपर ऑलरेडी 14 चार्जेस थे, उसने कुछ बच्चों को भी उड़ाया, फिर एक कुत्ते को भी मारा.
5: 14 सीरियस चार्जेस टू बी लेट रुजबे.
4: ओके, टू बी लेट है.
5: ओके, टू बी लेट है.
4: थे नहीं पहले, मतलब
5: थे नहीं पहले. सो
4: 14 चार्जेस ले होने वाले हैं उस पे.
5: 14 चार्जेस ले होने वाले हैं. पुलिस सेड कि 14 चार्जेस वुड बी लेड अगेंस्ट दिस मैन.
4: बट मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि पहले भी इसके ऊपर चार्जेस लगे थे.
5: अंडर गार्ड एट ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल.
4: अच्छा,
5: या सो मेरे को लगता है कि वही मुझे भी पहले पढ़ने में यही लगा एक्चुअली में, तो मैंने सेकंड आर्टिकल देखा तो थोड़ा क्लैरिटी मिली है.
4: क्योंकि वो लिखा है he was facing ऐसा लिखा है RNZ पे. तो was facing 14 including assault with, नहीं आ रहा, assault with weapon, dangerous driving. अच्छा, wounding with intent.
5: इसको
4: मिला
5: इस टाइम पे. सो उसके ऊपर जो चार्जेस हुए हैं ये सारे के सारे.
4: ओके, माय बैड. मुझे आर्टिकल पढ़ के ऐसे लगा था कि उसके ऊपर पहले से
5: हेडिंग थोड़ा वो थी, मिसलीडिंग थी वो.
4: राइट, तो अभी मेरे को, अभी हमको हमारे हाथ लगे हैं वन ऑफ द विटनेसेस जो मौजूद थे आज सुबह. इनका नाम मंथन है, तो हम इनको कॉल लगा रहे हैं अभी. लेट्स सी इफ ही आंसर्स द कॉल.
6: हेलो,
4: हाय मंथन, रुजबे बोल रहा हूँ हमसे. कैसे हो?
6: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
4: बस बढ़िया. मेरे साथ यहाँ पे सैंडी भी है.
5: यस, हाय मंथन.
4: मंथन, फर्स्टली आई होप यू आर डूइंग ओके मैन, क्योंकि आज सुबह
5: खुद विटनेस किया सब कुछ ना.
6: हाँ, यस, सुबह थोड़ा मैं वो हो गया था, थोड़ा डर गया था, बट अभी आफ्टर लाइक होना और वाज फाइन. या
4: Yeah, because it was quite an incident, यार. Like, मतलब बहुत ही भयानक. अभी जब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कुछ It might be very difficult to witness this, yeah, to be honest.
6: जब ये सीन हुआ तब मैं पुलिस के साथ ही बात कर रहा था, मैं उसको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या हो रहा है मेरे सामने.
5: तब जब मैं बात कर रहा था,
4: सो आपने कॉल किया था 111 पे वो टाइम पे.
6: यस, सो जब ये सीन हो रहा था तो मैं ही सामने था, तो मैं कॉल किया था पुलिस को. तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था पुलिस को, और मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी उस टाइम पे कि मैं जो देख रहा था, क्योंकि ये ऐसा इंसिडेंट था कि मैंने कभी नहीं देखा ऐसा. ना तो मूवी में देखा है, ना तो रियल सीन, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा कि लाइक वो बंदा कुछ नेक्स्ट लेवल का ही था.
4: मतलब मूवी में भी आपने नहीं देखा है और इतना भयानक.
5: ओह माय गॉड
4: यार, मैं आप बिफोर वी गेट इनटू एनी फर्दर, आई जस्ट वांट टू से गाइस, दिस ट्रिगर वार्निंग फॉर दिस सेगमेंट, प्लीज ट्यून आउट अगर आप इसको नहीं सुन पाएंगे तो. Because I really want to know what happened, and the reason why I want to know, Sandy, आपको भी पूछ रहा हूँ मैं कि, is because it's important for us to talk about this.
5: 100%. And before proceeding, also Ruzbe, I would like to say कि अगर किसी को भी कभी जरूरत है काउंसलिंग की, हेल्पलाइन का नंबर मैं आपको भी यहाँ पे प्रोवाइड करूँ. It's 0800-800-717. It's 0800-800-717.
4: Right. So Mantan, are you comfortable to just
5: take
4: share
5: us through the events?
4: Yeah, just share your experience. Yeah, kya
6: yeah. Yeah, sure. So, जब हम काम कर रहे थे तो मैंने एक आवाज सुनी कि उसने जब 3 साइकिलिस्ट को हिट किया तो आवाज मेरे तक वहां पे आई, क्योंकि उस टाइम पे क्वाइट था.
4: तो वो आपके यहाँ पे हुआ था कि दूर हुआ था? थोड़ा
6: फार, लाइक 150 मीटर्स.
4: अच्छा,
6: बीच में जो बर्गर किंग आता है बस उसकी वजह से नहीं देख पाता.
4: राइट, तो उस पार हुआ
6: बाद
4: था.
6: उसके बाद वो कार ड्राइव करके हमारे फ्यूल स्टेशन में आई. वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में कार थी, वो स्टिल ड्राइव कर रहा था क्योंकि आगे का बोनेट सब टूट गया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो रेनफली डेयरी है वहां पे कार खड़ी थी, उसको भी उसने हिट किया था.
5: ओके,
6: उसके बाद उसने 3 साइकिलिस्ट को हिट किया. उसके बाद हमारे फ्यूल स्टेशन में आके उसने हिट किया, तो number 70, luckily customer, he just filled the fuel and was coming in inside the store for get some stuff. And वो जब हीट किया उसके बाद एयरबैग्स सब ओपन हो चुके थे, पर वो उतरा और सामने दूसरी कार खड़ी थी, तो वो उसमें बैठ के वो ड्राइव करना चाहता था, जैसे कि वो वाइस सिटी नहीं देखते
4: गेम में जैसे होता है,
6: वैसा सीन था, वैसा सीन था कि वो जस्ट हीट किया और दूसरी कार लेके वो जाना चाहता था, बट उसमें भी वो कार की कीज नहीं थी,
4: लकीली
6: तो वो कार को ड्राइव नहीं कर पाया. उसके बाद उसने जो कार को हीट किया था वो कार को फिर से स्टार्ट करने की स्टार्ट करी, पर वो कार भी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसकी कीज कस्टमर के पास थी. उसके बाद उसने थोड़ा आर्ग्यू किया हमारे स्टाफ के साथ और अब्यूज किया थोड़ा, और उसके बाद वो वॉक करके सामने की साइड चला गया. तो
5: वो अंदर भी आया था,
4: तो वो अंदर आया
6: था? नहीं, अंदर नहीं आ पा, ना ना ना, अंदर नहीं आ पाया क्योंकि हमारा स्टाफ वो आउटसाइड चला गया था. तो और सडन उस टाइम पे मैंने कॉल कर भी दिया था कि ऐसा इंसिडेंट हो चुका है.
5: ओके,
4: राइट.
6: या तो उसके बाद वो बंदा सामने की साइड चला गया, उसने कुछ ऐसा पहना नहीं था, जस्ट टी शर्ट ही उसने पहना था और नथिंग एल्स. उसके बाद वो सामने की साइड गया तो मैं पुलिस के साथ कॉल पे था और मैंने पुलिस की कार भी देखी क्योंकि पुलिस भी आ रही थी, तो उसने भी पुलिस की कार को देख लिया. बट उसने साइड में एक वुमन जा रही थी, लाइक ओल्ड लेडी थी, लाइक कह सकते चाइनीज थी, एशियन है. उसके पास दो डॉग है, तो मैं हर दिन वो लेडी को देखता क्योंकि बहुत क्यूट डॉग थे उसके पास, लाइक पूडल का आइटम, वन ब्राउन एंड वन व्हाइट. तो उसने वो डॉग उसके साथ चल रहा था तो उसने खींच लिया उसके पास.
5: और
6: वो तो वो ट्राई कर, वो बंदे भी बिचारी ट्राई कर रही थी कि उसको छोड़ दे, पर वो छोड़ नहीं रहा था. उसके बाद जैसे हम पिलो फाइट नहीं करते जैसे नाइट में, तो वो उसको ऐसा ही कुछ समझ रहा था और वो पिलो समझ के उसको रोड पे पीट रहा था.
5: ओह माय गॉड.
6: या तो ये चीज में सारी एक्सप्लेन कर रहा था, और तब तक पुलिस भी आ चुकी थी और पुलिस उसको हैंडल कर रही थी, पर इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो नीड फोर और फाइव. सो उसने फाइव बार ग्राउंड पे वो डॉग को हीट किया है. और मेरी बॉडी भी ऐसे कांप रही है अभी भी, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी भी मेरी बॉडी अभी भी वो कांप ही रही है कि लाइक ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं, लाइक वाज रियली हार्ड सिचुएशन. और वो उस वहां पे भी रुका नहीं, जब पुलिस ने पकड़ लिया उसको, उसके हाथ में फिर भी डॉग था, वो छोड़ नहीं रहा था. उसके बाद अगेन उसने दो बारी फिर से वो डॉग को पीटा रोड पे, तो तब पहली बारी में शायद वो डॉग बेचारा मर चुका था बिकॉज जस्ट अ स्मॉल डॉग, यू नो. सो तब तक फिर दो पुलिस वाले और आ चुके थे और उसने फिर जो करंट वाले जो शॉट है यहाँ की, जो गन
4: है,
6: तो वो शॉट उसने फाइव बारी चलाया और मैं सुन रहा था वहां पे. तो ये चीजें सामने मेरे सामने ही हुई, और अब वो जो बंदी भी डर के चिल्ला रही थी, क्राई कर रही थी, वो मेरे तक वो आवाज आ रही थी कि लाइक वो चिल्ला रही है ऐसे, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा. मैं जस्ट कॉल पे सारी थिंग्स मैं पुलिस को बता रहा हूँ कि ये सारा इंसिडेंट हो रहा है और हमारे सामने ही हो रहा है, और एक पुलिस वाला था बेचारा, और फिर बाद में सब आए.
4: व्हाट अ टफ वन यार.
6: यस,
4: ये बंदा really क्या इन्फ्लुएंस में था क्या कोई, मतलब
5: 100% मुझे नहीं लगता क्योंकि नॉर्मल इंसान इस वे से कुछ कर सकता है, सोच भी सकता है.
6: अगर अल्कोहल भी पिया तो भी बंदा ऐसा नहीं करता, लेकिन ये मोर देन अल्कोहल मोर देन ड्रग्स.
5: इस बंदे के वो मुझे लगता है कि चार्जेस में 100% मर्डर का चार्ज तो लगना ही चाहिए, शुडंट बी गेटिंग अवे विद दिस थिंग.
6: और ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो एरिया है तो फ्रॉम लाइक एप्सम, यहाँ पे ये पहली बार नहीं हुआ है. अभी बहुत दिनों से कुछ ना कुछ चल रहा है. मैं ऐसा वीडियो भी बनाना चाहता था पर मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि क्या हो रहा है कि रात को जो भी कार पार्क कर रहा है रोड पे, तो तीन चार बंदे ऐसे है कि उसका डोर ओपन करते है, सामान लेते हैं, कार यूज करते हैं, और उस बंदे को पता भी नहीं चलता कि उसका कार्ड यूज हो चुका है, उसका जो भी स्टफ था इम्पोर्टेंट लाइक लैपटॉप फोन वो भी स्टोलन हो चुका है, और कार वैसे की वैसी लॉक्ड कार मिल रही है उसको.
4: अच्छा, तो फिर से लॉक करके जा रहे हैं,
6: भी हो रही है. हाँ, सब वो ऐसा ही हो रहा है. लास्ट मंथ से ये सब स्टार्ट हो चुका है इस एरिया में, लाइक 5 or 6 पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे घूम रहे हैं सुबह शाम, वो टारगेट कर रहे हैं किसी ना किसी कार को कि इस कार में ये चीजें है ऑलरेडी, तो वहां से वो उठा रहे हैं सर ऐसी चीजें सारी.
5: That's quite shocking for Epsom area.
6: Yes, for today's incident is like one of the like dangerous situation at morning time. मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि लाइक एक स्कूल गर्ल है, उसके पापा उसको छोड़ने आते हैं वहां पे हमारे फ्यूल स्टेशन पे. तो उसने पापा ने छोड़ा उसको, थोड़ा स्टफ लेके दिया लंच के लिए और वो निकल गए. तो वो जो लड़की थी वो जा ही रही थी और जो इंसिडेंट जिस कार को उसने हिट किया वो जस्ट वन फुट अवे
4: द गर्ल
6: एंड सी वॉज इन लाइक शॉक, लाइक क्या देख लिया उसने, लाइक अगर वो एक कदम भी आगे चलाती तो उसको हिट कर देते. तो वो उसको भी कुछ ना कुछ हो जाता. तो वो उसने वहां पे भी ब्रेक ही नहीं लगाई थी कि वो देख ही नहीं रहा था कि वो बच्ची भी जा रही है, वो क्रॉस करेगी, एक एक एक कदम भी चलेगी तो वो भी हिट हो जाएगी. तो ये चीज वो बंदे ने किया है. तो अगर अगर पुलिस इसको 7-8 साल जेल में रखे कोई फायदा नहीं है.
5: No,
6: इसको लाइफ टाइम ही प्रिजन में रखना चाहिए.
5: दिस पर्सन डिजर्व्स लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट.
6: लाइफ टाइम, यस,
5: 100%.
4: Manthan, thank you so much for sharing, man.
5: Thanks, Manthan. And so sorry, you know, ki itna kuch aapne subah dekha hai.
4: Yeah, you had to go through a lot, man.
6: Yes, and वो साइड में लाइक मैं जस्ट पुलिस से बात कर रहा था लेकिन बॉडी भी ऐसे कांप रही थी कि कुछ हो रहा है सामने, हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं. वो चीजें बहुत बहुत माइंड में चल रही है.
5: इट इज वेरी डिस्टर्बिंग.
4: या डेफिनेटली मैन, लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी टफ थिंग टू विटनेस मैन. लाइक इट इज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट ओवर हियर ऑन एयर.
5: थैंक्स फॉर शेयरिंग.
6: बस कम्युनिटी सेफ रहे, बस हम तो वही चाहते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ जो भी न्यूज़पेपर वाले आ रहे हैं या टीवी एनजेड वाले आ रहे हैं.
5: बट आर यू टेकिंग सम सपोर्ट एज वेल एज इन काउंसलिंग के लिए या फिर कहीं पर?
6: नॉट नीडेड बिकॉज आफ्टर लाइक दिस इंसिडेंट लाइक विल बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज या तो no need for counsel, but yeah, but bus just community safe rahe, bus main wahi chahta hu.
4: Yeah, sure. No, absolutely.
5: Thank you so much.
4: Thanks, Manthan. Thanks for sharing, man.
6: It's all good, Rusbe.
4: Thank you,
5: bye.
4: Yeah.
5: So once again,
4: this is what has happened today in our super city. It's very sad.
5: And agar kisi ko, you know, kai baar hota hai ki you want to take help or talk to someone about anything, so mental health services ka phone number hai jo ki 24 hour ke liye line open up rehti hai. The number to call is 0800 800 717.

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए आज हम लेकर आते हैं सिचुएशनशिप, जहाँ पे हम आपके लिए सिचुएशन लेकर आते हैं एंड देन यू हैव टू कॉल अस हियर एंड टेल अस कि आप ऐसे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते
1: हैं. या सो आज की सिचुएशन ऐसी है कि आप वॉकिंग करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में.
0: वॉकिंग करते हुए चल रहे हैं.
1: हाँ, मतलब वॉकिंग कर रहे हैं आप गाइस.
0: ओके,
1: वॉकिंग कर रहे हो एंड अचानक से आपको अपने सामने ना $100 का नोट दिखाई देता है. आसपास कोई नहीं है.
0: राइट.
1: कोई भी नहीं है आसपास.
0: ओके,
1: इट्स ओनली यू. तो आप क्या करोगे? उठाओगे, अपनी जेब में रखोगे, क्या करोगे? क्या उस $100 के नोट को?
0: मैं तो उठाऊंगा वो $100 नोट, क्योंकि फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स.
1: व्हाट डू यू डू? आप क्या करोगे?
0: पर आप क्या करोगे उस पे? आप 0800-004-866 पे कॉल कीजिए. 0800-004-866
1: इज अ नंबर. आप चल रहे हो एंड चलते चलते आपने देखा कि अरे सामने $100 का नोट पड़ा हुआ है सड़क पे एंड आसपास देखते हो कोई नहीं है, एंड लिटरली कोई नहीं है. आप क्या करोगे उस समय पर?
0: आप क्या करोगे
1: $100 के नोट को? मेरे माइंड में सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि शायद प्रैंक है.
0: हाँ, कोई प्रैंक कर रहा है.
1: कि किसी वो होता था ना पहले ऐसा कि धागा बांधा हुआ है किसी ने, कोई खींचेगा.
0: अभी भी दिखते वो वीडियोस, कितने सारे दिखते हैं वैसे वाले वीडियोस.
1: सो मेरे माइंड में सबसे पहले वो आएगा.
0: अभी अभी टाइम चेंज हो गया, लेकिन अभी ना वो अभी आजकल ऐसे वाले रील्स आते हैं जहाँ पे वो डिस्गाइज में रहते हैं, गरीब की एक्टिंग करते हैं, पैसा मांगते हैं और फिर बाद में बोलते हैं ये ले तेरे को पैसा दिया.
1: हाँ, ये भी आजकल चला है.
0: मेरे को आजकल वैसे वाले बहुत दिखते हैं.
1: सो आप क्या करेंगे? मैं भी उठा लूंगी, लेकिन उसको मैं किसी प्रोग्रेसिव काम के लिए यूज नहीं करूंगी. मे बी मैं उसको समथिंग ऐसे रैंडम थिंग, नहीं मतलब दान नहीं, मैं उसको ऐसे कि चॉकलेट खरीद लिया या समथिंग, कुछ ऐसा ऐसा रैंडम चीजें के लिए उसको यूज कर लूंगी.
0: ओके.
1: या
0: क्यों? अगर कोई ऐसे नॉर्मल कोई चीज अच्छी ली तो उससे क्या होगा?
1: ऐसा मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये चीज अगर इसको मैं सेव कर रही हूँ $100 को, तो अगर पेट्रोल भरा लिया तो, गाड़ी खराब हो गई तो, मतलब ऐसा माइंड कभी कभी होता है ना, ऐसे काम
0: तो
1: करता है आपका.
0: चॉकलेट ले लिया, चॉकलेट खा लिया, पेट खराब हो गया.
1: कुछ नहीं, चॉकलेट चॉकलेट है.
0: अच्छा, ओके.
1: सो आप क्या करेंगे सिचुएशन में? आप भी शेयर कीजिए यहाँ पे 0800 हम 0800-004-866 पर,
0: या फिर आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो.
1: या सो मैसेज भी कर सकते हैं 5599 पर. किसी का आया है मैसेज कि
0: आई विल पिक इट अप बट नॉट यूज इट ऑन मी, आई विल प्रोबब्ली गिव इट टू चैरिटी और डोनेट टू समवन हु इज वेरी नीडी. राइट. या मेरे को लगता है काफी लोग वो करेंगे.
1: या तो पढ़ा रहने दो ना उसको, कोई और जो नीडी होगा उठा के ले जाएगा. Just saying.
0: Yeah, good point. Good point. Hi, आपका स्वागत है.
2: Hello, Ruzbe. How are you?
0: Good, yeah, good. How are you doing?
2: I'm good. How's Andy? How are you?
1: I'm good, thank you. क्या नाम है आपका?
2: सुनील बोल रहा हूँ.
1: जी सुनील, बताइए.
2: मैं तो दाएं देखूंगा, बाएं देखूंगा और उठा के उसको जेब में डाल लूंगा. और बाद में डेफिनेटली उसका मैंने पेट्रोल ही भरवाऊंगा, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत है इस पर इस टाइम.
0: तो
1: ये भी सही है.
2: ऐसा एक्चुअली हुआ मेरे साथ एक बार. वाटर फ्रंट पे घूम रहा था मैं, तो वहां पे $50 नीचे पड़े थे.
0: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, तो मैंने पहले तो देखा, फिर मुझे शर्म आई, मैं उठाऊं के ना उठाऊं, ये वो सैंडी जो हो रही है, फिर क्रैक ना हो, कोई खींच ना ले. मैंने थोड़ा सा और अपने अंदर थोड़ा सा अपने आप को इंकरेज किया. मैंने कहा नहीं भाई उठा, लोग तो $1 नहीं छोड़ते, तू 50 को छोड़ रहा है, उठा.
1: वही ना,
2: शर्म को कर बाय बाय और 50 का तेल डाल और घर जा.
0: तो आपने फिर उठाया और फिर तेल भरा उसका.
2: फिर उसका तेल भरा.
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस. अच्छी किस्मत है आपकी भाई.
2: मेरे ससुर जी को बहुत मिलते हैं पैसे ऐसे, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहता हूँ.
1: उस दिन भी थे क्या वो?
2: उस दिन भी साथ ही थे वो.
0: तो वो है
2: उनका लक बड़ा है. वो जहाँ भी जाते हैं उनको पैसे गिरे हुए मिलते रहते हैं. मैंने कहा मैंने आपको फॉलो करना है बस. कोइंसिडेंटली $50 मिले मुझे उस दिन.
0: क्या बात है यार,
1: सही है यार.
0: दैट्स गुड मैन. किसी का होते किस्मत में, मुझे लग रहा है ऐसा. मेरे तो गिरते ही रहते हैं.
1: तुम्हारे ही हो गए फिर. यही बंदा है वो रुजबे.
2: भाई मांगना मत आप उसे.
0: नहीं नहीं नहीं भाई. थैंक यू फॉर कॉलिंग मैन सुनील. थैंक्स.
1: थैंक यू सुनील. बाय.
0: I will surely pick it up. एक और मैसेज आया and give it off to charity. As Parsi, thy charity or donate to a noble cause.
1: ये मैंने अपन ने बोला है. तो आप भी क्या करेंगे इस सिचुएशन में, आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 0800 हम पर या फिर मैसेज करके 5599 पर.
3: Yo, yo, yo, Johnny Law. Hold on, man. Them my nephews. They great. Slide to the side and let the rest of the people in.
4: It still ain't nothing but a G thing.
5: G thing.
4: G thing. I jumped out the car, let the beat bang. Watch it down, woof.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Drive show आपके लिए जारी है. हमने आपको पूछा है कि आपको पैसा मिले अगर पड़ा हुआ तो आप क्या करोगे उसका उस सिचुएशन में. एंड काफी लोगों ने यहाँ पे मैसेज भेजा. एक मैसेज बहुत सही लगा मुझे सैंडी. I will pick up and buy lotto.
1: सही है यार.
0: ये अच्छा आइडिया है.
1: मतलब अगर वो आपके लिए था तो आपको और भी मिल जाएगा. अगर नहीं था तो गया.
0: गुड पॉइंट ना.
1: Isn't it so cool यार. ये तो अभी डेफिनेटली ना काफी लोग ऐसा चलते चलते ढूंढेंगे
0: कि कुछ मिल रहा है क्या आज.
1: कुछ मिल रहा है क्या.
0: एक एक का मैसेज आया. उन्होंने कहा है यहाँ पे कि माय हस्बैंड फाउंड $20 विद बैंक स्टेटमेंट. ही वेंट टू द बैंक डिपॉजिट $20 इन दैट अकाउंट. यार ये तो भाई
1: ये तो नेक्स्ट लेवल. वेरी नाइस यार.
0: एफर्ट डाला है.
1: बट ठीक है ना क्योंकि बैंक स्टेटमेंट थी तो सही है.
0: मैं देखता बैंक स्टेटमेंट. मैं बैंक स्टेटमेंट देखता बोलता कि हाँ काफी पैसे के इसके पास. ठीक है चल $20 का लॉटो ले लेता हूँ.
1: पर यार सो कॉल्ड किसी ने मैं भी एक्सपेरिमेंट किया हो कि $20 के नोट के ऊपर बैंक स्टेटमेंट लिखी हो कि देखते हैं कि गया तो गया नहीं गया तो मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा. इट माइट बी एन एक्सपेरिमेंट.
0: या
1: करके देखते हैं. ये $5 के नोट में
0: $5 के नोट पे ही लिखना अकाउंट नंबर.
1: या
0: नहीं नहीं मत लिखना. बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी. बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ओवर. आपके लिए और भी बातें और भी गाने सुनते रहिए हम.
2: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. On vacation.

0: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
1: MediaWorks complaints. How can I help?
2: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
1: Thank you.
2: It's all I can think about.
1: What does it sound like?
2: Yeah, I'd rather not.
1: Go on, why don't you have a crack?
2: Okay, got a plumbing problem.
1: Oh, I need a bit more than that.
2: They've got your back.
1: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
2: Oh, okay.
3: There's no better plumber to give it a crack.
1: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
2: No, I want a plumber.
4: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
5: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
6: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
7: Are you ready to go home?
8: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
9: Power Drive at 5.
10: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
11: You are listening to Power Drive at 5. आपके लिए हम यहाँ पे drive show लेकर आते हैं 7 बजे तक और
12: Yeah, और आपके साथ कुछ events की information भी हम वैसे share करते हैं यहाँ पे. जैसे कि रामलीला रुजबे 8 अगस्त को इसी Saturday को होने वाली है. एंड रामलीला प्रेयर्स जो है ये 5 बजे शुरू हो जाएगी. देन परफॉर्मेंसेस विल स्टार्ट एट 6 PM वैदिक सेंटर में ये होगी. एंड वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं. जिकाश विल बी देयर. जिकाश एंड अविनीत हमारे हम के जो मेंबर्स हैं ये दोनों वहाँ पे रहने वाले हैं. इनफैक्ट मैं बता दूँ कि जिकाश एंड अवि वहाँ पे रहने वाले हैं और आपको वहाँ पे हम की मर्चेंडाइज भी मिल सकती है.
11: ओह क्या बात है.
12: यस
11: सो ज़रूर हमारे जो वीकेंड के कमाल के आरजीएस हैं उनको आप वहाँ पे मिल सकते हो. रेडियो अनाउंसर्स को जिकाश एंड अवि बोथ आर गोइंग टू बी देयर एट रामलीला जहाँ पे एक टाइमलेस स्टोरी एंड इटर्नल सेलिब्रेशन हो रहा है वैदिक सेंटर में 32 ग्लासगो एफ पापा टोय टोय.
12: सो टिकट सिर्फ $10 की है एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनकी एंट्री एकदम फ्री है.
11: यहाँ पे एक्चुअली स्टॉल्स भी अवेलेबल है फॉर हायर. अभी पता नहीं अभी भी अवेलेबल है.
12: अभी नहीं अवेलेबल है. अभी नहीं है. सो स्टॉल्स भी वहाँ पे हैं खाने पीने के. एंड यू नो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो आपके बच्चों ने या आपने कभी रामलीला नहीं देखी है इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एक्सपीरियंस इट.
11: या इट विल बी गुड फन. मैंने एक्चुअली मैं बाली में गया था तो वहाँ पे चल रही थी रामलीला.
12: तो वहाँ पे कभी मानते हैं.
11: हाँ वहाँ पे बहुत मानते हैं. वहाँ पे उनका प्रॉपर पूरा वो होता है एक शोकेस होता है.
12: ओह वाओ
11: इट्स रियली नाइस. बट या डेफिनेटली आप यहाँ पे पहुँचिएगा टू सेलिब्रेट to enjoy this Ramlila and 8th of August मतलब इसी Saturday पे ये होगा 6 बजे से.
12: Yes, so वहाँ पे आप ज़रूर पहुँच सकते हैं. एंड और भी कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जिसकी जानकारी आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते हैं. हमारा पॉडकास्ट भी ज़रूर जाके सुनिए. हमने अभय कोहली के साथ बात की है जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र है इन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड में. तो इन्होंने ना हमारे साथ फुल डिस्कशन की है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके राइट्स क्या है. कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं पता होती है जैसे प्रीमियम्स के बारे में. काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि प्रीमियम्स क्या होते हैं. एंड प्रीमियम्स में यू नो जहाँ पे आप ओवरसीज़ में होते हो एंड आप पे करते हो यहाँ पे जॉब के लिए उस सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए. उस सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो ये भी एक्चुअली में उन्होंने शेयर किया है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स के स्टडीज इन्होंने यहाँ की बताई है.
11: एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो पॉडकास्ट पसंद है आपको वीडियो इंटरव्यू देखना पसंद आता है तो आपके लिए वीडियो भी हमने अभी अवेलेबल कर दिया है हमारे यूट्यूब पे. आप हम FM ऑकलैंड सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे पहला वीडियो भी दिख जाएगा जहाँ पे हमने टाइटल उसका दिया है नेविगेटिंग न्यूजीलैंड वर्क लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लायंस एंड कॉशनरी टील्स. तो अभय कोहली को सुनिएगा. बहुत अच्छी उन्होंने बातें की है वहाँ पे.
12: बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. और अगर आपको ऑडियो सुनी है तो ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर आपको लिंक मिल जाएगा. यू कैन गो टू रोवा सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे, आपको लिंक मिल जाएगा. अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये पॉडकास्ट सुनना, स्मॉल डिटेल्स जो आप मिस कर सकते हैं. एंड अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करने वाले हैं, नए आए हैं, तब भी आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है,
11: तो सुनिएगा ज़रूर.
9: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: छह बज चुके हैं. You're listening to Trend Makers only on the Drive Show with Sandy and Rizvi. Hi Sandy, good evening.
5: A very very good evening. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं काजोल को.
4: जी, काजोल का बर्थडे है आज और उसके ही टॉप गाने कुछ डायलॉग्स आपको सुनाने वाले हैं हम इस घंटे. काजोल मुझे लग रहा है आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेरे घर पे सैंडी बचपन में काजोल का पोस्टर था.
5: क्या बात कर रहे हो.
4: यस,
5: यू लाइक काजोल सो मच.
4: शाहरुख एंड काजोल दोनों का पोस्टर था मेरे घर पे.
5: जोड़ी तुम्हें मेरे को डीडीएलजे.
4: या DDLJ देन कुछ कुछ होता है you know?
5: पोस्टर था मेरे पास, पोस्ट कार्ड थे
4: मेरे घर पे, लिटरली बड़े पोस्टर लगे थे शाहरुख और काजोल के.
5: आई हैड DDLJ पोस्ट कार्ड्स विद मी. वो आते थे ना छोटे छोटे, उस पोस्ट कार्ड से कहते हैं ना वो छोटी छोटी फोटोज जो ऐसे उस समय पर कोई भी मूवी जब रिलीज होती थी तो उनके ऐसे पोस्ट कार्ड गाइज रिलीज होते थे और बहुत सारी हमारे स्कूल के बाहर ही मिलते थे वो. एक्चुअली
4: क्या बढ़िया जगह पे बेचने
5: पता है सब बच्चे खरीदेंगे. तो वो जो होती है ना स्कूल के बाहर जो छोटे छोटे वो शॉप्स होती है, ठेले होते हैं जहाँ पे कभी आम पापड़ चूरन ये सब चीजें मिलती है. तो वहीं पे ये भी मिलते थे, पोस्ट कार्ड भी मिलते थे.
4: और आपने लिए थे उसके.
5: मैंने DDLJ के भी खरीदे हुए, मैंने बहुत सारी मूवीज के खरीदे हुए थे.
4: नाइस यार, मुझे पता नहीं क्या मैं सच्ची में इतना बड़ा फैन था कि या मेरे पापा फैन थे शायद, पता नहीं. बट नहीं, मैं ही था शायद. आई कांट ब्लेम इट ऑन माय डैड. But yeah, but I can't imagine doing that today, like having posters in rooms. Like, when was the last time you had a poster in your room? Hero, heroine, या जो भी जिसका भी poster.
5: मेरे को लगता है अभी भी रखते हैं, but sports person का भी रखते हैं काफी
4: लोग. Sports person का बहुत लोग रखते हैं.
5: Yeah, अभी vision board रखते हैं ना काफी.
4: अभी तो व्हाइट बोर्ड होता है ना काफी इसमें.
5: काफी घर में व्हाइट बोर्ड भी होता है. सो यस, आप भी बताइएगा कि आपने कब लास्ट पोस्टर अपने घर पे लगाया था. आई ऑलवेज हैड सलमान खान पोस्टर. दो
4: बड़ा पोस्टर
5: मेरे पास अभी भी है, वो पोस्टर न्यूजीलैंड में है. नहीं तो मतलब
4: तो क्या फायदा हुआ.
5: अरे
4: एटलीस्ट कुछ तो काम आए.
5: व्हाटएवर. तो जो सलमान खान का पहला पोस्टर मेरे घर पे लगा था, मैं वो यहाँ पे लेके आई हूँ यू, मेरे पास यही पे है.
4: यार,
5: yeah, it's the first poster of my life.
4: क्या बात है.
5: Anyway, we are talking about काजोल today.
4: जी.
5: So काजोल ने डेब्यू किया when she was only 16. So उनकी पहली मूवी थी बेखुदी while she was studying. So उसी समय पर she did her acting as well full time.
4: वो खुद को, काजोल खुद को ना laziest actor मानती है. और इनके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक उनका डायलॉग और उनका ये गाना एंजॉय कीजिए.
6: ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में. आंखों की खिड़की पर एक साया सा लहराता है, दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक देकर जाता है. गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको पूछती हैं, हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है. उसकी सांसें रेशम जैसी गालों को छू जाती हैं, उसके हाथों की खुशबू है अब तक मेरे बालों में. हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में.
7: अरे सिमी, तू तो बड़ी अच्छी शायरी करने लग पड़ी है. मुंडा बड़ा चंगा लगता है, पर यह है कौन.
8: माँ, अनदेखा है, अनजाना है वो.
7: ले, यानी कि कोई है ही नहीं. मैं भी बोलूं, ऐसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल. तू भी कितनी बावली है, ना देखी ना मिली और सपने देखने लग पड़ी.
8: नहीं माँ, ये सपना नहीं है. मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, उसे कभी देखा नहीं, पर वो है कहीं ना कहीं. तो है

0: आप सुन रहे हैं हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। आज ट्रेंड मेकर्स में काजोल के गाने हम आपको सुना रहे हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है। वेल, हमने बात की थी काजोल के बारे में कि वो लेजीएस्ट एक्टर मानती है खुद को, और ये बेसिकली इनका खुद का मानना भी है। वो एक पावर हाउस परफॉर्मर तो है ही, उनको 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले हैं अब तक, लेकिन वो हेट करती है लॉन्ग स्केड्यूल्स एंड बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स। वो उसका फोकस होता है कि मैं फैमिली के ऊपर ध्यान दूँ ज़्यादा।
1: एंड काजोल इज 90s की पहली ऐसी एक्ट्रेस जिसने विलन का रोल किया था।
0: एक्चुअली मैं
1: गुप्त मूवी में
0: बहुत
1: मतलब एज अ लीड एक्ट्रेस होना एंड देन किसी मूवी में रैंडमली ऐसा विलन का रोल करना,
0: वो भी जब उसका नया करियर था वो टाइम पे। यार अपकमिंग थी वो टाइम,
1: मतलब सो जस्ट लाइक शाहरुख खान, शी डिड दिस एज वेल इन 90s।
0: Yeah, and one interesting thing that I read about her is कि ये एक avid reader है, तो ये एक time पे जब shots के बीच में ये पढ़ना इसको बहुत पसंद था, और दूसरी चीज़ ये speed knitter है, तो ये knitting करती थी in between shots। और actors का हमने अक्सर ये देखा है कि actors का main game होता है waiting game, और उसमें ये speed knitting करती थी।
1: Yeah, और उस समय पर scrolling के लिए ज़्यादा option नहीं थी ना।
0: That is also right, and उनका जो favorite genre है reading में वो है science fiction या फिर crime thriller novels।
1: Oh wow,
0: so yeah।
1: सो यस, आज काजोल का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड अभी जो गाना हम सुनने वाले हैं उससे पहले इस मूवी का एक फेमस डायलॉग भी सुनते हैं, जिसमें यू नो ये डायलॉग काफी फेमस हुआ था काजोल का, एंड जिस वजह से वो हंसती है बेसिकली, वो क्लासिक है।
0: मैं वो मैं जब पढ़ रहा था ना काजोल के बारे में, तो मेरे को लगा कि यार काफी सारी चीजें ना सैंडी के साथ बहुत रिलेट होती है, जैसे कि ये जो उसकी हंसी है लाउड हंसी, सिग्नेचर बॉयस्ट्रस अनफिल्टर्ड लाफ्टर, ये लेजेंडरी है ना। और हमारे यहाँ पे भी ऐसे लाफ्टर
1: लेजेंडरी लोग हैं,
0: हाँ, जो ऐसे लाफ्टर रखते हैं। वेल एनीवे, K3G का ये डायलॉग और गाना आपके लिए इस बार।
2: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए।
3: ओके।
2: एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
3: वाह!
2: चंदू के चमचे की क्या था?
4: मुझसे मिलने आए थे ना?
3: नहीं, मैं एक्चुअली दाईजान से मिलने आया था।
4: प्यार से उसे दाईजान बुलाते हो?
3: ऑफ कोर्स, पाल पोस के उन्होंने बड़ा जो किया है।
4: पाल पोस के बड़ा किया है? तब तो गोद में मैं भी खेली होंगी। आपकी और उनकी।
3: मैं दाईजान से कैसे शादी कर सकता हूँ?
4: हाय, बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो, क्यूट भी हो।
5: भैया भैया भैया, पुलिस पुलिस की तरफ।
4: मैं तो रुखसार से कहने वाली हूँ कि मुझे अशफाक मियां बहुत पसंद है।
3: एक्सक्यूज मी, कौन अशफाक मियां?
4: कौन अशफाक मियां के? बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो।

Trend Makers. On vacation. A secret destination.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
2: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
3: Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
7: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Bedzaras. Sleep easy for less at Bedzaras Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
8: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Trendmakers mein Kajol ko aaj hum shout out de rahe hai because it's her birthday. And uske baare mein thodi bahut baatein bhi aapke saath hum share kar rahe hai. Well, maine suna tha Sandy, coffee break mein aapne kaha tha ke Kajol is going to be the new Jaya Bachchan.
9: Maine nahi aisa bola tha. Maine ye bola tha ki मीडिया का ये कहना है कि काजोल आने वाले दिनों की जया बच्चन है.
8: या एंड कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि सही भी है क्योंकि उनका जो पीआर रिस्पॉन्सेज होते हैं वो काफी अनफिल्टर्ड होते हैं.
9: या
8: वो बहुत ही ऐसा मुफ्फट टाइप के उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं. एंड उनको काफी मतलब जाना गया है. अभी उनका जो भी शो आया था ना ट्विंकल के साथ, तभी भी वो लोग काफी ट्रोल हुए थे उस बात को लेकर,
9: काफी व्यूज को लेके उनके जो थे.
8: ये क्या है मतलब एकदम ऐसे.
9: या
8: बट मुझे सही लगा वो यार.
9: लेकिन जो काजोल हमने मीडिया में अनफिल्टर्ड देखी है, मुझे लगता है कि वो रूप हम काजोल का उस शो में नहीं देख पाए.
8: हाँ,
9: मे बी बिकॉज जोड़ी काम नहीं की वो इस वजह से, मतलब द फॉर्मेट ऑफ द शो या पता नहीं क्या.
8: मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम क्या था उस शो में. उसमें काजोल और ट्विंकल दोनों की पर्सनालिटी बहुत सिमिलर थी. दोनों एक दूसरे को वन अप करने जा रहे थे काफी बार. आई थिंक इट द जोड़ीज हैव टू ऑलवेज बी कॉन्ट्रास्ट.
9: या या
8: तो कॉन्ट्रास्ट में मजा है, जैसे कि सैंडी और रुस्बे कॉन्ट्रास्ट.
9: कॉन्ट्रास्ट है.
8: अभी सैंडी भी अभी बहुत हो गई है लेकिन अनफिल्टर्ड. प्रॉब्लम यही हो गया है
9: उसमें. लेकिन तुम काजोल वैसे यू नो इंटरेस्टिंगली उनको पहले अजय देवगन पसंद नहीं थे. व्हेन दे फर्स्ट मेट ऑन अ फिल्म सेट
8: उन्होंने कहा था ये इसके बारे में,
9: मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है.
8: लेकिन
9: धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, इवेंचुअली टर्न इनटू मैरिज. Wow.
8: मेरे लिए काफी शॉकिंग था कि काजोल सीधा अजय देवगन के साथ शादी, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा गॉसिप्स से आए नहीं थे बाहर. अबाउट देयर रिलेशनशिप आल्सो या एनीथिंग.
9: अपेरेंटली अजय देवगन वाज डेटिंग ट्विंकल खन्ना.
8: व्हाट?
9: या वो ट्विंकल खन्ना को डेट कर रहा था पहले. एंड ओ यार, ट्विंकल खन्ना काजोल डेट द शो. व्हाट अ सर्कल. बट और भी एक दो को डेट किया था. करिश्मा कपूर.
8: क्या बात कर रहे हो.
9: या या सो ट्विंकल खन्ना, करिश्मा कपूर एंड देन काजोल. दीज वर द फेमस वन. या
8: ओ वाओ, अजय देवगन भी प्लेयर था मतलब.
9: ओ फुल ऑब्वियसली
8: अक्षय कुमार को हम लोग बदनाम कर रहे हैं. अजय देवगन की कोई बात ही नहीं कर रहे. सिंगम एंड सूर्यवंशी. एनीवे
9: चुप है वो.
8: या बट एनीवे और भी बातें करेंगे हम काजोल के बारे में. आप सुनते रहिए हम

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: का सी फूड बहुत ही फालतू है प्लीज, यहाँ से सब एक्सपोर्टेड माल आता है।
1: हाँ।
0: यहाँ पे मच्छी अच्छी नहीं है, सब फ्रोजन आता है यहाँ पे।
1: हाँ, मच्छी तो इतनी मिलती है यहाँ पे।
0: सी फूड खाना है आपको तो बाली जाओ।
1: बाली तो हम जाएंगे ना मार्च 2027, अगर आपको भी जाना है गाइस बुक योर टिकट्स नाउ बिकॉज़ बहुत ही कम स्पॉट्स रह चुके हैं।
0: क्योंकि वहाँ का सी फूड अगर आपको रियली एंजॉय करना है, लास्ट टाइम मैं जब गया था तो हमने वहाँ पे सी फूड प्लेटर किया था, $50 में हमें मिला था फुल रेंज सी फूड और दो लोगों के लिए। अरे सुपर्ब था वो,
1: नाइस
0: एकदम क्लास।
1: Yeah. Anyway.
0: So anyway, if you want to join us to Bali, I can take you to all these hideouts.
1: So drive लिखे भेजिए 5599 पर, expression of interest के लिए आप form fill कीजिए and you will get the itinerary, prices.
0: अभी बहुत कम slots बाकी है, मतलब कम मतलब
1: सिर्फ 12 seats बाकी है।
0: हाँ, तो फटाफट यार, हर group में देखो चार चार लोग ऐसे होते ही है, दो दो तीन तीन लोग का तो आ रही है query कभी। So ये 12 भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे, मतलब
1: already क्योंकि guys inquiries है तो आप जल्दी से अपना बुक कर लीजिए। इट्स मार्च 2027, 23rd मार्च से लेके 2nd अप्रैल तक ये ट्रैवलिंग डेट्स है, ईस्टर वीकेंड।
0: यू विल हैव पेमेंट ऑप्शंस एज वेल व्हिच यू विल नॉट गेट अदरवाइज, सो गेट इन टच एंड या लेट्स फ्लाई टुगेदर।
1: या वैसे काजोल के बारे में बातें करते हैं तो शी बीन इन्वॉल्वड इन वेरी सोशल कॉजेज एज वेल, स्पेशली चिल्ड्रंस एजुकेशन इनिशिएटिव्स, इसमें भी वो इन्वॉल्व रही है, नॉट जस्ट द एक्टिंग।
0: आपको पता है इन्होंने शादी कैसे की थी?
1: कैसे?
0: इन्होंने 1999 में एक सिंपल होम टेरेस वेडिंग किया था।
1: वाओ,
0: अनलाइक लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो बड़ी बड़ी शादियां करते हैं
1: डेस्टिनेशन वेडिंग्स,
0: एट दैट पॉइंट शी जस्ट डिड अ होम टेरेस वेडिंग, एकदम ही सुमड़ी में कुमड़ी एकदम ऐसा। एंड इनकी आपको पता है ना, काजोल ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ रॉयल्टी लिनिएज, तो उनके चार जनरेशन स्क्रीन के लेजेंड्स रहे हैं। उनकी मॉम वेटरन एक्ट्रेस तनुजा, उनकी आंट थी नूतन, उनकी ग्रैंड मदर शोभना समर्थ और उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर रतनबाई।
1: एंड दैट्स हाउ तनुजा के साथ वो मुखर्जी खानदान के साथ कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पे शोमू मुखर्जी, देन रानी मुखर्जी, ये सब लोग।
0: और शोमू मुखर्जी ऑल्सो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। So yeah, she comes from a very strong lineage. इनके बच्चों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है ना अपने को अभी, मतलब बड़े बच्चे हैं।
1: वीडियोस देखी नाइसा, आई थिंक बेटी का नाम नाइसा है,
0: और लड़का भी है ना,
1: लड़का भी है, उसके साथ भी काफी वीडियोस देखी है वैसे,
0: बट कुछ एक्टिंग में अब तक नहीं दिखे, लॉन्च नहीं हुए।
1: बच्चे हैं वो अभी,
0: वो बच्चे
1: नहीं, जो लड़का है वो बच्चा ही अभी, आई विल से इज अ किड, बट जो लड़की है वो या शी इज अ टीनेजर।
0: राइट, सो बेसिकली काफ़ी बातें हुई आज काजोल के बारे में, एंड इसी के साथ अभी हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक फाइनल सॉन्ग के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल ये गाना है।
1: सो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कल आपसे मुलाकात होगी, बाय,
0: एंजॉय।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
5: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland।
7: हम टाइम चेक। हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
8: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Transpower says there could be another record demand for electricity tomorrow morning as the cold weather grips the country and the cold snap is set to extend into Friday. A 49-year-old is expected to appear in court tomorrow over this morning's violent spree in the Auckland suburb of Epsom. A female jogger was assaulted just after 7, and the alleged attacker then stole a vehicle and fled, hitting a group of cyclists and then killing a dog. Oil prices have fallen to a 3-week low after senior US officials raised hopes of a deal with Iran to reopen the key Strait of Hormuz. In sport, the All Blacks open their South African tour this Saturday morning against the Stormers at 5 hour time. Coach Dave Rennie will announce the team tomorrow morning at 3 o'clock. The ABs will play the Stormers, Sharks and Bulls before the first test. And rugby league, with Machinery House in a league of their own, the Warriors will be hosting the table-topping Penrith Panthers in front of a sellout crowd on Friday night. Star front rower Jackson Ford still on the sidelines with that pec injury, but he has re-signed until the end of 2029.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: Hum. Night Cafe on Hum.
9: Aa gaya.
7: You're listening to Avineet.
10: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal, namaskaram, kem cho, main hu avi ho gaya hu aapke saath mein, jabki aaj hai Wednesday, 5th of August, congratulations, kyunki we are halfway through the week, aur hai na ye mazedar baat, to aise mein night cafe mein, aaj ke liye aapke saath mein pesh karenge kuch aise se gaane jo bilkul chatpata rahe, aur iske saath saath kuch spicy news and gossips bhi lekar aayenge aapke liye. ये हमारा आज का नाइट कैफे का फॉर्मेट है और अभी से लेकर 12 तक मैं अभी आपका साथ देता रहूंगा ओनली ऑन 104.2 एफएम साथ में रोवा पर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कीप हमिंग

या हम पर नाइट कैफे लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज का जो शो है बिल्कुल हॉट एंड हैपनिंग रहेगा, गर्मा गर्म गॉसिप भी आपके साथ में शेयर करते रहेंगे क्योंकि यह है मिड वीक मसाला। तो ऐसे में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं बॉलीवुड से कुछ ऐसी जानकारी जिस पर कुछ इनसाइट दिया है सीनियर जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश ने। ये एक समय पर बहुत ही फेमस और माने जाने जर्नलिस्ट हुआ करते थे जिन्हें फिल्म की मोहरत पर बुलाया जाता था, साथ में इंटरव्यू व्यूज के लिए बुलाया जाता था। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसी ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन दी है अपने इंटरव्यू में, जहां पर इन्होंने कहा है कि ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा द मैवरिक डायरेक्टर और साथ में उर्मिला मातोंडकर ने शादी कर ली थी और ये शादी एक मंदिर में हुई थी और इसका जो कन्फर्मेशन है वहाँ के पुजारी ने ही इनको दिया था, जिन्होंने कन्फर्म किया कि इन्होंने ट्रेडिशनली एक बंधन में ये बन चुके थे। और इनको ये जो टिप है ये नन अदर देन चिरंजीवी, साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने दिया था। जबकि ये पहुँचे थे चिरंजीवी का इंटरव्यू करने के लिए, तो वहाँ पर चिरंजीवी ने इनसे पूछा कि आप काफ़ी बातें तो जानते हो, इसके बारे में लिखते हो, हाउ कम आपने अभी तक राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर की शादी के बारे में नहीं लिखा। तो ये बताते हैं ज्योति वेंकटेश की ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज क्योंकि सच में इनको नहीं पता था और फिर चिरंजीवी ने ही उनको उस पंडित का नंबर दिया जहां पर इन्होंने शादी की थी। और ये इंटरव्यू में इन्होंने कन्फर्म किया है कि बातें करते हुए पंडित ने कन्फर्म किया कि हाँ इन्होंने ही करवाई थी शादी उर्मिला मातोंडकर साथ में राम गोपाल वर्मा की। हालांकि ये साथ में कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिके और फिर दे वेंट दे सेपरेट वाइज। दिस इज गर्मा गर्म आपके लिए ऑन नाइट कैफे।

Night Cafe on Hum. A secret destination.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
3: Māori Mā, every day we make choices. Choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: हम नाइट कैफे ऑन हम.
6: हम पर नाइट कैफे में अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फ्लाइट में बिठाया और बॉलीवुड का सैर कराया. तो अब समय हुआ एक और एक फ्लाइट के बारे में आपको बता दें, जहां पर आपका इंतजार कर रहा है बाली एंड बैंकॉक का गेटअवे, जिसे आप तक लेकर आ रहे हैं सैंडी एंड रुस्बे. ये रहेगा मार्च 2027 में. तो अभी से ही आप अपना जो प्लेन्स है ये बना सकते हैं, जबकि एक ही ट्रिप में आप दो डेस्टिनेशंस घूम सकते हैं, बाली और बैंकॉक, मार्च 2027 में. अगर जो अभी से ही आप अपना जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है ये करना चाहते हैं, तो 5599 पर ड्राइव लिखकर भेजें और यहां से आपको पूरा का पूरा इंक्लूसिव टूर प्राइस मिल जाएगा. उसके बाद में आप प्लान कर सकते हैं कि कैसे और कब कैसे फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे अपने छुट्टियों के लिए आप अर्जी डाल सकते हैं. ये सभी कुछ रहेगा बाली एंड बैंकॉक गेटअवे में. आप अभी से ही प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे की महफिल लिए मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपको यही बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपका प्यार हमें मिलता रहता है. आप अपना जो प्यार है हमें 5599 पर देते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं. इसके अलावा रोवा पर भी आप हमें फॉलो करते रहते हैं और सुनते रहते हैं प्रोग्राम्स को, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन एक और एक ज़रिया है जहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हैं, ये है फेसबुक का पेज. हम 104.2 FM का फेसबुक का पेज, यहाँ पर खास आपके लिए कॉम्पिटिशन्स भी रन किए जाते हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं. और इसके साथ साथ जितने भी हमारे आरजेज होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज़ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके लिए डालते रहते हैं. कुछ क्विज होते हैं जो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, तो अगर जो आप इन्हें मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हम फेसबुक पेज को अभी ही फॉलो कीजिए. और थोड़ी देर में और आपको बताऊँगा कि अभी जो करंटली जो प्रमोशन चल रहा है हम के फेसबुक पेज में वो क्या है और कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं. सुनते रहिए हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: You're listening to Avineet.
1: हमारे आज के इस नाइट कैफे के सफर में ये दूसरा हवा है आपके साथ में, और इस हवा पर भी आपके साथ में ढेर सारे बातें रहेंगी। इसके अलावा जो चटपटे गीत का हमने आपसे वादा किया था, ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा। बस सुनते रहिए 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर हमारा साथ देते रहे। मैं हूँ अवि आपके साथ में, और 12 तक ये जो कारवा है, सिलसिला है, सफर है, ये आपके साथ में तय करते रहेंगे।

हम पर नाइट कैफे में आपको जल्द से ऐसे दो इवेंट्स के बारे में बता दूं जो इसी वीकेंड को होने को है। तो ऐसे में सबसे पहला पहल मेघ उत्सव, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो कि इंडियाज मुनसून फेस्टिवल को ओकलैंड में सेलिब्रेट किया जाएगा। यहां पर आप जाकर खुलकर कल्चरल परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं, उनका मजा ले सकते हैं। ढेर सारे फूड स्टॉल्स है जिसमें आप कुछ चटपटे खाने का भी मजा ले सकते हैं। बच्चों के लिए खास एक डेडिकेटेड कोना है जहाँ पर इनके लिए फन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ में आपको शॉपिंग करने का एक अलग माहौल दिया जाएगा। ये सभी कुछ इंडियाज मॉनसून फेस्टिवल में, और यहाँ पर जो मेघ उत्सव है ये आप सेलिब्रेट करने के लिए जा सकते हैं माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल 8 अगस्त को 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक। इसके अलावा एक और एक मौका है जहां पर आप जाकर इसी वीकेंड 8 अगस्त को जाकर रामलीला देख सकते हैं, जबकि किवी फेन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट अलोंग विद हम एज मीडिया पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए रामलीला। तो आपको सिर्फ जाना होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोई, यहाँ पर 8 अगस्त को रामलीला स्टेज किया जाएगा। टिकट प्राइसेस है $10 पे पर्सन, बट यानी कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए फ्री एंट्री है। टिकट्स के लिए और जानकारी के लिए मास्टर अशोक को 02117954599 पर कॉल करें।

0: liquid destination. Two lucky people. One unforgettable adventure.
1: On vacation.
2: Take a trip.
1: Get away.
0: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
3: I'ma get away.
0: Listen on 104.2 FM and Rover.
4: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
9: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
9: हम
8: नाइट कैफे ऑन हम।
10: नाइट कैफे में मैं हूं अभी आपके साथ में, बस सुनते रहिए हम 104.2 FM, साथ में रूपा पर।

हम पर यह है नाइट कैफे और अगले आवा पर जबकि यह है मिड वीक मसाला। तो ऐसे में एक और एक बॉलीवुड का चटपटा जो न्यूज़ है ये आपके साथ में शेयर करेंगे, जिसे स्पिल किया है बॉलीवुड के ही रिपोर्टर ज्योति वेंकटेश ने।

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer, just $249. 9kg heat pump dryer, just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer, $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
7: Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening to you. With the latest at 10, I'm Jeff Ryan. Electricity grid operator Transpower has advised power companies of a potential shortfall of energy at peak times as cold weather continues over the next couple of days. A man's due in court tomorrow after an 8-minute violent spree in the Auckland suburb of Epsom this morning left 3 students injured, one critically, just after a female jogger had been attacked. And Justice Minister Paul Goldsmith has ordered a rapid review into the ministry after a staff member, Russell Harrison, a former lotto presenter, was suspended from his job at the Ministry of Justice on full pay for 5 years while facing criminal charges for money laundering. In sport, the AB squad to play the Stormers will be announced at 3 o'clock tomorrow morning. MPC rugby this weekend, and Wellington open side Lucy Duplessis-Kirrifi will start at second five against Auckland, while Canterbury first five Richie Mwanga will start in Saturday's Ranfurly Shield Challenge against Otago. Rugby with shift 4. And Warriors star front rower Jackson Ford has re-signed with the club until the end of 2029. The Warriors hosting the Panthers on Friday night.
1: Sports News.
7: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Put your head to Gandhi.
7: Night Cafe. You're listening to Avineet.
10: हम पर मैं हूँ अभी कीपिंग यू कंपनी और ये है नाइट कैफे. और इस आवा पर इस आवा की शुरुआत करते हैं कंटिन्यूइंग द मिड वीक मसाला, जबकि ग्रेवी गॉसिप्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड से. और अभी हाल ही में एक सीनियर जर्नलिस्ट जो अपने समय पर काफ़ी सोट आफ्टर थे, और ज्योति वेंकटेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे रामगोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने जाकर शादी कर ली थी एक मंदिर में. लेकिन इसके अलावा क्या आपको ये भी पता है, उन्होंने एक और खुलासा किया कि मिथुन चक्रवर्ती और साथ में श्रीदेवी एक समय दे वे डेटिंग, और इसकी बात किसी को कानो कान खबर नहीं चली थी, जबकि ऐसा भी कहा गया था कि ऊटी जाकर ये दोनों साथ में रहने लगे थे. लेकिन फिर हुआ कुछ कि 3 महीने बाद श्रीदेवी वापस आ गई, जबकि उनकी माँ, श्रीदेवी की माँ, काफ़ी इनको बता रही थी कि ये राइट पाथ नहीं है अभी आपके लिए और आपको अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने एक्टिंग करियर में. तो ये सभी कुछ बातें ज्योति वेंकटेश ने बताया है और सीधे अपने इंटरव्यू में और एक खुलासा किया है.

हम पर नाइट कैफे लिए मैं हूं अभी आपके साथ में, और आपको बता दूं कि अगर जो आपको तलाश है शांति और सुकून की, तो आपके लिए खास ये मैसेज है। जबकि चिन्मय मिशन आपको इनवाइट कर रहा है टू भागवत गीता डिकोडेड अ मास्टर क्लास, जिसे कंडक्ट करेंगे श्री ईशान चैतन्य जी, और आपके साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी कुछ रहेगा फ्राइडे 7 अगस्त को, इसी शुक्रवार को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। और आपको सिर्फ जाना होगा न्यूलिन कम्युनिटी सेंटर, मेन हॉल 45 टोटारा एवेन्यू न्यूलिन। और यहाँ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट कीजिए chinmaya.org.nz।

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
3: Night Cafe.
5: नाइट कैफे लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में और न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल. यहां पर आपको इनवाइट किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर NZCAE के प्रेसिडेंट पंकज को 0210908 5067 पर आप कॉल कर सकते हैं.
6: You know that thing must be 100 years old.

जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातें करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये मैसेज एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in से।
4: Spotlight, it's the final day to save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Yarn Party, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale must end tonight. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
6: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Electricity grid operator Transpower has advised power companies of a potential shortfall of energy at peak times as cold weather continues over the next couple of days. A man's due in court tomorrow after an eight-minute violent spree in the Auckland suburb of Epsom this morning left three students injured, one critically, just after a female jogger had been attacked. And Justice Minister Paul Goldsmith has ordered a rapid review into the ministry after a staff member, Russell Harrison, a former Lotto presenter, was suspended from his job at the Ministry of Justice on full pay for 5 years while facing criminal charges for money laundering. In sport, the AB squad to play the Stormers will be announced at 3 o'clock tomorrow morning. MPC rugby this weekend, and Wellington open side Lucy Duplessis-Kirafi will start at second five against Auckland, while Canterbury first five Richie Mwanga will start in Saturday's Ramfurly Shield challenge against Otago. Rugby with shift four. And Warriors star front rower Jackson Ford has re-signed with the club until the end of 2029. The Warriors hosting the Panthers on Friday night.
6: Sports News, brought to you by

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: देखते देखते हम पर फाइनल हवा में पहुंच ही गए हैं नाइट कैफे के शो में, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ होने को है और इस हवा पर भी मज़ेदार बातें आपके साथ में रहेंगी और लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स जो आपको कहीं ना कहीं चटपटे और साथ में मेस बॉलीवुड फ्लेवर आपको देती रहेगी, ये सभी कुछ हमारे साथ में। बस कीप हमिंग 104.2 FM पर, साथ में रोवा ऐप पर।

0: जो कि ज़रदे शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और बताने जा रहा हूं आपको भजन जेम्स के बारे में. एक ऐसा नया अंदाज जहां पर आप सुन सकेंगे भजन्स और उनके फ्यूजन फॉर्म में उनको सुन सकेंगे विद अ लाइव बैंड, क्योंकि साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं रवितेश देव को, जो अपने बैंड के साथ में आपके लिए फ्यूजन भजन्स गाएंगे, कीर्तन्स गाएंगे और साथ में डिवोशनल म्यूजिक को प्रेजेंट करेंगे. एक पूरा का पूरा एक ऐसा इवनिंग जहां पर आप भक्ति रस म्यूजिक सुन सकेंगे और ये सभी कुछ एक लाइव वाइब्रेंट कॉन्सर्ट सेटिंग में. दैट इज इनक्रेडिबल. और यहां पर आप जा सकते हैं 32 ग्लेस्के एवेन्यू, जो कि पपटोए ओकलैंड में है, वैदिक सेंटर, सैटरडे 22 अगस्त को. टिकट से सिर्फ $30 और चिल्ड्रन अंडर 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है. स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, सेल करेंगे प्रेमिसेस पर. टिकट्स अवेलेबल है eventbrite.com, साथ में जेज फ्रेश पपटोए, वैली फ्रेश पपटोए, शिव प्रसाद केल्सन से और eventbrite.co.nz से आप अपने टिकट्स अभी ले सकते हैं. और जितने भी प्रोसीड्स रहेंगे इस इवेंट से ये जाएंगी सीधे In aid of a gift of life, Fiji.

नाइट कैफे में मैं हूं अभी और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा 12 तक। आपको बता दें, करण औजला का जो पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लाइव इन ओकलैंड में होने को जा रहा है, ये स्पा करीना में रहेगा 25 अगस्त को, जहां पर इकी भी इनको ज्वाइन करेंगे। तो आपके पास में मौका है कि आप डबल पासेस इस इवेंट के लिए जीत सकें, जबकि हम के फेसबुक पेज पर यहाँ पर आपको सिर्फ जाकर जो करण औजला का पोस्ट है वहाँ पर आपको उस पोस्ट को लाइक करना है, करण औजला के लिए एक मैसेज लिखना है प्यारा सा, और फिर उसके बाद में उनको टैग करना है, और इस कमेंट सेक्शन में आप इतना करके अपने आप को एक ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, जहां पर आप डबल पास जीत सकेंगे टू वॉच हिम लाइव ऑन 25th of August एट द स्पा करीना इन ओकलैंड। और इन्फॉर्मेशन के लिए हम .rova.nz जाइए या फिर livenation.co.nz विजिट करें।

हम पर मैं हूँ अवी विद नाइट कैफे और कम्युनिटी न्यूज में मेघ उत्सव आपको रिमाइंड कर देते हैं, जहां पर इंडियाज मॉनसून फेस्टिवल ऑकलैंड में सेलिब्रेट होगी ऑन द 8th ऑफ अगस्त एट माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल। यहां पर 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मॉनसून फेस्टिवल ये एक मौका है आपके पास में जाने का और एक्सप्लोर करने का, साथ में बच्चों के लिए भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ है और ऑल ऑफ इट इज़ फॉर फ्री एंट्री, यानी कि एंट्री कुछ नहीं लगेगी, सिर्फ आपको पहुंचना है। और मेघ उत्सव जो रहेगा 8th of August को, इसी शनिवार को आपको जाकर यहां पर एक्सपीरियंस करना है एंड हैव अ गुड टाइम अपने फैमिली के साथ में और बच्चों के साथ में।

0: on Hum.
1: On vacation.
2: A secret destination. Two lucky people. One unforgettable adventure.
1: On vacation.
3: Take a trip.
4: Get away.
2: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
5: I'ma get away.
2: Listen on 104.2 FM and Rover.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
9: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 PM, Vedic Centre, Papatoi. Tickets sir, $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi, or Shu Prasad.

0: Coffee on Hum.
1: कुछ 15 मिनट तक और हमारा और आपका साथ रहेगा, और ऐसे में आपको बता दें अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट के बारे में, जहां पर ब्रेकिंग बैरियर्स को लेकर सैंडी और रुजबे ने बातें की है शनील लाल के साथ में, जिन्होंने LGBTQ को लेकर, उनके राइट्स को लेकर काफ़ी कुछ बातें की हैं। और यहां पर अगर जो आप चाहते हैं तो आपको जो माइंडसेट है ना, कॉमन मैन का माइंडसेट, ये आप बदल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता है कि कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ जरिया इन्होंने बताया है और डिस्कस किया है पॉडकास्ट में। आप सिर्फ अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट को चेकआउट करें, और इसको करने के लिए ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें, आपको पूरा का पूरा ऑडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप इस पॉडकास्ट को सुन सकेंगे। इसके साथ में ब्रेकफास्ट कैचअप जो है, जो विजय और पूजा अपने ब्रेकफास्ट शो में लेकर आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जहां पर ये डिस्कशन करते हैं, और ये भी आप कैचअप कर सकते हैं, सिर्फ BF लिखकर 5599 पर भेजें।

0: अब तो हमारे यहाँ से जाने का वक्त हुआ, आपने 8 बजे से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक बार फिर आपके साथ में हो जाएंगे, फ्रॉम 8 PM लेकर आएंगे नाइट कैफे वंस अगेन, इसका भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इन द मीन टाइम आप अपना खुद का ख्याल रखें, कीप वॉर्म आउट देयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह से हम का साथ देते रहें। डू टेक केयर, एक बार फिर मुलाकात होगी, बाय।
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए,
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी,
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी,
1: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फिजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424। अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
4: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Merikau and Poke Koge, celebrating 36 years of great sleep. Night Fly.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
3: Join the Tribe!
2: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
3: join the Tribe!
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night flight.

0: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
1: Oh my God, this is original.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424। When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन डॉट को डॉट इन. Zed.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: क्या? कौन है? अरे
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Building.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
3: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
1: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी।

हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स। Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and...
8: Join the Tribe!
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, available at all leading stores.
10: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A freezing morning for most places, with widespread frost and hard freeze across both islands. Some places have plummeted to below minus 4, like Queenstown and Rotorua. Even Auckland hasn't escaped the cold. Western suburbs verged on minus 2 overnight. A 49-year-old man will appear in court today on charges relating to a violent rampage in Auckland's Epsom. 3 students were hospitalised, a woman was assaulted and a dog killed during the ordeal yesterday. Local councillor Christine Fletcher says it's devastating.
12: It's an area where people would assume that they are going about their daily walks. Children are going to schools. It's just unthinkable.
11: An economist believes the recent rise in unemployment figures shows how tight household

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम कैसा रहेगा, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं. टॉकिंग अबाउट द वेदर टुडे, भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है सुबह सुबह, तो आप भी तैयार रहिएगा इसके लिए, मतलब इस ठंडी के मौसम में इसको टैकल करने के लिए. आज राइट नाउ टेम्परेचर तो 3.5 डिग्रीज है, ओवरनाइट 1 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, हाई ऑफ 11 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. जबकि आज के मौसम के बारे में कहा गया है कि इट्स गोइंग टू बी अ फाइन डे विद एरियाज ऑफ मॉर्निंग फ्रॉस्ट्स जो हम एक्सपीरियंस करेंगे, जबकि बाद में चलकर आज वैसे रात के समय भी ऐसा ही कुछ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं. सनराइज होगा आज का अगले घंटे, विच इज अराउंड 7:14 AM, और आज का सनसेट होने को है एट अराउंड 5:41 PM.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
1: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और जबकि शुरुआत हो रही है आज के हमारे सफर की, आज थर्सडे 6 अगस्त को, तो आप सभी को आज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आप तक पहुँचा रहे हैं. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज के सफर को तय करने के लिए रेडी हैं, उम्मीद है कि रेडी हैं. बाय द वे, ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ करते हैं हम हर सुबह ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत. कैचअप बेसिकली खबरों के साथ, क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, विल हैव अ लुक एट दैट. एंड ऑफ कोर्स आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं और भी बहुत सी जरूरी चीजें, इतनी सारी चीजें यार दुनिया भर में होती रहती है, सो वी डेफिनेटली हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एज वेल. एंड आई होप कि इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला भी लेकर आएंगे, ताकि आपके लिए आज का ये सफर एंटरटेनिंग हो और इसे आप हमारे साथ एंजॉय करते हुए चले. और बाय द वे, आपको ये भी याद दिला दें, आपके पसंदीदा ट्रैक्स जो है ये भी हम शामिल करते रहेंगे. आज कुछ ऐसे नए रिलीजेस आपको हम सुनाएंगे जो बस कल परसों ही रिलीज हुए हैं, एंड दीज आर द सॉन्ग्स दैट यू गोना लिसन टू ऑन हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो इसके लिए भी रेडी रहना है आपको. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं. आप सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच.

0: सनी साइड अप।
1: तो चलिए आज की सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम जबकि लेकर आ रहे हैं, ये कहानी है ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड से। और आज काफ़ी यंग बच्चों के बारे में कहानी जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो स्टोरी है इट हैज़ एक्चुअली यू नो हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि काइंडनेस स्टिल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। वैसे ये जो कहानी है इसे एक रॉयल जेस्चर के नाम से भी माना जा रहा है, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी हैज़ बीन ऑन सोशल मीडिया, जिसके बाद चलकर ये लोगों तक जो है ये पहुंची है। तो बताया जाता है एवरी ईयर सिंस इनके डैड जो है ये पास्ट हुए, जिनका नाम था जेम्स एंड ही पास्ड अवे इन मई 2014, उनका 7 साल का बेटा जेस जो है स्कॉटलैंड में ये अपनी 10 साल की बहन नीव के साथ हर साल अपने पिता का बर्थडे जो है ये मार्क करते बाय राइटिंग हिम अ लेटर। 2018 में चेस की जो मम है टेरी, इन्होंने उनकी चिट्ठी जो है ये पोस्ट की, एंड दैट ईयर्स लेटर जो है इट वाज बेसिकली वाया मेल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक, इन्होंने ये चिट्ठी जो है ये पोस्ट कर दी। बट दिस टाइम एक रिप्लाई जो है ये आया इनके पास विद एन ऑफिशियल रॉयल मेल लेटर हेड फ्रॉम उनके असिस्टेंट डिलीवरी ऑफिस मैनेजर शॉन मिलिगन की ओर से। और इस चिट्ठी में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि आप अपनी चिट्ठी जो है भेजते रहें, एनी लेटर्स जो आप अपने पिता के लिए लिखेंगे जो हेवन में है वो एब्सोल्युटली अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि ये चिट्ठी उनके जन्मदिन के दिन उन तक ज़रूर पहुँचाई जाए। जब उनको ये चिट्ठी जो है वापस मेरी 7 साल का जेस जो है ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द रेस्पॉन्स ही गॉट, एंड ही केप्ट सेइंग माई डैड रियली गॉट माई लेटर मम, जिसके बाद चलकर टेरी ने ये पूरी कहानी जो है ये इंटरनेट पर शेयर की। इमेजिन एक यू नो पोस्ट कंपनी, पोस्ट ऑफिस बेसिकली जो चिट्ठियों को पार्सल्स को जो है ये डिलीवर करते हैं, और उनके पास जब चिट्ठी आती है अबाउट अ 7-year-old बॉय मार्किंग हिज डैड्स बर्थडे एंड राइटिंग अ लेटर टू हिज लेट डैड, और वो चिट्ठी जो है वो चाहते तो ऐसे ही डस्टबिन में भी एंड अप कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे एक रिप्लाई दिया और एक इतना प्यारा सा रिप्लाई दिया कि वो 7 साल का बच्चा जो है इतना खुश हो गया कि उन्होंने अपनी खुशी जो है ये बयां की बाय बीइंग सो हैप्पी कि उनकी चिट्ठियां जो उन्होंने अपने लेट फादर के लिए लिखी थी उनके जन्मदिन के दिन वो उनको ज़रूर मिली, और वो उस चीज़ को लेकर इतना ओवरवेल्म्ड इतना खुश हुए। सो इज़न दैट अमेजिंग। चलिए आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए लेकर आ रहे थे, उम्मीद है कि आपने इन्जॉय की। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद आज की ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे।

0: A secret destination. Two lucky people. One unforgettable adventure.
1: On vacation.
2: Take a trip.
3: Get away.
0: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
4: I'ma get away.
0: Listen on 104.2 FM and Rover.
5: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
6: This Thursday.
7: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetners, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
6: See online for T's and C's.
8: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, or yummy ambrosia apples, $4.79 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin binning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
12: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
13: अब हमारा क्या होगा?
14: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
12: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
15: Bollywood.
16: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: गुड मॉर्निंग, फिलहाल 17 मिनट हो रहे हैं समय हमारी स्टूडियोज में 6:00 और थर्सडे 6 अगस्त की सुबह आप सभी के नाम हम कर रहे हैं। इधर चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस हमारे पास आए हैं, सो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। सबसे पहले तो आज बॉबी मान जी आपका मैसेज जो है ये हमारे पास आया और आपने कहा है गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, जय साई राम, हैप्पी थर्सडे, साईज ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपको भी जय साई राम और आज के इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम जरूर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मिस्टर माटा माटा, आज आपका भी मैसेज आया है सुबह सुबह, आपने कहा है राम राम, जय साई राम, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे मिस्टर माटा माटा। आपने तो 4 बजे से पहले ही अपना मैसेज जो है ये सेंड कर दिया, सो थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए। आपने भी अगर अपने डेडिकेशंस जो है ये भेजने हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजने हैं, अगर आज 6 अगस्त को समवन यू नो, समवन रियली स्पेशल, समवन रियली क्लोज टू योर हार्ट ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उनके लिए अपना बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज जो है ये अगर सेंड करना चाहते हैं तो ये भी आप जरूर कर सकते हैं। बट मेक श्योर यू डू इट बिफोर 7 AM ताकि आपके मैसेजेस हमारे पास जल्द से पहुंच जाए, टाइम पर पहुंच जाए और हम आपके लिए लेकर आ पाए आज का हमारा बर्थडे ग्रीटिंग्स और आपको विश जो है ये हम कर सके। बाय द वे दूसरी ओर आपको ये भी हम याद दिला दें कि आज बहुत से पेट्रोल स्टेशंस पर आपको मिलेगा डिस्काउंटेड फ्यूल प्राइसेस। टुडे इज अ गुड डे टू फिल अप, तो अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल जो है ये भरवानी है आज के इस दिन का इस्तेमाल कीजिए और फिलअप जो है ये कीजिए 14 सेंट्स ऑफ पर लीटर। बहुत से पेट्रोल स्टेशंस आज आपको ऑफर कर रहे हैं और टुडे जैसे कि मैंने कहा इज अ वेरी गुड डे टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लोटो लास्ट नाइट पावरबॉल फर्स्ट डिवीजन वाज नॉट वॉन, इसका मतलब जो टोटल जैकपॉट है ये रोल ओवर हो चुका है टू सैटरडे नाइट, जहां पर 6 मिलियन से होकर यानी कि 6 मिलियन से बढ़कर अब ये 8 मिलियन हो चुका है। या जैकपॉट जो है ये किसी ने नहीं जीता, लेकिन लोटो फर्स्ट डिवीजन जो है ये भी किसी ने नहीं जीता, एंड 1 मिलियन जो है ये अब सैटरडे के लिए हो चुका है। स्ट्राइक टू स्ट्राइक प्लेयर्स जो है दे वॉन $100,000 ईच, एंड विद स्ट्राइक फोर इसके साथ साथ 6 लोटो प्लेयर्स जो है इन्होंने $35,140 ईच जीते हैं लोटो सेकेंड डिवीजन में। जो टोटल प्लेयर्स की विनिंग्स जो है ये रही है, इट हैज गोन अप टू $41,777। तो 4 लोगों ने या 6 लोगों ने $35,140 ईच जीते थे, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड डिवीजन जो है सिर्फ 2 लोगों ने जीते जिनका टोटल विनिंग $41,777 जो है की हुआ। इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग विन टू सम ऑफ द पीपल, सो कांग्रेचुलेशंस। और इधर आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर बाद आज के ग्लोबल हेडलाइंस तो लेकर हम आएंगे ही, पर उससे पहले आवारा पंटू का ये गाना आज का हमारा मोस्ट वांटेड ट्रैक आपके नाम।
15: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड।
1: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ। मैं लाऊं अपना ए गेम।
15: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: हेडलाइंस।
1: आज सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में सबसे पहले एक डेडली रशियन स्ट्राइक की वजह से यूक्रेन के अलग अलग सिटीज में कहा गया है हमले हुए, जिसके बाद चलकर 20 लोगों के मारे जाने की रिपोर्टें सामने आ रही हैं एंड डजन्स आर इंजर्ड आफ्टर रशिया ने लॉन्च किया मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अक्रॉस यूक्रेन ओवरनाइट। यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है 1.4 बिलियन यूरोस इन न्यू फंडिंग, जिससे यूक्रेन कैन यूज फ्रोजन रशियन एसेट्स टू सपोर्ट द कंट्रीज डिफेंस एंड रिकवरी। पाकिस्तान से आ रही खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किए हैं न्यू रूल्स रिक्वायरिंग फॉरेन जर्नलिस्ट्स टू गेट गवर्नमेंट अप्रूवल, इससे पहले वो कोई भी रिपोर्टिंग आउटसाइड मेजर सिटीज कर सके। गवर्नमेंट का कहना है कि ये मूव इज फॉर सिक्योरिटी, लेकिन मीडिया ग्रुप्स जो है ये वॉर्न कर रहे हैं इट कुड लिमिट प्रेस फ्रीडम। और जर्मन पुलिस ने फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स दी है जहां पर दे आर इन्वेस्टिगेटिंग आफ्टर अ ड्रोन कैरिंग एन एक्सप्लोसिव डिवाइस ये पाया गया था नियर यूक्रेनियन कार्गो प्लेन्स और एट देयर लोकल एयरपोर्ट। सिक्योरिटी हैज बीन इंक्रीज्ड, जबकि अथॉरिटीज फिलहाल इस मामले की जांच कर रहे हैं। भारत से आ रही खबरों में कहा गया है स्टूडेंट लीडर देवेंद्रनाथ महतो जो है इन्होंने कंटिन्यू किया है अपना हंगर स्ट्राइक ओवर अलेज्ड इररेगुलरिटीज गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर। उनका कहना है कि वो अग्री कर रहे हैं टू ड्रिंक वाटर, लेकिन वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक कि सरकार उनके बातों को सुने ना और रिस्पोंड ना करे स्टूडेंट्स के इन सवालों के लिए। फिजी से आ रही खबरों में कहा गया है फिजी पुलिस आर येट टू अनाउंस एनी एक्शन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बेस्ड बिजनेसमैन सैम अमीन, जिनके बारे में कहा गया है कि इनका नाम आया था सामने इन कोर्ट एज द अलेज्ड मास्टरमाइंड बिहाइंड फिजी का 2 बिलियन मेथैम्फेटामिन शिपमेंट। और कोर्ट में जो एक्शन है टू सीज 2 दनराव प्रॉपर्टीज लिंक्ड टू द केस अभी भी फिलहाल जारी है। खेलकूद के खबरों में कहा गया है रियल मैड्रिड ने एक इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है ब्राजीलियन स्टार विनीसियस जूनियर को एज दे ट्राई टू कीप हिम एट द क्लब विद जस्ट 1 ईयर लेफ्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट डील के लिए। आर्सेनल जो है आर एक्सपेक्टेड कि वो भी अपना अपने प्लान्स जो है या अपना डील जो है इनको ऑफर करे, और इफ़ ही डिसाइड नॉट टू साइन नी कॉन्ट्रैक्ट तो आर्सेनल उनको डेफिनेटली अपनी ओर से अपने भी ऑफर्स देने को तैयार है। तो ये रहे आज सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
10: Burgers are better at BK.
11: A really cool start to another fine and clear day, a high of 13 degrees. Into the city, we're starting to slow a little bit. Southern, 24 minutes, Manukau to town, 44 in from Drury, slow Papakura through to Papatoetoe. Fine on the southwestern, but a little traffic close to the airport terminal. Northwestern, 22 minutes in from Massey, slow at Te Aratu and close to town. Northern, 18 from Constellation, slow Greville to Milford.
10: From flame grilled whoppers to crispy chicken, the burgers are better at Burger King.
12: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
13: क्यों, क्या हुआ?
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
14: Jen didn't think she needed a DVS system.
15: Oh, I've got insulation in that.
14: But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains.
15: Ah, yeah.
14: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mold and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
16: The heart of a healthy home, DVS.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
13: The Beds R Us birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds R Us, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
16: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
17: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azra le le tu
2: masa. Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: 26 minutes away from 7 for now on The Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए breakfast ketchup हम लेकर आ रहे हैं. Thursday, 6th of August की ये सुबह. और काफी सारी चीजों के साथ जबकि हम ketchup करते रहते हैं, कोशिश तो यही रहती है हमारी. तो Bollywood में भी इतनी सारी चीजें हो जाती है overnight कि अगली सुबह जब हम आते हैं कुछ ना कुछ तो होता ही है भाई आपके साथ शेयर करने के लिए. सबसे पहले आपको बता दें कि रामायण जो है इसका रिलीज डेट अब कंफर्म हो चुका है. अभी कुछ दिनों पहले ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो कुछ लोगों ने कॉस्ट्यूम को लेकर कुछ सवाल जो है ये उठाए. और कई लोगों का सवाल ये भी था कि जो ट्रेलर आया है इसमें हनुमान जी जो है ये क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो इस पर भी काफ़ी सवाल उठे हैं. पर अभी तक तो कोई जवाब जो है ये नहीं आया है इस मामले में. हाउएवर अभी बताया जा रहा है बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार कि द मच अवेटेड रामायण ट्रेलर जबकि फाइनली अनवेल हुआ, उसके बाद अब एक और एक चीज जो है इसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे, विच वॉज द रिलीज डेट. हाँ, ये बात जरूर है कि ये कहा गया था कि इस साल दिवाली के दिन या दिवाली के अराउंड ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन एक्चुअल डेट जो है ये नहीं दिया गया था. सो इट डेफिनेटली लेड द पीपल टू वंडर कि फिल्म जो है किस दिन रिलीज होगी, ऑन संडे 8th of November जो कि है दिवाली का दिन, या फिर किसी और दिन, या फिर फ्राइडे को जो कि दिवाली से बेसिकली दो दिन पहले होगा. तो मीन वाइल देर वर स्पेकुलेशंस कि ये फिल्म जो है इट विल ओमे रिलीज ऑन 30th of October प्री दिवाली बेसिकली इस दौरान. तो वहीं पर एक एक्सक्लूसिव अपडेट जो है ये रिपोर्ट की गई है बॉलीवुड हंगामा पर, और बताया गया है कि रामायण जो है ये रिलीज होगी फ्राइडे 6th of November को. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, काफ़ी यू नो इंतज़ार कर रहे हैं लोग इस फिल्म के लिए, इसे देखने के लिए. और वंस इट रिलीजेस तो अपनी अपनी राय तो सभी शेयर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ तो देखते हैं कि इस फिल्म की रिलीज़ को लेकर क्या अभी ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन आता है या नहीं कि ये जो फिल्म है 6th of November को रिलीज होगी या नहीं. फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारा बॉलीवुड क्विज चैलेंज. बॉलीवुड क्विज में आज आपके लिए बेसिकली हम बताने वाले हैं कुछ एक्टर्स के नाम. And now I won't be revealing each and every actor in this particular movie. लेकिन मैं एक एक कर कुछ एक्ट्रेस का नाम जो है आपको बताती जाऊंगी. आई हैव नोटेड डाउन अ फिल्म, बॉलीवुड फिल्म का नाम मेरे पास है और आपको अनुमान लगाना है कि आज जिस फिल्म का नाम मैंने नोट डाउन किया है वो कौन सी फिल्म है. क्लू के तौर पर आई कैन ओनली रिवील जो लीडिंग एक्टर्स इस फिल्म में थे, या फिर यू नो बेसिकली द लिस्ट ऑफ एक्टर्स जो है ये इस फिल्म में थे उनका नाम मैं आपको बता सकती हूँ. दैट्स द ओनली क्लू आई कैन गिव यू. पहले मैं एक क्लू दूंगी एंड आई विल वेट फॉर समवन टू गिव मी अ कॉल एंड सी अगर वो अनुमान लगा सकते हैं कौन सी फिल्म ये है. अगर जवाब गलत हुआ तो मैं दूसरा नाम रिवील करूंगी एंड विल वेट फॉर अनदर कॉल. अगर जवाब गलत हुआ तो तीसरा नाम रिवील करूंगी. एंड इस तीन नामों से अगर आपने अनुमान लगा लिया तो उसके बाद अपने मैसेजेस आपको करने होंगे. ओके, लेट्स सी इतनी सुबह क्या कोई हमें कॉल भी करेगा या नहीं वो भी अलग बात है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माय लक. तो आज की हमारी जो मूवी जो मेरे पास है उसमें सबसे पहला नाम आज का ईशा ड्योल. ईशा ड्योल इस फिल्म में ईशा ड्योल है. अब आप हमें बताइए आपको क्या लगता है ये कौन सी फिल्म हो सकती है. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ईशा ड्योल ने तो इतनी सारी फिल्में की हैं, आई मीन उतनी भी नहीं की है बट की है, तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी फिल्म का नाम हो जिसमें ईशा ड्योल जो है ये थी, इन्होंने कोई भी कैरेक्टर प्ले किया, आप उस फिल्म का नाम हमें बता सकते हैं 0800 004866 पर कॉल करते हुए। और अगर कॉल नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके पास एक नाम है तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर दीजिए। अगर पहली ही चांस में किसी ने गेस कर लिया आज की मूवी करेक्टली देन भाई हैट्स ऑफ टू यू, लेकिन अगर नहीं गेस कर पाए तो उसके बाद मैं आपको दूसरा नाम रिवील करूंगी कि ये दूसरा नाम कौन है या दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस इस फिल्म में कौन है जिनके साथ ईशा ड्योल ने इस फिल्म में काम किया। ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग, आपके कॉल का इंतजार है 0800 004866 पर आप कॉल कर सकते हैं या 5599 पर मैसेज कर हमें बता सकते हैं आज की हमारी बॉलीवुड फिल्म कौन सी है जिसमें दिखी थी ईशा ड्योल। ओह क्या बात है, एक कॉल आ भी गया। गुड मॉर्निंग।
18: मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो?
18: मैं बढ़िया हूँ।
1: तो आप हमें बताइए जरा कि आपके पास कौन सी फिल्म का नाम है?
18: ना तुम जानो ना हम।
1: ना तुम जानो ना हम, क्या बात है, बड़ी अच्छी फिल्म थी बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द मूवी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक और एक नाम देने को तैयार हूँ और आपको एक और एक मौका देने को तैयार हूँ, ठीक है?
18: ओके।
1: दूसरा नाम इज फरदीन खान। एनी गेसेस? चलिए आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सोचिए, जवाब आ जाए मेरे को वापस आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल नहीं कर पाए इफ यू गेट बिजी तो यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट 5599 पर, ठीक है? थैंक यू। तो आज के हमारे पहले कॉलर, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आपने शुरुआत की इस यू नो कॉम्पिटिशन के लिए। ईशा ड्योल वॉज द फर्स्ट नेम जो मैंने दिया था और उसके बाद कुछ लोगों ने धूम लिखकर हमारे पास भेजा, मतलब आपने मैसेजेस में धूम भेजे और हमने दूसरा हमारा जो दूसरा नाम ये भी हमारे कॉलर को दिया विच वॉज फरदीन खान। सो यू गॉट ईशा ड्योल एंड फरदीन खान। अपना आंसर हमारे पास आप भेजे आफ्टर दिस सॉन्ग, आई विल सी क्या आज की हमारी बॉलीवुड फिल्म कोई गेस कर पाता है या नहीं। अगर कोई नहीं गेस कर पाया तो फाइनल नेम मैं आपको दूंगी इस गाने के बाद, जिसके बाद चलकर आप अनुमान लगा सकते हैं। दो देयर कुड बी मेनी मोर एक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर फिल्म, लेकिन मैं आपको एक फाइनल नाम दूंगी टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। ठीक है, तो 5599 याद रहे, इस पर आप हमारे पास अपना जवाब भेज सकते हैं।
2: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: आज का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक जावेद अली और साथ में शक्ति श्री गोपालन की आवाज़ में हम आपके लिए लेकर आ रहे थे। जब तक है जान 2012 में ये फिल्म आई और इस फिल्म को इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा जी ने। दिस वॉज द लास्ट मूवी दैट ही हैड डायरेक्टेड विद शाहरुख खान, कटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा प्लेइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन दिस पर्टिकुलर मूवी। अय्यर रहमान का म्यूजिक था और उम्मीद है कि आज का जो हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है ये आपने इन्जॉय किया। फिलहाल चलिए हमने आपको आज बताया कि यू हैव टू गेस कि हमारे पास जो फिल्म का नाम हमने लिख कर रखा हुआ है वो कौन सी फिल्म हो सकती है। और ये जो फिल्म है आपको बस अनुमान लगाना है अपने मैसेजेस हमारे पास भेजते हुए 5599 पर, और आपको अनुमान सिर्फ जो एक्टर्स हैं उनके नाम पर अनुमान लगाना है। पहला नाम जो मैंने दिया था वॉज ईशा ड्योल, और उसके बाद हमारे जो कॉलर है जिन्होंने थैंक यू सो मच इस पूरे कॉम्पिटिशन की शुरुआत आपने की बाई गिविंग अस अ कॉल एंड गिविंग अ नेम कि ये आपका जवाब है, विच वॉज ना तुम जानो ना हम, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत हुआ। फिर मैंने आपको एक और एक नाम दिया, मतलब कॉलर को एक और एक नाम दिया और सबको भी एक नाम दिया, विच वॉज फरदीन खान। धूम भी किसी ने लिखकर भेजा था तो मैंने कहा वो भी गलत है। और स्नेहा ने फिर अपना आंसर जो है हमारे पास भेजा एज जस्ट मैरिड। मैंने फिल्म नहीं देखी पर आई बिलीव कि फरदीन खान और ईशा ड्योल इस फिल्म में है, आई थिंक आई सीन सम पोस्टर्स और समथिंग। उसके बाद चलकर फीजा ने भी अपना जवाब जस्ट मैरिड लिखकर भेजा, किसी और ने जस्ट मैरिड भेजा विच वॉज 8128। सनी ने लिखा डार्लिंग और अश्मिता ने लिखा जस्ट मैरिड। उसके साथ साथ हमारे पास शेफ का जवाब आया इज जस्ट मैरिड, एंड वी ऑल्सो हैड अ डिफरेंट आंसर। रे ने भेजा जस्ट मैरिड, शादी नंबर वन, प्यारे मोहन, डार्लिंग, क्या बात है रे, मतलब इतने सारे आंसर्स। और प्रीतेश के दो आंसर्स है जस्ट मैरिड एंड प्यारे मोहन, और प्यारे मोहन मेरे ख्याल से किसी और ने भी टेक्स्ट किया था 7974 आपने, आपका भी यही जवाब आया था। तो मैं आपको बता दूं जस्ट मैरिड, प्यारे मोहन, डार्लिंग और धूम, ये सारे के सारे गलत आंसर्स हैं। दैट्स नॉट द मूवी दैट वी हैव फॉर यू टुडे। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल नेम जिससे आपके लिए शायद आज की मूवी गेस करना एकदम आसान हो जाए। सो ईशा देओल, फरदीन खान, सलमान खान, There you go. ईशा ड्योल, फरदीन खान, सलमान खान। क्या लगता है आज की मूवी कौन सी मूवी है जो हमने आपके लिए रखी हुई है, लिखी हुई है, एंड कैन यू गेस द करेक्ट नेम ऑफ द मूवी टुडे? अगर हाँ तो 5599 पर आपको अपना आंसर भेजना है, BF लिखना है सबसे पहले, फिर अपना आंसर, अपना नाम। थ्रोबैक के अराउंड रिवील करेंगे आज की हमारी बॉलीवुड मूवी।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Chup ho jao papi ho, chup ho jao.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Curtain Studios birthday sale. Up to 50% off selected ready-mades.
3: A beautiful day, full of sunshine, but gosh, it's a cold start. Yeah, chilly this morning into the city. Not bad on motorways though. Northern 20 minutes in from Constellation Drive, 40 from Silverdale, slowing at Silverdale and Greville to Glenfield. Northwestern 22 minutes, Massey to town, slow at Tiaratu, the Causeway and close to the city. Southern 30 minutes, Manukau to the CBD, slow on and off Papakura to Mount Wellington.
2: Huge savings store-wide. Visit Curtain Studio today.
4: Kisi priyajan ko khona, pari परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
5: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
6: Take your furry friends back to their roots. Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: Breakfast Catch-Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: तो चलिए आज की हमारी बॉलीवुड मूवी का नाम रिवील करने का टाइम हो चुका है। बट बिफोर आई डू दैट, लेट मी टेल यू कि ये जो फिल्म है इससे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग खबरें जो है ये है। व्हाइल द मूवी वाज बीइंग मेड, एक्चुअली में ये कहा गया था कि ये जो फिल्म है वाज नॉट रेडी टू बी रिलीज्ड, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को रिलीज करने वाले थे, द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी एक्चुअली ओड सम मनी टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो इस फिल्म को रिलीज करेंगे। एंड द टिकट बुकिंग डेट्स वर ऑल्सो पुश्ड अहेड। लेकिन सलमान खान हु केम अहेड और उन्होंने सारे के सारे ड्यूज क्लियर किए, जिसके बाद चलकर द फिल्म रिलीज्ड एज पर द स्केड्यूल। और जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उनको इस पर्टिकुलर फिल्म से इतना प्रॉफिट हुआ कि जब ये फिल्म बन रही थी वो कर्जे में थे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उन्होंने अपने सारे कर्जे चुकाए और फिर से उनका जो प्रोडक्शन हाउस है स्टार्टेड बिकमिंग अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्शन हाउस। एंड द प्रोड्यूसर आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नन अदर देन बोनी कपूर। और इस फिल्म के बारे में आज सबसे पहले अनुमान लगाया था सनी ने, जिन्होंने अपना सही जवाब जो है ये भेजा था अलॉन्ग विद बॉबी वान जी। एंड बाद में चलकर रोनल्ड आपका भी आंसर आया। दिवनेश, थैंक यू सो मच, आपने भी सही जवाब भेजा। अविनाश है साथ में, 2037 आपका भी करेक्ट आंसर है। रे, आपने भी ये जवाब हमारे पास भेजा था। शेफ का जवाब जो है ये आया था। नितिका ने अपना आंसर जो है ये भेजा था। नताशा आपका जवाब आया। स्नेहा है, गुंजन है, कृष है, साथ में अविनाश आपने एक और एक मैसेज भेजा, और साथ में उषा जी का आया आंसर। जेरी ने अपना आंसर भेजा। देयर सो मेनी पीपल हु लेटर ऑन सेंट द करेक्ट आंसर, सो थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी बॉलीवुड मूवी नो एंट्री, जिसका ये गाना के और अलीशा की आवाजों में हम पेश कर रहे हैं थ्रोबैक में।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम जो है भाई बहुत ज़्यादा ठंडी वाला वेदर है. 2.8 डिग्रीज टेम्परेचर राइट नाउ. आई जस्ट डोंट नो हाउ यू ऑल माइट बी डीलिंग विद इट. अगर आप फिलहाल यू नो आउटसाइड कहीं पर काम कर रहे हैं और यू नॉट इन अ कंफर्टेबल ऑफिस और इन अ कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पर थोड़ा एटलीस्ट वार्म आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और ओवरनाइट टेम्परेचर 1 डिग्री रहेगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट अगेन टुनाइट. और हाई ऑफ 11 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. फाइन वेदर लेकिन एरियाज मॉर्निंग फ्रॉस्ट जो है आज सुबह और आज रात को भी हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट होगा 5:41 PM पर और सनराइज अभी से करीबन 10 मिनटों में यानी 7:14 AM पर.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo. कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
1: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज का हमारा ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. 4 मिनट हो रहे हैं 7:00 आज है थर्सडे 6th ऑफ अगस्त और आज की ये सुबह जहां पर आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस हम लेकर आ रहे हैं. तो उम्मीद है कि आप भी कान खोल कर हमें सुन रहे होंगे. इस घंटे की शुरुआत हमारा आप एक साथ कर रहे हैं सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच. इस घंटे बाय द वे लेटर ऑन आपको हम बताने वाले हैं कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें. और आज तो मेरा जो चैलेंज मैंने बोला था ना कि कल ऐसी आवाज़ ढूंढ कर लाऊंगी कि देखना ये है कि क्या आप में से कोई इसे पहचान पाता है या नहीं. कोशिश जारी है. आई एम स्टिल नॉट येट डिसाइडेड कि मैं कौन सी आवाज़ जो है आज सेलिब्रिटी अलार्म के लिए लेकर आऊँ. बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड मेक इट एज हार्ड एज पॉसिबल फॉर टुडे. बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी फॉर यू ऑल. तैयार रहेगा सेलिब्रिटी अलार्म के लिए जो आपके लिए रहेगा बस थोड़ी देर बाद. और आज का दिन कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स राशि वाइब्स में ये भी हम आपको बताएंगे.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papio. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: तो चलिए बताते हैं आपको आज का दिन कैसा रहेगा आपके हॉरोस्कोप्स के अनुसार इन योर राशि वाइब्स. टुडे आज मेष शनि एरीज साहब के लिए आज बताया गया है कि अपना जो वैलिडेशन वाला जो सिस्टम है आपका ना, कि आपको सभी से वैलिडेशन चाहिए, हर एक चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए, भाई ये करना आप बंद कर दो. ये आपका आज का पहला कदम होना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू मेक द राइट डिसीजन. और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लिए एक राइट पाथ जो है ये चुन पाएंगे. अपने यू नो गट का, इंस्टिंक्ट्स का भरोसा करें जब भी कोई भी फैसला आज आप ले रहे हैं, ऐसा आपके लिए बताया गया है. वृष शनि टॉरस साहब के लिए कहा गया है एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, जिसके वजह से आपको मेंटली काफ़ी प्रेशर फील होगा कि फाइनेंसेस मैनेज करने हैं. इसीलिए एक्सपेंसेस पर थोड़ा ध्यान आप दीजिए. कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने में रश ना करें, जल्दबाजी ना करें. ये आज का जो दिन है इसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करें प्रोडक्टिविटी के लिए, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए खुद के लिए चांसेस भविष्य को अच्छा करने में आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सके. मिथुन यानी जेमिनी आपके लिए कहा गया है आपके फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल्स जो है ये आपके आज सपोर्ट में खड़े रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे. इनफैक्ट आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी थ्रू कॉन्वर्सेशंस, जिससे कि आप पहचान सके वो सही चीज जो आपको भविष्य में चलकर फायदा दिला सकती है. आज आपकी मेंटल एनर्जी काफी शार्प रहेगी और बहुत क्लियर माइंड के साथ आप सही फैसले आज ले सकेंगे. करके ने कैंसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नौकरी में आज बढ़ेंगी. आज फोरफ्रंट में आकर अपना जो माइंड है ये आपको एकदम बना लेना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए, कैसे आप ये करने वाले हैं. एंड यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, ताकि समय पर आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है ये खत्म कर सके. फोकस्ड रहना है आज आपको, प्रोडक्टिव दिन रहेगा, बस अपना ध्यान भटकने ना दे, ऐसा आपके लिए कहा गया है. सिंह ने लियो एक शिफ्ट जो है प्रस्पेक्टिव में आप जरूर देखेंगे. इट्स कमिंग योर वे, कुड बी अबाउट अ पर्सन जिनके बारे में आपकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी, लेकिन आज वो शिफ्ट आप जरूर नोट करेंगे फॉर एवर रीजंस. आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि आज यू माइट फील ड्रोन टू लर्न समथिंग, यू नो टूवर्ड्स लर्निंग समथिंग न्यू. और ये आपके लिए एक ऐसी चीज़ होगी, ये जो नई चीज़ आप सीखोगे एक ऐसी चीज़ होगी विच विल बी लाइफ चेंजिंग आपके लिए. आज आपके लिए ये भी कहा गया है कि रियलिस्टिक गोल्स जो है इन पर काम करें, ना कि कुछ ऐसे गोल्स जो अभी इन दिस वेरी मोमेंट पूरे नहीं हो सकते. कन्या यानी वर्गो, टेक दिस डे वेरी स्लोली, ये सजेशन आपके लिए दिया गया है. आपने शायद कुछ टेंशन नोटिस किया होगा आपके फाइनेंसिस को लेकर, जॉइंट एसेट्स को लेकर, जॉइंट फाइनेंसिस को लेकर. हो सकता है इट्स विद योर पार्टनर, विद योर हस्बैंड और विद योर वाइफ. तो आपको वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसी वजह से टेक थिंग्स वेरी स्लो, बी पेशेंट किसी भी चीज़ को डील करते समय. आज ये आपके लिए बताया गया है. तुला यानी लिब्रा, पार्टनरशिप्स में आज आपका मेन फोकस रहेगा, चाहे घर हो या ऑफिस. आप ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें जो है ये तलाश लेंगे जिससे कि आपको पार्टनरशिप में बेनिफिट जो है ये मिले. आज आपके लिए कहा गया है कि कोलेबरेटिव एफर्ट्स जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाएंगे इन कंपेरिजन टू वर्किंग अलोन. तो प्रोबेबली दैट्स वाई पार्टनरशिप्स इज समथिंग दैट्स गोना वर्क आउट फॉर यू. स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है कि आज नेचुरल एडवांटेजेस आपको मिलेंगे. दिन ऐसा है यू विल फील लाइक थिंग्स आर हैपनिंग योर वे, थिंग्स आर जस्ट आसानी से स्मूथली हो रहे हैं. कोई भी ऑब्स्टिकल हो आपके रास्ते से खुद ब खुद हट जाएगा, ये आज आप जरूर नोटिस करोगे. और आपके लिए ये भी कहा गया है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है सही एनर्जी के साथ अपने दिन की, अपनी सुबह की शुरुआत जो है ये आप करें. और उसके बाद धनु यानी सेक्रेटेरियस आपके लिए कहा गया है क्रिएटिविटी ही क्रिएटिव आज आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसको सही डायरेक्शन में लेकर जाइए. अपने आइडियाज को सही जगह पर इंप्लीमेंट कीजिए और आप जरूर नोटिस करेंगे अपना एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ. आज पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म जो है काफी इंफेक्शस रहेगा आपका, एंड पीपल वुड लव योर कंपनी, दे लव टू बी अराउंड यू बिकॉज द पॉजिटिविटी जो आज वो आपसे महसूस करेंगे. मकर यानी कैप्रिकॉन आपके लिए कहा गया है कि आज आपका जो घरेलू जीवन है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, घर परिवार पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. प्रायोरिटाइज कीजिए अपने घर को, अपनी फैमिली को, ये आपके लिए कहा गया है. डू नॉट वरी अबाउट डेडलाइंस, क्योंकि आप के जो डेडलाइंस है इसमें कुछ बदलाव आज ज़रूर होंगे. अगर किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन में थे, स्पेशली विद योर वर्किंग लाइफ, कि यार ये मीट करना है, ये डेडलाइन सॉर्ट आउट करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कुछ चेंजेस आप आज ज़रूर नोटिस करेंगे जिसकी वजह से बेटर आउटकम और मोर टाइम जो है ये आपको मिलेगा. कुंभ यानी एक्यूरियस आपके लिए कहा गया है कि शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस जो है आज आपके दिन को काफी एक्टिव रखेंगे। आपकी अबिलिटी दूसरों को समझाने में जो आज आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपका बहुत फायदा होगा। अपने कान खुले रखिए क्योंकि कुछ बहुत अच्छी खबरें जो है ये आपको मिल सकती है, पॉसिबली फ्रॉम योर सिबलिंग्स। मीन यानी पाइसेस, मनी मैटर्स, और इसीलिए आज आपका माइंड भी इसी दिशा में चलेगा। बस माइंड चलाने से कुछ नहीं होता, उन चीजों को आपको एक्टिव करना होगा, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, काम कीजिए उस पर। और फाइनेंसेस भी अपने आज आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, अपने अप्रोच को सही रखें। कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में अगर हासिल करनी हो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, क्योंकि हर एक सिचुएशन को एक ही तरीके से आप अप्रोच नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू वर्क ऑन टुडे। मीन एंड पाइसेस, ऐसा आज आपके लिए बताया गया है। ये थे आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे। इट्स 18 मिनट्स आफ्टर 7, कमिंग अप नेक्स्ट आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: हम ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Māori Mā, every day we make choices, choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role? No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without living off office snacks, Christmas shopping on Boxing Day, buying handbags on the dark web.
8: It's a very stassi.
7: Selling your organs, DIY Botox, ignoring expiry dates. Knitting, pickling, homebrewing, live camming, dine and dashing, or borrowing toilet paper from work.
8: Ah, you keep it.
7: Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
0: NZHL.
9: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
10: This Thursday.
11: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetners, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
10: See online for T's and C's.
12: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
13: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
0: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity alarm.
2: Hit it. So finally I'm ready to hit it and I am hoping my level best ki aaj jo awaaz main lekar aayi hu ise pehchanne mein aapko dikkat to hogi. That's what I think of, but dekhna ye hai ki kya ये सच में होगा या नहीं, क्या आज मेरी जीत होगी बिकॉज आई विल बी गेटिंग सच अ डिफिकल्ट वॉइस फॉर यू टू गेस, या फिर आपकी जीत होगी बिकॉज यू हैव बीन विनिंग. जब भी हम सेलिब्रिटी अलार्म लेकर आए हैं, आई थिंक देर वॉज ओनली वन टाइम देर वॉज समन्स वॉइस, आई कांट रिमेंबर किसकी, पर किसी की तो थी जो दो दिन हमने चलाई थी, बट सेकेंड डे भी आपने गेस कर लिया था. आज के हमारी जो सेलिब्रिटी अलार्म, जो सेलिब्रिटी में है, आई मीन जो सेलिब्रिटी है, इनकी आवाज आपको गेस करनी है और वो आवाज जो आपको गेस करनी है वो है ये. सो ध्यान से सुनिएगा.
14: Yeah, I think whenever you come to England, it's always an amazing atmosphere, an amazing crowd, ridiculously incredible fanfare. I think we saw from the Ashes series recently. So it's going to be awesome. We always say England in the summer is a great time to be here. So I'm excited for the cricket to get underway.
2: तो चलिए जल्दी से बताइए क्या लगता है किसकी आवाज़ है ये. अगर आपको पता है तो जल्दी से हमारे पास आप टेक्स्ट कर दीजिए अपने नाम के साथ 5599 पर. BF लिखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम. आज देखते हैं क्या होता है सेलिब्रिटी अलार्म का अंजाम. क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट. लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हेल्प मैं कर रही हूँ आपकी. एक आखिरी बार आपको सुना रही हूँ इनकी आवाज़.
14: I think whenever you come to England, it's always an amazing atmosphere, an amazing crowd, ridiculously incredible fanfare. I think we saw from the Ashes series recently. So it's going to be awesome. We always say England in the summer is a great time to be here. So I'm excited for the cricket to get underway.
2: तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स हमारे पास भेजिए. Normally जब हम कोई भी आवाज लेकर आते हैं सेलिब्रिटी अलार्म में, तो जब तक सेकंड टाइम हम आपको आवाज सुनाते हैं, तब तक ना एक दो मैसेजेस तो आ ही जाते हैं. आज क्या हुआ? आज एक भी मैसेज नहीं आया अभी तक. Let's see what happens. Oh, Neha, you are the first one. Neha ne apna jawab bheja hai. Kya bheja hai, main abhi nahi bataungi, thodi der baad bataungi, because I want to see how many of you are trying to at least identify ki aaj ke hamare celebrity alarm mein kaun hai. 23 minutes after 7, no clues today. Let's see, jaldi jaldi answers bhejiye. Thodi der baad aapke liye lekar aane wale hain aaj ke news headlines.
15: Bollywood's most wanted.
16: Gundi ghad dao, ya seedha andar aao.
17: मैं लाऊं अपना A game.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले कहा गया है कि 49-year-old व्यक्ति को आज बाद में चलकर कोर्ट में पेश किया जाएगा आफ्टर अ वायलेंट इंसिडेंट जो है ये सामने आया था कल ऑकलैंड के एप्सम में, और इसमें मल्टीपल असॉल्ट्स, एक चोरी की गाड़ी और डेंजरस ड्राइविंग जैसे मामले भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो एक जॉगर को अटैक किया, जिसके बाद चलकर एक गाड़ी की चोरी की एंड लेटर ऑन क्रैश्ड इट इनटू साइक्लिस्ट्स, जिसकी वजह से 3 स्टूडेंट्स जो है ये काफ़ी जख्मी हुए, जिनमें से एक अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। इन पर एनिमल क्रुएल्टी के चार्जेस भी लगाए जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक डॉग पर हमला भी किया, जिसके चलते उस डॉग की मृत्यु ऑन द सीन जो है ये हो गई। अन्य खबरों में कहा गया है ऑकलैंड का लॉन्ग अवेटेड सिटी रेल लिंक ऑफिशियली 13th ऑफ सितंबर को ओपन हो जाएगा, मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ न्यूजीलैंड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। 5.5 बिलियन का अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क जो है इसे बनाने में करीबन एक डेकेड जो है ये लग गया, और इससे मोर फ्रीक्वेंट ट्रेन सर्विसेज थ्रू सेंट्रल ऑकलैंड ऑपरेट होंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो है ये हैं। पब्लिक को मौका मिलेगा टू गेट द फर्स्ट लुक ऑफ दिस न्यू स्टेशंस ड्यूरिंग फ्री इवेंट्स जो इस महीने बाद में चलकर होंगे। उसके अलावा कहा गया है करेक्शंस ने लॉन्च किया है एक मेजर रिव्यू ऑफ माउंट इडन प्रिजन, जिसके चलते कुछ चैलेंजेस एट दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी फेस किए जा रहे हैं। कहा गया है कि ये मौका है टू इंप्रूव सेफ्टी, स्टाफिंग और डेली ऑपरेशंस आफ्टर कंसर्न्स इंक्लूडिंग अ राइजिंग नंबर ऑफ रिमांड प्रिजनर्स, अलेज्ड स्टाफ मिसकंडक्ट और सीरियस इनमेट इंसिडेंट्स जो है ये रिपोर्ट किए गए हैं। और खेलकूद के खबरों में कहा गया है द वॉरियर्स जो कि भिड़ने वाले हैं NRL के लीडर्स पैंथर्स के साथ इन ऑकलैंड माउंट स्मार्ट स्टेडियम इसी फ्राइडे नाइट को, यानी कि कल रात 8 बजे से, और कहा गया है कि ये एक बहुत ही क्रूशल मैच होने वाला है। वॉरियर्स फिलहाल दे आर सिटिंग ऑन द 3rd ऑन द लैडर, जबकि पैंथर्स इस पर्टिकुलर टेबल को लीड कर रहे हैं इन दिस कॉम्पिटिशन। पैंथर्स ने अपने प्रीवियस क्लैश जीते हैं विथ 20-18 पॉइंट्स, लेकिन दोनों टीमें ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग विक्टोरियस मैच जो है ये प्ले किया है। सो लेट्स सी, जब इनकी भिड़ंत कल होगी रात 8 बजे एट माउंट स्मार्ट स्टेडियम, तो NRL लीडर बोर्ड पर क्या चेंजेस जो है ये देखने को मिलते हैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: On vacation,
5: a secret destination, two lucky people, one unforgettable adventure.
4: On vacation,
6: take a trip,
7: get away.
5: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
8: I'ma get away.
5: Listen on 104.2 FM and Rover. Accurate traffic.
9: BYD South Auckland now open.
10: I have just 13. Fine today, but a really cool start into the city. A fine one on motorways. Southern at 44 minutes. Manukau to town. Slow all the way from Papakura. Heavy patches are building. Southwestern, a little heavy northbound through Whitty. Northwestern, 28 minutes. Massey to town. Slow most of the way from there. Heavy at Te Aratu. Northern, 25 from Constellation. Heavy there. Slow to the bridge. And heavy at Silverdale.
9: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
11: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
12: When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
13: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus, get a free in-home measuring quote on us. Guthrie Bowron. Inspiration starts here. Conditions apply.
14: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
0: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewellery purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
2: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
15: Iska birthday, bhai?
16: Mera bhi birthday, chalo line mein aa jao.
17: Happy birthday to you.
1: A very very happy birthday आपको विश करने का समय हो रहा है आज यानी 6th of August को अगर आप अपना birthday celebrate कर रहे हैं हमारी ओर से आपको happy birthday many many happy returns of the day आज अगर देखा जाए तो बहुत से लोग अपना अपना birthday celebrate कर रहे हैं और आप सभी को इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से सबसे पहले आज जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं शिवनीत सिंह आपको शिवनीत अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू और आपकी प्यारी सी पत्नी है शीनल इनकी ओर से आज के इस दिन पर खास प्यार एंड बेस्ट विशेस जो है आपको मिल रहा है सभी परिवार वालों की ओर से भी हमारी हम टीम की ओर से भी आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे हम विश कर रहे हैं इसके अलावा आज नाज आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके सभी परिवार वालों की ओर से नॉट फॉरगेटिंग कि ये स्पेशल दिन आपके अपनों ने आपको याद करते हुए आपके लिए ब्लेसिंग्स और लव जो है ये विश किया है तो हमारी ओर से भी आपको जन्मदिन बहुत बहुत बार मुबारक हो हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू
2: मॉर्निंग मैडनेस
1: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे अबाउट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव जहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत अपलिफ्टिंग इवनिंग ऑफ डिवोशनल म्यूजिक बट दैट टू ऑन अ लाइक अ कॉन्सर्ट लाइक सेटिंग एक ऐसा माहौल जहां पर आप भी मजबूर हो जाए झूमने के लिए और नाचने के लिए और अपने डिवोशनल जर्नी को तय करने के लिए तो क्या करना है इसके लिए क्या है ये इससे जुड़े डिटेल्स हम बस थोड़ी देर बाद आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे बट गेटिंग बैक टू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट विच इज़ आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज फाइनली आज वो हुआ जो आई वॉज होपिंग की हो आप में से किसी ने भी आज के सेलिब्रिटी की आवाज़ नहीं पहचानी नेहा ने सबसे पहले जवाब दिया था मिचेल सैंटना इन्होंने लिखा था एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज रॉन्ग राहुल पांडे ने अपना जवाब भेजा था एज ब्रेंडन मैकेलम फिर उसके बाद आरिफ का आंसर आया एज एड शेरन एंड राहुल ने अगेन कोशिश की स्टेफन फ्लेमिंग मेरे ख्याल से ये इन्होंने भेजा और नेहा ने अगेन कोशिश की डेरिल मिचेल ये इन्होंने भेजा सो अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी ने भी हमें सही जवाब नहीं दिया कि आज के जो सेलिब्रिटी थे हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए किनकी आवाज़ थी नो वन गॉट इट राइट इसका मतलब ये है कि कल यही आवाज़ एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आएंगे और देखेंगे कि क्या आप में से कोई है ऐसा जो इनकी आवाज़ को पहचान ले तो इसके लिए तो अब कल का इंतज़ार करना होगा फिलहाल 22 मिनट बाकी हैं 8 बजने में
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आपके लिए आज का हमारा बहुत ही रोमांटिक ये गाना पेश कर रहे थे हम फ्रॉम द फिल्म मेट्रो इन दिनों। और पिछले ही साल ये फिल्म जो है ये आई, कई लोगों को शायद उतनी पसंद नहीं आई ये फिल्म, बिकॉज द कंपैरिजन इज ऑलवेज देयर विद द ओरिजिनल ना, और लाइफ इन अ मेट्रो के साथ कंपैरिजन किया जाता है बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट वॉज बेसिकली अ पार्ट टू और अ सीक्वल, बट डिफरेंट स्टोरीज डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। बट आई वुड पर्सनली से फिल्म चाहे अच्छी लगी हो ना लगी हो, लेकिन इस फिल्म के गाने मुझे बहुत पसंद आए, उनमें से एक ही गाना आपके लिए आज हम पेश कर रहे थे। इधर हमने कहा था आपको बताएंगे अबाउट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, तो याद दिला रहे हैं आपको भजन जैम्स के बारे में। आपके पास मौका है टू एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग अपलिफ्टिंग इवनिंग ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, जिसमें फ्यूजन ऑफ भजन और कीर्तन दोनों रहेंगे, बट इन अ वाइब्रेंट कॉन्सर्ट लाइक सेटिंग। आपको मौका मिलेगा लाइव बैंड के साथ, यहाँ पर जो टैलेंटेड वोकलिस्ट्स हैं और म्यूजिशियंस हैं ये सभी अकंपनी करने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट रवितेश दियो को। एक एक्सपीरियंस रहेगा ट्रेडिशनल डिवोशनल इवनिंग का जो आपने शायद यू नो पहले नहीं किया हो, और अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं देन दिस इज द चांस। रवितेश जो है आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं भजन जैम्स लाइव साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड, इनकी ओर से विच इज क्यूरेटेड बाय न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट, और ये स्पेशल इवेंट हो रहा है इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो मौका है आपके पास एक और, जहां पर इफ यू आर थिंकिंग हाउ टू स्पेंड योर सैटरडे नाइट 22nd of August, तो एक तो इतना डिवोशनल एक्सपीरियंस करने का मौका इन अ वेरी वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, और वहीं दूसरी ओर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने का मौका टू गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी, जिसके तहत इफ यू बीन वांटिंग टू डू समथिंग स्पेशल लेकिन कैसे करें वो आपको पता नहीं था, दिस माइट बी योर गाइडेंस टू गेट दैट डन। सो आप याद रखिएगा डेट 22nd of August 7 PM वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापा टोयटो आपको पहुंचना है। अगर आपके साथ बच्चे कंपनी करने वाले हैं आपको हु आर 5 ईयर्स एंड अंडर, उनके लिए एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, बट बाकियों के लिए टिकट्स लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए आप विजिट कर सकते हैं eventbrite.com, रिमेंबर eventbrite.com, और यहां से आप टिकट्स जो है ये ले सकते हैं। और दूसरी ओर आप यू नो फिजिकल लोकेशंस जिनमें जे सुपर मार्केट पापा टोयटोए, वैली फ्रेश पापा टोयटोए और शिव प्रसाद इन सन्स कैलस्टन शामिल है, यहां से भी टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसका हिस्सा बनने के लिए।
1: Mornings made better.
2: Two frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
3: और गानों में जज्बा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो इधर चलिए समय की ओर देख ले. अराउंड 12 मिनट्स बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में. तो 8 बजने वाले हैं जिसके बाद तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और साथ में रश आवर की शुरुआत भी होगी. बट रिमाइंडिंग यू ऑल, अगर आपको 8 बजे तक कुछ करना था, होपफुली यू आर ऑन टाइम. नाउ इधर आगे बढ़ने से पहले, मतलब थ्रोबैक आपके नाम करने से पहले, एक और एक अपडेट आपके लिए आज के मौसम के बारे में. न्यूजीलैंड के मामले में कहा गया है कि वी विल बी फेसिंग मोर फ्रीजिंग नाइट्स और कुछ वार्निंग्स भी मेट सर्विस द्वारा दिए गए हैं कि नेक्स्ट फ्यू नाइट्स कुड बी कोल्डेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर विंटर. जो कोल्ड स्नैप है, इट हैज ऑलरेडी पुश्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज टू अ न्यू रिकॉर्ड, जिसके बारे में हमने कल भी बातें की थी, विद डिमांड रीचिंग 7,247 मेगावाट्स एज पीपल टर्न्ड अप टू हीटर्स एंड हीट पंप्स ऑफ कोर्स खुद को वार्म रखने के लिए. तो वहीं पर ट्रांस पावर ने यह भी कहा है कि सप्लाई इज टाइट, लेकिन देयर इज नो नीड फॉर हाउस होल्ड्स टू रिड्यूस पावर यूज एज येट. और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स कह रहे हैं दे आर वर्किंग टूगेदर टू कीप द लाइट्स ऑन. स्नो और आइस की वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुए हैं अराउंड द कंट्री, जिनमें द नीडन शामिल है जहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ, और वेलिंगटन जिसने स्नो जो है फॉर द फर्स्ट टाइम देखा इन ऑलमोस्ट अ डेकेड, आई थिंक 11 या 15 सालों में पहली बार यहां वेलिंगटन में स्नोफॉल जो ये हुआ. मेट सर्विस ने कहा है कि टेम्परेचर्स इन साउथ आइलैंड कुछ कुछ एरियाज में तो इतना कम हुआ कि एज लो एज -8 डिग्रीज जो है ये पहुंच चुका था, वाइल सीवियर फ्रॉस्ट आर एक्सपेक्टेड अक्रॉस मेनी रीजन्स ओवरनाइट. और रोड क्रूज ने कहा है टू रिमेन ऑन स्टैंड बाय विद पॉसिबल क्लोजर्स ऑन आईसी रूट्स, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्टेट हाईवे 2 शामिल हैं नियर गिस्बन, और ड्राइवर्स आर बीइंग अर्ज्ड टू स्लो डाउन एंड टेक केयर ऑन आईसी रोड्स. ये जो कोल्ड वेदर है इज एक्सपेक्टेड टू ईज स्लाइटली कल, जबकि कुछ वार्मर विंड्स माइट मूव इन, लेकिन ये तक बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ साउथ आइलैंड में इतनी ज़्यादा ठंडी हो सकती है कि माइनस टेम्परेचर जो है ये डबल डिजिट्स में भी जा सकता है, विच मीन्स समथिंग विच विल बी वेरी वेरी अनबेरेबल आई वुड से, अगर मैं होती सिचुएशन में. बट आज सुबह व्हेन आई वोक अप, लाइक आई वोक अप अराउंड 4:50, नहीं है मुझसे उतनी उससे ज़्यादा जल्द नहीं उठा गया आज बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड. बट व्हेन आई वोक अप एट अराउंड 4:50 नहीं है, एट दैट टाइम द टेम्परेचर वॉज 2.8 डिग्रीज इन द एरिया आई वॉज इन. आप आज सुबह जितनी बजे जागे उस हिसाब से आपके एरिया का टेम्परेचर क्या था, डू यू नो, डू यू रिमेंबर, या फिर राइट नाउ जिस एरिया में आप हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है. इफ़ यू नो 5599 पर हमारे पास भेजिए. देखते हैं किसने सबसे कम टेम्परेचर के साथ अपनी सुबह की शुरुआत आज की हम सभी में से.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Super City, Auckland mein right now temperature is around 2.4 degrees but feels like 1 degree. Overnight temperature to rahega hi 1 degree and high of 11 expected hai baad mein chalkar sunset 5:41 PM par hoga. Mausam to fine rehne wala hai lekin morning and evening frosts aaj hum zarur experience karenge.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: आज का ट्रेंड पेट्रोल तो भाई न्यूजीलैंड का वेदर ही है. यहाँ की सर्दी विंटर इज समथिंग दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइक क्रेजी, यही है. और अगर आपने मिस आउट किया तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जो है ये भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि ट्रांस पावर जिन्होंने वॉर्न किया है एनर्जी शॉर्टफॉल्स, आज सुबह 7:30 से लेकर 8:30 AM तक का टाइम दिया गया. दैट वन आवर विंडो जहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेचर्स आर प्लंजिंग अक्रॉस न्यूजीलैंड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, हीट पम्प्स एंड हीटर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जिसके चलते एनर्जी शॉर्टफॉल्स हो सकते हैं. एंड द मॉर्निंग हैज़ डेफिनेटली ब्रोकन ऑन अनदर बिटरली कोल्ड, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री सब जीरो टेम्परेचर्स जो है ये फील किए जा रहे हैं. इनफैक्ट इन सम एरियाज द कोल्डेस्ट फीलिंग लाइक -13 degrees. नाउ सबसे कमाल की बात ये है कि एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, ट्रांस पावर ने ये रिवील किया है कि येस्टरडे इलेक्ट्रिसिटी पीक वॉज एट द हाइएस्ट पावर यूज ever recorded. और ये जो highest power use ever record किया गया है, it was of around 7,247 megawatts. क्योंकि लोग जो है सर्दी के इस मौसम में खुद को जितना warm हो सके उतना warm रखने की कोशिश कर रहे हैं. The coldest temperature in the country this morning was at around -9.7 degrees माउंट कुक में, दो इट फेल्ट लाइक मोर लाइक -13 degrees टेम्परेचर. एंड अकॉर्डिंग टू मेट सर्विस का वेबसाइट ये रिपोर्ट किया गया है, दैट्स नॉट फार फ्रॉम इट्स कोल्डेस्ट टेम्परेचर दिस ईयर. क्योंकि लास्ट मंथ दिस ईयर ऑफ लास्ट मंथ इनफेक्ट अगर देखा जाए -11.5 degrees तक भी टेम्परेचर जो ये गया है. क्राइस्ट चर्च डिप्ड टू -3.7 degrees ओवरनाइट, अबाउट 5 degrees Celsius जो इनका एवरेज ओवरनाइट मिनिमम होता है. जबकि क्वींसटाउन आज सुबह -5 degrees के साथ यहाँ पर लोग जागे. एंड इनवरकागिल में -4 degrees. नॉर्थ आइलैंड में अगर देखा जाए कोल्डेस्ट टाउन दिस मॉर्निंग टाउमरनुई जो है ये था, विच वॉज अराउंड -5.6 degrees. हैमिल्टन -2.6 degrees. टोपो वॉज जस्ट अंडर -2 degrees और रोटरुआ -2.5 degrees अकॉर्डिंग टू मेट सर्विस. तो हमने आपसे कहा था कि आप भी बताइए आज सुबह आप कितने बजे जागे एंड वेन यू वोक अप तो कितना डिग्री था टेम्परेचर, और आप में से वो कौन शख्स है जिन्होंने सबसे कम टेम्परेचर में आज अपने सुबह को गुड मॉर्निंग कहा. सो किसी का मैसेज है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन 4632 इनके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स, किस एरिया से कितने बजे ये भी नहीं पता है, बस इन्होंने -1 degree जो है ये लिखकर भेजा. जेसिका का मैसेज है saying good morning, I'm Jessica, I'm in Manikau, it was 1 degree this morning around 6 AM, 1 degree in Vayuku, मिनल ने कहा है. जाकिया ने कहा है 3 degrees और उसके बाद चरिशा का मैसेज है it was 2 degrees in Tiatatu South around 6:30 this morning. Hi Pooja, Prashant here, I woke up at 5 AM this morning and temperature was 0 degrees in Henderson. हुनुवा में मनोज जी ने कहा है, मनोज प्रसाद फ्रॉम साउथ साइड ऑफ ऑकलैंड, हुनुवा में इट वाज अराउंड 6 AM के अराउंड इट वाज 0 degrees. सो देयर यू गो, आपने भी अपने अपने टेम्परेचर्स जो है ये हमें बताए हैं कि इन दिस मॉर्निंग आप जब जागे तो कितना था. आई थिंक 4632, यू हैवन रिटन द टाइम और द एरिया, बट ऑफ कोर्स -1 degree वुड बी द लोएस्ट टेम्परेचर जो अभी तक हमारे पास आपने भेजे हैं उनमें से. अगर आपके पास भी है दैट अपडेट, बिकॉज आजकल तो बस हम यही करते रहते हैं कि व्हाट्स द टेम्परेचर, हाई गूगल व्हाट्स द टेम्परेचर, हाई सीरी व्हाट्स द टेम्परेचर, तो अगर आपको भी पता है यू गॉट अ रिकॉर्ड आज सुबह व्हेन यू वोक अप, व्हाट टाइम यू वोक अप, व्हिच एरिया यू वर इन एंड उस जगह का टेम्परेचर कितना था व्हेन यू वोक अप, तो ये आप हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं व्हाट वॉज द टेम्परेचर दिया. कुछ और मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए हैं, जस्ट ट्राइंग टू सी हुनवा, अच्छा ये मनोज जी ने भेजा था, आई थिंक हुनवा कम्स इन द वेस्ट साइड, ये किसने भेजा यार. और उसके साथ शमा ने कहा इट वॉज 0 degrees इन पापाकुरा, -1 degrees क्लेंडन पार्क में किसी ने मैसेज किया है. आप भी अपने मैसेजेस सेंड करते रहे, थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स अ टेक टॉपिक हम रिवील करेंगे. उम्मीद है उसमें भी आप अपना योगदान जरूर देंगे. और आज है थर्सडे, सो लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोला से भी बातें होगी हमारी.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अपने घर को रेडी कीजिए माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन के साथ, क्योंकि अभी पाइए सीलिंग इंसुलेशन फ्रॉम जस्ट 69.95 पर बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एलिमेंट आर 3.6 सीलिंग इंसुलेशन नाउ अवेलेबल एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
2: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings, like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzara's, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev. Devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shri Prasad, Kelston.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoi and Hamilton.
12: What's your take?
13: What's your take? आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, but what's your take topic से पहले जो messages आपने भेजे, मतलब क्या मजे लेते हो ना आप सब भी, कभी कभी आप जो मजे लेते हो उसमें मुझे भी मजा आ जाता है। आज हमारे पास ये 4632, आपका नाम तो नहीं है पर आपने मैसेज किया कि आई थिंक हुनवा कम्स इन द वेस्ट साइड, ये आपने मैसेज किया था। और उसके बाद चलकर हमारे पास हेंडरसन से डेनिस का मैसेज आया, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग पूजा, डेनिस हियर फ्रॉम हेंडरसन। दिस मॉर्निंग एट अराउंड 5:30 AM इट वाज 0 degrees, फेल्ट लाइक -3 इन हेंडरसन। बॉम्बे से सलेशनी का मैसेज आया, आपने कहा 5 AM -1 degree था। उर्मिला जी ने मैसेज किया गुड मॉर्निंग पूजा, ब्लॉकहाउस बे 6 AM वॉज 1 degree। और हुनवा किधर है ये जानना है किसी को, 7540 आपने अपना मैसेज भेजा। यार यू नो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई इस मामले में, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे याद आया कि मैं तो हुनवा गई भी हूँ और वहाँ पर जो पॉपुलर वोटर फॉल है वो भी देखा हुआ है, फिर भी याद नहीं कि हुनवा किधर है। सो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू नो विच साइड इज हुनवा, हुनवा इज एक्चुअली लोकेटेड साउथ ईस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड रीजन और इट्स रफली अराउंड 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ ऑकलैंड सिटी सेंटर से पापाकुरा और क्लेवडन के आसपास कहीं ना कहीं पर है ये, ठीक है। आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू ऑल। एनीवेज इधर चलिए, आज का टॉपिक ऑफ द डे आपके लिए हम लेकर आए हैं, आज थर्सडे है सो वी ट्राई एंड कीप थिंग्स सिंपल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज दैट वन स्मॉल थिंग जो इंस्टेंटली आपका दिन बना देता है? कोई भी ऐसी छोटी सी चीज, चाहे जो आप खुद करते हो या समवन एल्स डज इट या यू गेट टू एक्सपीरियंस इट, जिसकी वजह से आपका दिन एकदम बन जाता है। व्हाट इज दैट स्मॉल थिंग दैट इंस्टेंटली मेक्स योर डे बेटर? कुड बी एनीथिंग ना, कुछ भी हो सकता है, बट आपके लिए क्या है? Now I have noticed something खुद के लिए I can say and in fact आज सुबह मैंने experience किया which is why I was like कि चलो आपकी राय जानते हैं आपका take जानते हैं आपके लिए what's the situation like. मैंने ये नोटिस किया व्हेन आई कम टू ऑफिस अभी इस वीक नहीं मतलब पिछले दो हफ्तों से जो भी मैं आ रही हूँ ऑफिस तो सुबह सुबह इट्स जस्ट मी हमारे स्टूडियो में और बाकी स्टूडियोज़ में जो हॉस्ट्स होते हैं अपने अपने शोज़ के वही होते हैं एंड व्हेन आई इन बिटवीन सॉन्ग्स वॉक आउट ऑफ द स्टूडियो कॉफ़ी फी बनाने के लिए तो सबका जो मूड होता है मॉर्निंग शो वालों का एक जैसा ही होता है मतलब खुद को एकदम जगाना खुद को एकदम बताना यू नीड टू बी इन योर फुल फॉर्म फुल एनर्जी एंड दैट्स हाउ वी इंटरेक्ट राइट पर कभी कभी क्या होता है जस्ट अ स्मॉल स्वीट लिटिल स्माइल ऑन समवन एल्सेस फेस लुकिंग एट यू एंड सेइंग गुड मॉर्निंग विद दैट ब्यूटिफुल स्माइल और नॉट इवन सेइंग गुड मॉर्निंग सिर्फ एक स्माइल आपको देख कर अगर कोई दे दे आई फेल्ट इट लाइक इट्स सच अ पॉजिटिव थिंग इफ समवन लुक्स एट यू विद अ स्माइल मुझे सच में ना बहुत अच्छा लगता है इट फील्स लाइक पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू इन देयर ओन वेज और एक्नॉलेजिंग यू इन देयर ओन वेज एंड दैट्स दैट वन थिंग दैट मेक्स माई डे एब्सोल्युटली अमेजिंग आपके लिए व्हाट इज इट दैट मेक्स योर डे एब्सोल्युटली अमेजिंग 800-00-4866 पर आप हमारे पास कॉल करते हुए बता सकते हैं यू कैन शेयर इट विद योर एक्सपीरियंसेस यू कैन जस्ट लेट अस नो और उसके अलावा आप चाहे तो मैसेज भेज सकते हैं 5599 पर हमारे पास इफ़ यू डोंट वांट टू गिव अस अ कॉल एंड टॉक अबाउट इट तो जस्ट सेंड अस अ मैसेज ऑन 5599 एंड लेट अस नो कि व्हाट इज इट दैट मेक्स योर डे एब्सोल्युटली बेटर ओ अमेजिंग माय सन सेइंग गुड मॉर्निंग टू मी रोनल्ड ने कहा है यार बच्चे अगर प्यार से गुड मॉर्निंग बोल दे या बच्चे सुबह सुबह प्यार से आपको देख ही ले वो तो खुद ब खुद आपका दिन बना देता है व्हेन माय हस्बैंड वॉक्स इनटू अ रूम स्टेपिंग इनटू हिज ऑरा मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल अरे वाह क्या बात है आप है कौन और आपके हस्बैंड के लिए इतना प्यारा सा मैसेज आपने भेजा अगर उनका नाम भी बता सकते तो क्या बात होती बट थैंक यू सो मच 3765 आपके मैसेज के लिए भी आई थिंक आज का टॉपिक ऑफ द डे ऐसा है जहां पर प्रोबेबली आई वोंट बी गेटिंग एनी कॉल्स आई माइट बी गेटिंग मैसेजेस तो हाउ अबाउट वी कीप इट दैट वे पर अगर आपको कॉल करना है आई विल गिव यू फाइनल मिनट 800-00-4866 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि वो कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जो इंस्टेंटली आपके दिन या आपकी सुबह की मतलब शुरुआत इतनी अच्छी बना देता हो आपका दिन इतना बढ़िया बना देता हो दैट इट मेक्स यू फील रियली हैप्पी गुड मॉर्निंग
12: जी गुड मॉर्निंग
13: जी कैसे हैं आप
12: मैं एकदम मस्त आप बताइए
13: मैं भी एकदम बढ़िया एकदम मस्त आप सबसे पहले तो अपना नाम बताने की कृपा करेंगे
12: उदय जी मेरा नाम ओमकार है
13: ओमकार तो बताइए ओमकार ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है जो आपका दिन एकदम बना देता है
12: मतलब जो आपने बताया कि कोई भी आपके ऑफिस कलीग जब आपको कोई भी गुड मॉर्निंग बोलता है या फिर स्माइल दैट मेक्स यू हैप्पी बट फॉर मी नाउडेज मेरे बच्चे
13: यो बच्चे
12: स्माइल इज इनफ
13: ओह दैट्स स्वीट हाउ ओल्ड आर दे
12: शी इज 2.2
13: सॉरी क्या
12: दो साल की बच्ची है
13: दो साल की बच्ची आपकी और ही वो तो एज ही ऐसा यार जहाँ पे वो कुछ ना भी करे तो भी उनको देखकर ही आपका दिन बन वो ऐसे पड़े पड़े सो ही रहे आपको देखकर उनका दिन बन जाता है
12: एब्सोल्युटली शी इज सुपरस्टार
13: हाँ
12: और आप सिर्फ क्या बोलते हैं उसको एक स्माइल ही काफी है इट्स लाइक बिलियन डॉलर स्माइल
13: एग्जैक्टली क्या है आपकी बेटी का नाम क्या है ओमकार
12: आर्या
13: ओ वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम मेरी नीस है
12: उसने दो तीन बार रेडियो पे बात भी की है यू कांट बिलीव दैट बट
13: ओ वाओ दो साल की उम्र में
12: हाँ उसने हाय बोला है सबको मतलब मैं रुतबे सैंडी के शो में था एक दिन इवनिंग को उसने बोला बेटा हाय बोलो सबको तो उसने हाय बोला सबको
13: दैट्स स्वीट
12: हाथ नहीं कर सकती ऑब्वियसली लेकिन हाय तो बोल सकती है तो वो बोला उसने बस
13: अरे किसी दिन हमारी भी बात कराओ यार उससे आई'd लव टू टॉक टू आई नो
12: सुबह कैसे करेंगे पूजा जी उसका वो थोड़ा सा सोने का टाइम थी बिल्ली को छोड़ने का इसलिए मेरा शावर बहुत बार लेकिन देखते हैं कभी आई एम नॉट श्योर बट वीकेंड लेकिन वीकडे पे अगर कोई छुट्टी रही
13: या फिर अभी हमारा जब रेडियो थोन आएगा ब्रिंग हर अलोंग वुड लव टू मीट हर टू
12: एब्सोल्युटली कभी भी बताइए हाँ। वो आगे जाके वही मतलब बोलते हैं ना कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी हमकी, यू नो.
13: ओह, वी'd लव दैट टू हैपन. थैंक यू सो मच ओमकार, एंड गिव आवर लव टू आर्या. थैंक यू. गुड मॉर्निंग जी. थैंक यू सो मच. यार सच अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन यार. इतना इतना प्यार, इतनी खुशी थी इनकी आवाज़ में अपनी बेटी के बारे में जब ये बोल रहे थे ना. दैट इज़ अमेजिंग यार. सो थैंक यू सो मच ओमकार. आई फेल्ट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर्स कि आपकी बेटी ही है वो जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो लाती है लेकिन आपके दिन को एकदम बढ़िया बना देती है. 0800 004 866 पर इफ यू लव टू कॉल, यस यू कैन डू दैट. बट यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी आए हैं. घर पर आते टाइम पर हैप्पी स्माइलिंग वाइफ एंड किड्स, एन एक्साइटेड डॉग मेक्स यू वेरी हैप्पी. गुड मॉर्निंग.
14: गुड मॉर्निंग.
13: कैसे हो जी?
14: जय श्री कृष्णा.
13: जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. किन से बात हो रही है?
14: गिरीश पटेल.
13: गिरीश जी, तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है दैट मेक्स योर डे? लोग दुनिया दूर से कहां कहां से ट्रेवल कर वो देखने आते ना, यहाँ जो पहला सनराइज होता है साल का, दे वांट टू स्टार्ट देयर न्यू ईयर विद दैट.
14: Yes, so nice. It feels so good, especially when you have the frost on the grass and when the sun comes out.
13: आपके कॉल के लिए थैंक यू. आई विश यू अ वंडरफुल डे अहेड. बाय बाय. तो थैंक यू आपके भी कॉल के लिए. अभी आप चाहे तो मैसेजेस जरूर भेज सकते हैं 5599 पर और हमें बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है दैट मेक्स एब्सोल्युटली योर डे अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. और 5599 पर जब आप मैसेज कर रहे हैं तो इफ़ यू आर रेफरिंग टू अ पर्सन तो उनका नाम भी अगर आप चाहें जरूर भेज सकते हैं. वी'd लव टू डू अ शाउट आउट एज वेल. 5061 आपने जैसे कि कहा आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपका डॉग, योर एक्साइटेड डॉग मेक्स योर डे. शायद आपकी पूरे दिन भर की थकावट जो है ना घर पर पहुँचते ही उतर जाती होगी इनको देख कर. एंड उसके अलावा माली, माई डॉटर गिविंग मी अ मॉर्निंग किस बिफोर वर्क कम्प्लीटली मेक्स माई डे. शी इज़ 5 आपने कहा है. थैंक यू सो मच. ब्यूटिफुल. आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो 5599 पर यू कैन कीप सेंडिंग योर मैसेजेस इन एंड थोड़ी देर बाद हम देखेंगे आपके मैसेजेस प्लस वील हैव अ चैट विद गुरु किंडोला इन अ वाइल एज वेल.
15: Hollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना ए गेम.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो चलिए, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बातें करेंगे लॉजिक फाइनेंस के गुरु खिंडोला के साथ, और लाइक एवरी थर्सडे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लॉजिक फाइनेंस से गुरु। अ वेरी गुड मॉर्निंग गुरु, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग पूजा, बस ठंडी ठंडी मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं।
0: अच्छा, ऑस्कर को लेके गए क्या आज वॉक पे आप?
1: ऑस्कर तो वो मुझे वॉक पे लेके जाता है, मैं नहीं लेके जाता उसको।
0: ये किसी को मत बोलना आप, वैसे रेडियो पे बोल रहे सबको खैर पता ही चल गया, पर ऑस्कर आपको वॉक पे लेके जा रहे, वेरी इंटरेस्टिंग यार।
1: सुबह मुझे उठाता है कि भैया चलें,
0: हाँ ना,
1: अब निकलना है हमें,
0: वरना आप तो उठोगे नहीं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसलिए इट्स गुड बट ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, गुड सनशाइन बट कोल्ड मॉर्निंग
0: यस, हर ओर न्यूजीलैंड में भाई आज की सुबह जो हुई है, जो ड्रॉपिंग टेम्परेचर्स के साथ, इट्स क्रेजी। बट टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग एज फार एज द वेदर इज कंसर्न, लेकिन टेम्परेचर्स राइजिंग एज फार एज द हाउसिंग मार्केट इज कंसर्न, बिकॉज बहुत से लोग बिलीव करते हैं दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट योर ओन हाउस। अगर आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे तो मार्केट काफ़ी अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है, स्पेशली फॉर फर्स्ट होम बायर्स, जिनके बारे में एक बार फिर आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे, स्पेशली फॉर ऑल दोज फर्स्ट होम बायर्स जिनके पास लो डिपॉजिट है। लो डिपॉजिट अगर 10% या 5% भी हम बोले, इतने में ऐसे एक र्यूमर्स हम सुनते हैं कि जितना लो डिपॉजिट होता है उनको कैशबैक भी बहुत कम मिलता है, एंड इट्स नॉट अ वेरी यू नो फेवरेबल थिंग फॉर देम, एंड दैट्स व्हाई दे लाइक यार कैशबैक इतना कम मिलेगा, व्हाट्स द सिचुएशन लाइक। बट आप क्या हमें एडवाइस कर सकते हैं या कोई डिटेल्स शेयर कर सकते हैं फॉर लो डिपॉजिट फर्स्ट होम बायर्स, 5% या 10%, क्या उनके लिए पॉसिबिलिटी है 1% कैशबैक का इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन?
1: तो पूजा, पहले आपने जो टाइम की बात किया कि यू नो टाइम कैसे चल रहा है और यू नो समय कैसा है, तो बेसिकली सी मैं एक ये इट वाज मीम्स कमिंग थ्रू बट इट वाज रियली प्रॉमिसिंग कि कहते हैं जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ होती है तो समय निकल जाता है।
0: वेरी ट्रू।
1: बेसिकली उसको माइंड में रखते हुए इट इज वेरी ट्रू थिंग कि जो आप आज इस समय में कर सकते हो, और जब आपके पास समझ है, जब आपके पास पोटेंशियल है, जब आपके पास इनकम है, जब आपके पास एज है, तो शुड टेक एन एक्शन नाउ। एंड अगर वो एक्शन फॉर व्हाटएवर रीजन कभी वो फेलियर भी बनता है, बट यू स्टिल गॉट टाइम टू रिकवर, एंड यू नो क्योंकि यू हैव दैट टाइम, यू हैव दैट समय, तो बट होपफुली थिंग्स डजंट गो दैट वे कि जहाँ पे आपको वो फेलियर आए, क्योंकि द वे नीड्स टू बी डन, इट हैज टू बी in a way ki success mile, but jo property market hai definitely it is one of those things ki jahan pe failure bahut zyada kam hai, because this is the market jahan se everyone actually grows. So property market mein definitely jaise abhi aapne kaha ki bahut different tarah ke myths hain ki ha bhi agar low deposit hai to aapko cashback hai wo bahut kam milta hai, agar 5% deposit hai ya 10% deposit hai तो बैंक्स आइदर से कि 3000 देंगे या 4000 देंगे, अगेन इट इज अ मिथ, वी कैन स्टिल गेट 1% डिपॉजिट, सॉरी 1% कैशबैक इवन विद अ लो डिपॉजिट्स ऑफ 5% एंड 10%। और इसको पाने के लिए बेसिकली एवरी बैंक आर हंग्री राइट नाउ, एंड दे एवरी अदर बैंक इज कमिंग अप विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स आउट इन द मार्केट कि ये बिजनेस हमें चाहिए और ये हमें बिजनेस चाहिए। तो बेसिकली अगर आप उस बोट में हो कि आपका डिपॉजिट कम है और आपका लोन अप्रूव हो रखा है और आपको जो कैशबैक ऑफर आया है वो कम आया उस बैंक से, हो सकता है उस बैंक ने कम ऑफर किया, बट दे आर अदर बैंक्स जो उससे ज्यादा उसको ऑफर करेंगे एज ए 1% कैशबैक, सो दैट इज टोटली अनट्रू कि लो डिपॉजिट वालों को 1% कैशबैक नहीं मिलता, दे डू गेट एब्सोल्युटली 1% कैशबैक। ऑल्सो जो कई बार होता है कि ये अभी तक मार्केट में मिथ है, और ये अभी तक मुझे लगता है हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स को पता भी नहीं है कि जो ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी होती है वो ब्रांड न्यू तब तक ही कहलाती है जब तक उसका सीसीसी आता है, विच इज कोड ऑफ कंप्लायंस सर्टिफिकेट। जिस दिन कोड ऑफ कंप्लायंस सर्टिफिकेट उसका आता है उससे 6 मंथ्स तक ही वो ब्रांड न्यू कहलाती है, जैसे ही वो 6 मंथ से एक दिन ऊपर चला जाता है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कहलाने लग जाती है। अभी उसमें रहा कोई भी नहीं है फिर भी वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के टैग में लग जाता है उसको।
0: ओके, कैटेगरी चेंजेस बेसिकली।
1: कैटेगरी चेंज हो जाती है, और जब वो कैटेगरी चेंज हो जाती है तो बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट है आरबीएनजेड रूल के हिसाब से
0: जी.
1: वो भी चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट न्यू प्रॉपर्टी के लिए और एग्जिस्टिंग के लिए डिफरेंट है.
0: ओके.
1: तो उसको कैसे टेक्निकली चैलेंज करना है या उसको कैसे आपको स्टिल ब्रांड न्यू दिखाना है कि कैसे हो सकता है. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो काफी मार्केट में वो मिथ्स रहते हैं कि हाँ भी ये ब्रांड न्यू है या एग्जिस्टिंग है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपको लो डिपॉजिट के साथ डेफिनेटली यू कैन गेट 1% कैशबैक. और आपको अगर उस बोट में है तो डेफिनेटली हैव अ चैट विद अस. आपको वहां कुछ ना कुछ करके देंगे 100%.
0: तो नंबर भी बता दो ना चैट करने के लिए.
1: चैट करने के लिए नंबर है 0800 Logic G. 0800 Logic G is the number to talk to me. Logic Finance आप सर्च करोगे गूगल पे, you will get my details. And 0212666374 is the number to get in touch with me.
0: Thank you so much, Guru. Next week Thursday को और information आप से जरूर हासिल करेंगे.
1: जरूर पूजा. Thank you. Cheers.
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja. Accurate traffic.
4: Kitchen Mania free installation.
5: Staying very cool today, high of 13, but should be lovely and fine all day. Into the city, Southern Motorway, 46 minutes, Manukau to town, starting to ease a bit. Slow from Manurewa, heavy from Otahu to the city. Southwestern, heavy northbound through Whitty, fine the other way. Northwestern, 33, Massey to town, slow from Te Aratu, heavy the causeway to St. Luke's. Northern, 26 from Constellation, slow from there with some heavy spots.
4: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
6: Professional by Ninjas है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 0984699934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
8: There's great value brewing at Bunnings. Pick up a Lavazza Omoto Mio Tiny Black Coffee Machine and Capsule Bundle for just $79. Includes 64 capsules of barista quality coffee. Stock is limited. Shop online or in-store at your local Bunnings Warehouse.
9: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
11: This Thursday.
12: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvainers, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
13: See online for T's and C's.
14: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
15: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
14: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
15: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
17: Let's go.
2: Straight from the heart.
18: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer, just $249. 9kg heat pump dryer, just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer, $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
4: आज वैसे हमारा WhatsApp टेक टॉपिक के लिए जो आपने अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो मच. व्हेन माय किड्स एज्ड 5 एंड 6 डोंट फाइट विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप एंड गेटिंग रेडी गेट रेडी टू गो टू स्कूल विद नो फस और बार्गेनिंग, तब इनका दिन बन जाता है. 5356, आपने अपना नाम तो नहीं लिखा पर शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. स्विंग माय मम एंड सिस, ये किसी ने मैसेज किया है. 3028, आई कुडंट अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपर्ली, सॉरी अबाउट दैट, पर शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. बाय द वे, रिमाइंडिंग यू ऑल, हमारा जो अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़बे, डू चेक इट आउट, क्योंकि रीसेंट एपिसोड में इन्होंने एक बहुत ही इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन किया है अबे कोहले के साथ, जो कि प्रिंसिपल एडवाइजर है इन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट एट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड, यानी कि MBIE. और अबे ने कुछ बहुत जरूरी टॉपिक्स पर बातें की है, अबाउट व्हाट आर योर राइट्स, जो आपको जानने चाहिए व्हेन यू आर साइनिंग अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट हैपेंस टू योर सिक लीव, योर एनुअल लीव्स, और अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो काम करने के लिए, यहाँ पर हो एज एन एम्प्लॉई, आपके क्या राइट्स है एज एन एम्प्लॉई, व्हाट आर द राइट थिंग्स यू शुड डू. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट, सुनना है अगर आपको. पूरा ऑडियो लिंक चाहिए, ड्राइव लिखकर 5599 पर हमारे पास आप सेंड कीजिए.

0: and when that comes in, it'll be wetter and warmer.
1: Tauranga Hospital's beloved cat, Steps, has been found. The male tabby disappeared on Monday night, sparking a wave of concern online. His dedicated Facebook page says he is now on his way home after breaking through a microchipped cat door and sleeping on a stranger's bed. To rugby with Shift 4, the competition to start for the All Blacks in the first test against the Springboks begins in Cape Town on Saturday morning. Patrick Tuipulotu captains the team against the Stormers, starting at lock alongside Fabian Holland. Bowden Barrett, Simon Parker, Kyle Preston and Rico Ioane are set to play for the first time this year for coach Dave Rennie.
2: There's a number of guys who have returned from injury recently or didn't play a massive amount of footy. A number of guys in there be desperate to make an impression.
1: First five Josh Jacob and prop Siali Loaki are set to debut from the bench.
3: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
5: World's best. Hamari good brands me.
4: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: जितने खूबसूरत मौसम आपको एक्सपीरियंस करने हैं, एंजॉय करना है, आज कल और परसों तक कर लो, क्योंकि संडे के बाद मौसम खराब होने वाला है, ज्यादा बारिश होने वाली है, लेकिन आज याद रहे फाइन वेदर. हाउएवर इवनिंग फ्रॉस्ट्स भी हम एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट 5:41 PM पर होगा. टेम्परेचर राइट नाउ 5.4 डिग्रीज है. हाई ऑफ 11 एक्सपेक्टेड लेटर एंड ओवरनाइट टेम्परेचर 1 डिग्री रहेगा.
4: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. What's going on?
6: आज की स्टोरी इज नॉट वियर्ड बट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. बट ऑन द सेम नोट वी कैन से क्या बकते हो, बिकॉज ये ट्रेडिशनल तरीकों को थोड़ा सा चैलेंज करता है. आज की कहानी है 25-year-old लुकस याल की, जो कि सैन फ्रांसिस्को से मूव लुथेनिया से मूव हुए टू सैन फ्रांसिस्को 2016 में. और उनको ये पता था कि अगर वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल तरीके से अपने जो रेज्यूमेज है ये किसी तक पहुँचाना would not be enough, and he wanted to stand out in the competitive job market of San Francisco, जिसको लेकर उन्होंने Silicon Valley में वो रहते हैं और उन्होंने creative तरीका जो है ये सोचा. He actually disguised himself as a Postmates delivery driver. और फिर उसके बाद में उन्होंने अलग अलग businesses, companies जहाँ पर ये interested थे to apply for a job, इन्होंने वहाँ पर boxes of donuts जो है ये deliver करना शुरू किया. As a delivery driver, अपने आप को ये disguise कर. He actually delivered boxes of donuts to 40 companies, जिसके अंदर उन्होंने अपना resume जो है ये बड़ी smartly छिपा कर रखा हुआ था. Like not छिपा छिपा कर, what apparently happened is he got this very interesting kind of donut boxes designed, जिसका जैसे ही आप cover खोलोगे तो उस पर एक message होता है और उस message के साथ इनका resume. ये unconventional approach इनका paid off with him landing 10 job interviews, 40 में से 10 job interviews तो इनको मिले, ultimately helping him launch his career एक mobility startup के साथ. और इनका ये जो different path था इसकी इतनी तारीफ हुई कि लोगों ने इनके इस creative तरीके को appreciate करना शुरू किया. And the places where he actually had applied for job, वहाँ पर भी लोगों ने इनके इस creative idea की तारीफ करते हुए details social media पर डाले. Apparently इनका donut box was designed like this, जिसके अंदर डोनट्स तो थे, इट वॉज नॉट एन एम्प्टी बॉक्स बट अ बॉक्स फिल्ड विद अ बिट ऑफ डोनट्स इन इट. और इसमें लिखा हुआ था, मोस्ट रेज्यूमेज एंड अप इन ट्रैश, माइंड इन योर बेली. और फिर इन्होंने अपना एक छोटा सा डिटेल जो है ये भी डाला, सेइंग हाय, दिस डिलीवरी इज नॉट अ मिस्टेक, आई प्रिटेंडेड टू बी अ पोस्टमेट्स डिलीवरी गाय टू एंश्योर माई रिज्यूमे वॉज डिलीवर्ड टू यू पर्सनली. और उसके साथ इनका ये अनकन्वेंशनल तरीका, चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ ईमेलिंग या फिर अपना जो पोस्ट नोट है, हैंड रिटन रिज्यूमेज है, ये आप ले जाकर फिजिकली ऑफर करते हो, डिलीवर करते हो एट द ऑफिसेज वे यू वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स, तो वो थोड़ा हटकर इनका जो आइडिया है काम आया. सो इट वॉज रियली अमेजिंग एंड ऑफकोर्स समथिंग क्रिएटिव विच हैज़ वर्कड आउट फॉर दिस गाय. कभी कभी ना आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचनी भी पड़ती है, करनी भी पड़ती है टू अचीव योर ड्रीम्स. तो आज का क्या बकते हो स्टोरी, होपफुली यू हैव गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एज वेल. आपके लिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फिलहाल 7 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. लेटर दिस आवर लेकर आएंगे व्हाट्सएप ऑकलैंड, विल टॉक अबाउट क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में, इसकी भी चर्चा आपके साथ हम जरूर करेंगे.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: सुपर सिटी ऑकलैंड में हो रहे बहुत से इवेंट्स जिनका हिस्सा बन सकते हैं, स्पेशली इस वीकेंड इतने सारे इवेंट्स होने वाले हैं. एक बहुत ही स्पेशल भगवद गीता डिकोडेड मास्टर क्लास जो है ये हो रहा है, जो कल रहेगा 7:30 PM टू 9 PM. आई डोंट नो इफ द रजिस्ट्रेशन आर स्टिल ओपन और नॉट, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और अभी आप इसके बारे में सुन रहे हैं तो यू कैन विजिट chinmaya.org.nz और वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन आपको करने होंगे इसका हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि चिन्मया मिशन आपको कर रहे टू दिस भगवद गीता डिकोडेड मास्टर क्लास, जिसे आपके लिए लेकर आएंगे वेदांत ट्रेन्ड वेदांत टीचर बी आर ईशान चैतन्य. और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इट्स हैपनिंग टुमारो 7:30 PM टू 9 PM न्यू लिन कम्युनिटी सेंटर मेन हॉल में 45 टू टारा एवेन्यू न्यू लिन. एंट्री तो फ्री है लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर जरूर करना पड़ेगा. ऑन दी अदर हैंड, लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि आपके लिए लेकर आ रहे हैं मेघ उत्सव, जहां पर ये बहुत ही वाइब्रेंट मानसून फेस्टिवल है भारत का, जो यहां पर ऑकलैंड में आपको सेलिब्रेट करने को मिल रहा है. और ये रहेगा इसी शनिवार को, दिस सैटरडे 8 अगस्त, माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल आप पहुंच सकते हैं. इसके लिए 4:30 PM टू 8:30 PM ये रहेगा. एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री और इसमें भाग लेने के लिए आपको बस पहुंच जाना है माउंट एल्बर्ट वो मेमोरियल हॉल. और यहां पर बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, ट्रेडिशनल इंडियन डांस होगा, म्यूज़िक होगा, ऑथेंटिक इंडियन फूड आप ट्राई कर सकते हैं. और बच्चों के लिए स्पेशल किड्स कोना भी है, जहां पर आपके बच्चे जो है अपना दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, सेफली स्पेंड कर सकते हैं. हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स एंड एक्टिविटीज़ भी रहेंगे, जो कि आप ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं. साथ ही साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट रामलीला, अ टाइमलेस स्टोरी एंड इटर्नल सेलिब्रेशन, जो कि रहेगा इसी सैटरडे 8 अगस्त को वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापाटोटो. इसके लिए आप पहुँच सकते हैं. टिकट्स तो सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट रिमाइंडिंग यू ऑल कि यहाँ पर रामलीला प्रेयर्स 5 PM से शुरू होंगे और 6 PM से जो परफॉर्मेंस है ये शुरू होगा. इफ़ यू नीड एनी डिटेल्स अबाउट द शो और अगर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं बिफोर इट हैपन्स दिस सैटरडे, तो मास्टर अशोक से 02117954 पर आप बातें कर सकते हैं. एंड फाइनली द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट 22nd and 23rd of August को एट बर्कनहर्ड स्काउट्स हॉल, जहाँ पर अगर आप किसी भी लेवल के प्लेयर हैं, किसी भी स्किल लेवल के प्लेयर हैं ऑफ कैरम, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो खुद को रजिस्टर करना होगा. एंड फॉर दैट यू कैन विजिट न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर आप NZCA के जो प्रेसिडेंट है पंकज मोंगा, इनसे बातें कर सकते हैं 02109085067 पर.

0: A secret destination. Two lucky people. One unforgettable adventure.
1: On vacation.
2: Take a trip.
3: Get away.
0: Plus, $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum.
4: I'ma get away.
0: Listen on 104.2 FM and Rover.
5: डिब्बा खुल गया
6: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
7: जब कशिश स्पाइसी से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
6: डिब्बा खुल गया।
7: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
9: Hello. NZHL helps you get ahead on your mortgage without needing a sugar mama, faking a back injury for the payouts.
10: Oh, my back.
9: Becoming a contributing member of OnlyToes.com. Doing your own dental work. Then cashing in with the Tooth Fairy.
11: Score.
9: Selling your swimmers, staycationing in Hamilton, dumpster diving, moonlighting, scrimping, skimping, re-gifting, login sharing, or sucking up to your rich lip-kissing uncle. Mwah. Nope, there's a better way to have a mortgage and a life with NZHL.
12: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
13: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
14: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
15: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
16: Yeah.
15: Hum.
16: Teri bass hai faadu. Meri highs ke liye.
15: Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
18: 22 मिनट हो रहे हैं 9:00 और आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आपने सुना होगा कि जो आपकी किस्मत में है वो कैसे भी आपको मिलेगी जरूर। कभी कभी वो हमें मिलती भी है पर शायद हम उस सिचुएशन में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं एंड वी मिसअंडरस्टैंड इट एंड इट स्लिप्स अवे। बट इफ़ इट्स मेंट फॉर अस तो कितनी बार भी वो स्लिप अवे कर जाए वो हमारे पास आती ज़रूर है। एंड ऑन द सेम नोट एक ऐसी ही स्टोरी जो आई थिंक सामने आई है जिसके बारे में आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं। तो ये स्टोरी है ऑल द वे फ्रॉम इटली, यहाँ से, जिसके बारे में कहा गया कि एक महिला है जिन्होंने लोटो जो है ये खेला था, विच वॉज अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट, विनिंग अमाउंट जो था न्यूजीलैंड $2 million। और इसका जब इन्होंने टिकट जो है ये लिया, शी ऑलवेज प्लेड द सेम नंबर्स जिसमें इनके कुछ लव्ड वंस के स्पेशल डेट्स जो है ये मेंशन थे। और जब इन्होंने ये लोटो खेला तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे द नंबर्स वर आउट, बिफोर शी कुड चेक द नंबर्स की क्या कुछ नंबर्स है, शी वेंट टू अ लोकल स्टोर जहाँ पर इन्होंने जो स्कैनिंग मशीन है उसमें ये टिकट अपना जो है ये चेकआउट किया। एंड द मशीन इंडिकेटेड इट वॉज नॉट नॉन पेएबल, मशीन में आया नॉन पेएबल। और जब ये इन्होंने देखा तो शी वॉज लाइक कि प्रॉब्ली शी डिडंट विन, टिकट में पैसे ही नहीं है, मतलब जीते नहीं इन्होंने। सो शी थ्रू द टिकट अवे इन द बिन एट दैट पर्टिकुलर स्टोर। उसके बाद टिकट जब फेंकने के बाद ये घर वापस आई, इनको इस बात का एहसास हुआ जो विनिंग लॉटरी नंबर्स थे वो द एग्जैक्ट नंबर्स दैट शी हैड प्लेड फॉर, यानी शी वॉन द बिग प्राइस ऑफ $2 million. तो शी रश्ड बैक टू द सेम स्टोर जहां पर इन्होंने ये लॉटरी की टिकट जो है ये फेंकी थी. आफ्टर रशिंग बैक टू द स्टोर ये महिला जो है इनको ये पता चला कि रबिश जो है ये तो वहां से क्लियर हो गया. गार्बेज कलेक्टर्स केम और उन्होंने वो बिन एम्प्टी कर दिया. जो लॉटरी विनर है इन्होंने फिर उसके बाद में चलकर जो रबिश कलेक्शन कंपनी है इनको कॉल किया. इनको कॉल करने के बाद दे एक्चुअली हेल्प्ड हर ट्रेस द टिकट्स पाथ और फिर इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट की ये पूरी की पूरी जर्नी कि टिकट कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कलेक्ट हुआ, कहाँ फेंका गया. एंड विदाउट मच होप ऑफ फाइंडिंग इट इन्होंने फिर भी कोशिश की एज इट हैड ऑलरेडी बीन पिक्ड अप बाय द गार्बेज ट्रक. आफ्टर इन्होंने गार्बेज ट्रक आइडेंटिफाई किया जिसमें ये रबिश था, उन्होंने लोगों को काम पर लगाया और उसके बाद मेहनत करते हुए आफ्टर अ डे ऑफ सर्चिंग इनको फाइनली ये टिकट मिल गया. और कमाल की बात ये थी कि ये टिकट वन पीस में एज इट इज मिला, ना तो टुकड़े हुए, ना तो बारकोड गायब हुआ, ना तो नंबर्स मिटे. वन पीस में दे लोकेटेड द टिकट एज इट इज और फाइनली शी वॉज एबल टू क्लेम हर $2 million विनिंग अमाउंट. नाउ इज़न दैट अमेजिंग. इसीलिए तो कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में है, जो आपका है, वो आपको मिलेगा जरूर, नो मैटर कितनी बार भी वो आपसे दूर जाए. एंड द सेम थिंग हैड बीन प्रूवन इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी एज वेल. कैमिन, अब थोड़ी देर बाद आपको भी हम दे रहे एक ऐसा ही मौका. इफ इट्स इन योर किस्मत ये आपका हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी जस्ट द वे दिस लेडी ट्रेड डिड. और क्या है ये जानने के लिए आप सुनते रहिएगा.
15: Bollywood's most wanted.
1: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना A game.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
3: Time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
4: This Thursday.
5: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetners, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
4: See online for T's and C's.
6: It's business month at Warehouse Stationery with big deals on business essentials. Take 20% off Jasper J Emerge office furniture and save $80 on a Brother laser printer, now $299. Don't miss big deals for your business at Warehouse Stationery. Conditions apply.
7: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: What's going on?
11: चलिए व्हाट्स गोइंग ऑन आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं तो लेट्स चेक आउट की आज व्हाट्स गोइंग ऑन में क्या कुछ अपडेट्स जो है ये आपके लिए है. सबसे पहले तो आपको हम याद दिला दे, देयर सो मेनी थिंग्स जो हो रहे हैं और इस पर अपडेट्स जो है ये आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं. आज हमने आपको बताया भी है कोल्ड स्नैप के बारे में, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में आज रात और कल फोरकास्टर्स ने वॉर्न किया है कि माइनस डिग्री टेम्परेचर्स जो है ये डबल डिजिट्स में भी जा सकते हैं. एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल साउथ आइलैंड जो है यहाँ पर माइनस जो टेम्परेचर है ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इट्स गोना बी रियली वेरी कोल्ड. इसके अलावा आपको हम याद दिला दें कि आज बहुत से पेट्रोल स्टेशंस पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में पेट्रोल जो है ये मिलेगा. इट्स अ गुड डे टू यू नो फिल अप बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको काफ़ी फायदा दिला सकता है व्हेन इट कम्स टू सेविंग मनी एंड फिलिंग अप इन द करंट सिचुएशन, जहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस आर क्वाइट हाई और डिफिकल्टी होती है ऑन अ रैंडम वीकडे कभी भी आप फिलअप जो है ये कर सके. तो डिस्काउंटेड डेज जो आपको मिल रहे हैं उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं. एंड टुडे इज वन ऑफ दोज डेज जहां पर ये आपको जरूर मिलेगा और ये डिस्काउंटेड फ्यूल आप इससे बेनिफिट जो है ये कर सकते हैं. साथ ही साथ आज आपको हम बताना चाहते हैं एक बहुत ज़रूरी स्टोरी अबाउट अ यंग फादर हु इज़ बैटलिंग विद अ रेयर कैंसर, और उनके लिए लाइफ में जो सिचुएशन अभी है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन बाय वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़ चैनल्स इन न्यूजीलैंड. 33 ईयर ओल्ड ऑकलैंड फादर हैं और इनके बारे में ये बात सामने आई है दैट ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट आफ्टर ही वॉज डायग्नोज विद अ रेयर एंड अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर. इनका नाम है सैम वुड और इन्हें एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर से डायग्नोज किया गया, अ कैंसर ऑफ द बाइल डक्ट्स बेसिकली, जिसके बाद चलकर डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि एक लार्ज ट्यूमर है ऑन हिज लिवर एज वेल एक रूटीन स्कैन के दौरान. इस डायग्नोसिस ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी बट इट ऑल्सो ब्रॉट सम इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इनकी जिंदगी में. सैम के बारे में बताया गया है, रिसेंटली इनकी शादी हुई इनके पार्टनर जेस के साथ, हु प्रपोज्ड आफ्टर डॉक्टर्स टोल्ड देम कि कीमोथेरेपी जो है ये काम नहीं कर रहा है. द कपल हैड अ प्राइवेट वेडिंग एट देयर होम. उनकी यंग डॉटर है एथीना और ये प्रपोजल रिंग जो है, इनफैक्ट सैम ने अपनी बेटी के थ्रू ही अपनी पार्टनर को दिया था। सैम का कहना है कि इनका बिगेस्ट मोटिवेशन राइट नाउ उनकी जिंदगी में उनकी बेटी है एंड ही विशेस टू सी हर ग्रो अप। उनका कैंसर जो है ये उनके लंग्स तक बढ़ चुका है एंड इज नाउ रिसीविंग अ टारगेटेड ट्रीटमेंट जिसका कॉस्ट बताया गया है $13,000 पर डोज, क्योंकि ये पर्टिकुलर डोज पब्लिकली फंडेड नहीं है, तो इनको $13,000 पर डोज जो है ये अफोर्ड करना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। एक फंडरेजर सेटअप किया गया है टू हेल्प कवर हिज ट्रीटमेंट, लिविंग कॉस्ट और चाइल्ड केयर एट द सेम टाइम। डिस्पाइट जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, सैम ने कहा है ही इज फोकस्ड ऑन स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ टाइम जो उनके पास बचा है। उनका कहना है आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फाइट फॉर हिज डॉटर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को बढ़ते हुए देख सके। सो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी एंड इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टोरी एट द सेम टाइम, बट समटाइम्स कुछ स्ट्रेंजर्स ऐसी ही सीख आपको लाइफ में दे देते हैं। द थिंग दैट दे फेस इन लाइफ, द सिचुएशंस दैट दे फेस इन लाइफ, अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि यू नो योर लाइफ might be a blessing for you जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। एंड आई वुड से फॉर मी टूडे इट इज़ सेम। इमेजिन इट्स सच अ यंग एज, 33 years old, सभी के कितने सपने होते यार। पीपल हैव सच बिग प्लान्स, पीपल हैव सच अमेजिंग प्लान्स कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाय दिस एज आई विल बी एबल टू डू दिस, बाय दिस एज आई विल गेट माय हाउस, और बाय दिस एज आई विल गेट माय ड्रीम कार, आई विल लैंड माय ड्रीम जॉब। और बच्चों को लेकर कितने प्लान्स बनाते हैं पेरेंट्स, एंड ही इज अ यंग फादर, सो ऑफ कोर्स ही हैड सो मेनी ड्रीम्स। लेकिन अब फाइट टू सर्वाइवल इज बेसिकली कि वो अपनी बेटी को बढ़ते हुए देखना चाहते, ही वांट्स टू सी हिज डॉटर ग्रो अप, लेकिन वो उनके हाथ में ही नहीं है। एंड आई जस्ट होप थिंग्स वर्क आउट फॉर हिम। जैसे कि अभी हमने आपको बताया भी है, देयर इज पब्लिक फंड रेजिंग गोइंग ऑन फॉर हिम, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने बच्चे के चाइल्ड केयर के लिए, और साथ ही साथ ये जो डेली डोज ऑफ $13,000 कॉस्ट इनका जो है ये वो कवर करने के लिए पैसे जो है ये इकट्ठा कर रहे हैं। एंड रियली होप थिंग्स वर्क आउट फॉर हिम। बाय द वे, आपको पता है कि सैम जो है बाय प्रोफेशन ही इज अ लॉयर, एक वकील है ये, तो थिंग्स आर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम एट दिस स्टेज एज वेल। अगर इस स्टोरी में कोई और डेवलपमेंट आता है तो डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे, बट this story hopefully reminds you all that life is a blessing and we should appreciate life at every moment because we don't really know ki life mein kab kya kaise ho jaye. Things are definitely beyond our control.
0: Let's go
8: straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ PMI, your local

तो चलिए धर्म ने आपसे कहा था कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका हम लेकर आएंगे और अगर आपने इस मौके को ग्रैब किया तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू विटनेस समथिंग सो बिग एंड सो अमेजिंग. क्या है ये समथिंग सो बिग एंड सो अमेजिंग? इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं. करण औजला लेकर आ रहे हैं अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर जो कि होने जा रहा है इसी महीने 25 अगस्त को और स्पार्क अरेना में ये रहेगा जहां पर इनके साथ परफॉर्म करने वाले इनके स्पेशल गेस्ट इकी और एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ हिट सॉन्ग्स इनकी इनक्रेडिबल एनर्जी इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंसेस आप एंजॉय कर सकते हैं. टिकट्स के लिए विजिट करें livenation.co.nz या hum.rova.nz. पासेस जीतने हैं तो विजिट करें हम 104.2 FM फेसबुक पेज पर. आपको एक पोस्ट मिलेगा करण औजला का, उस पोस्ट को लाइक करना है. कमेंट सेक्शन में करण औजला को टैग करते हुए इनके लिए एक मैसेज जो है ये आपको डालना है टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ टू विन.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: चलिए इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने की जाने का समय हो रहा है। और सबसे पहले तो आप सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ब्रेकफास्ट शो में मुझे कंपनी करने के लिए। अभी जा रहे हैं, वादा यही कि कल एक बार फिर आएंगे आप सभी का साथ देने के लिए आज के हमारे सफ़र के लिए। तो शुक्रिया, शुक्रगुजार हम है ही आपके, लेकिन कल एक नए सफर के साथ, एक नई सुबह की शुरुआत आपके साथ हम जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर थर्सडे।

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में 10:03 हो चुके हैं। आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ। 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा। थोड़ी देर बाद कुछ और करेंगे, लेकिन अभी के लिए या थोड़ी सी आवाज़ में खराश है, पानी पीकर आती हूँ, लेकिन एक गाना बजा देती हूँ आपके लिए तब तक।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: मेरी एक एक्सपर्ट के साथ बातें हो रही थी और कभी कभी हमें लगता है ना कि हम अपने आप को रीअश्योर करने लग जाते हैं कि हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने टेस्ट कराते हैं वो ब्लड शुगर फास्टिंग के कराते हैं या पोस्ट ब्लड के करवाते हैं, और इस तरह से आपको पता चल जाता है कि देयर इज नथिंग रियली टू वरी अबाउट, बट बॉडी जो हमारी है अंदर से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन कभी कभार निकाल देती है, कभी कभी लेबोरेटरी में नंबर शायद नहीं पहुंच पाती, बट एक मेटाबॉलिक हेल्थ जो है हमारी सजेस्ट करती है कि जो ब्लड शुगर जो परफेक्टली नॉर्मल रहती है इवन जब हमारी बॉडी यू नो डिसफंक्शन की तरफ जा रही होती है, दिस इज़ बिफोर डायबिटीज़ इज़ डायग्नोस्ड, और ऐसे में आप एक इस फेज से गुजर रहे हैं अगर तो आपका बॉडी थोड़ा हार्ड वर्क करने लग जाती है, यानी कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम आपकी मास्क हो रही है जो कि रिवील नहीं की जा रही बिकॉज ऑफ द ब्लड टेस्ट। लेकिन ये नॉर्मल ब्लड शुगर इज़ नॉट द सेम, आप ये नहीं कह सकते आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ एकदम बढ़िया है, एक रीज़न है जहाँ पे समथिंग विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये कंडीशन है जो डेवलप होती है साइलेंटली और कई बार अननोटिस जाती है। कई लोगों को ऐसा होता है, कई लोगों के लिए जो पैनक्रियाज हैं वो ओवर टाइम काम करती है, इट रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन, और ये ग्लूकोज की जो लेवल्स होते हैं वो विद इन नॉर्मल रेंज रखती हैं। पेपर पे तो सब कुछ ठीक ठाक नज़र आता है लेकिन बॉडी फिर भी स्ट्रगल कर रही होती है, और इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको हेल्प करते हैं आपके ग्लूकोज जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में, जो आपके ब्लड सेल्स में जाता है, इट इज़ व्हेन इट इज़ यू नो यूटिलाइज्ड बाय यूजिंग योर एनर्जी, और जब ये सेल्स जो है काफ़ी कम रिस्पॉन्स देते हैं ये पैनक्रियाज जो है इसे कॉम्पनसेट करती हैं जहाँ पे ये इसमें ज़्यादा एफर्ट्स प्रोड्यूस करती है और ये मेनटेन करते हैं नॉर्मल आपकी ब्लड शुगर। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ नॉट अबाउट डायबिटीज़, रिसर्च के ज़रिए पता चलता है कि ये अफेक्ट करता है हमारे कई ऑर्गन्स को जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है, और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पता चलता है कि एक अर्ली वार्निंग साइन आती है टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसमें हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स ये होते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई यू आर लुकिंग हेल्दी, लेकिन आपका जो ब्लड रूटीन का टेस्ट है वो सब सही जा रहा है, लेकिन कुड बी अ लॉन्ग रिस्क ऑफ डिजीज। डोंट वरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, लेकिन एक बात बता देती हूँ, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी इंपॉर्टेंट होती हैं जहाँ आप एडिशनल मेजर्स लेते हैं। जब आपके डॉक्टर्स आपसे कहते हैं फास्टिंग इंसुलिन, तब ये आपकी पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती हैं, आप जब फास्ट कर रहे होते हैं हाई फास्टिंग इंसुलिन, ये सजेस्ट करती है कि बॉडी कॉम्पनसेट करे फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके साथ साथ होमा IR यानी कि होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये एक सेपरेट ब्लड टेस्ट नहीं है बट ये कैलकुलेटेड वैल्यू होता है जब आपका यू नो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड फास्टिंग इंसुलिन लेवल को चेक करता है और फिर वैलिडेट करता है मेडिकल कैलकुलेटर्स को कि या फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि यू आर फाइन। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये रिसर्च जो होती है इस बारे में होमा IR की, ये आपकी रूटीन टेस्ट जो होता है ये रिकमेंड नहीं करते लोग कि भाई ऐसा करो या कुछ देखो, यूनिवर्सली ये कोई एक्सेप्ट या कट ऑफ नहीं करता कि भाई ये ऐसा होता है कि नहीं होता। बट कल रात को जब मैं बैठ के इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैं सोचा आई हैव टू टेल यू डेफिनेटली, अगर कोई ओबेसिटी है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली में कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, फैटी लीवर डिजीज़ की, या फिर PCOS है आपको, या एक मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है, तो डेफिनेटली यू नीड टू प्रोवाइड दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू योर डॉक्टर्स। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है ये रिस्पॉन्ड करती है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, स्पेशली अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाती है और जब आपकी ब्लड शुगर जो है एबनॉर्मल होती है उससे चेंज होने के लिए, रिकवर करने के लिए इट हेल्प्स, इजंट इट ग्रेट। तो क्या करना पड़ेगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, एरोबिक्स या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, अपने बॉडी के वेट को मेंटेन कीजिए और ईट बैलेंस्ड फूड, यहाँ वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, दाल हैं, नट्स हैं, हेल्थी फैट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। अच्छी नींद, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेस को मैनेज करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, अवॉइड टोबैको एंड लिमिट योर अल्कोहल इनटेक एज वेल. आई होप ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इनसे कुछ कहीं पे भी आपको जरा सा फर्क पड़े तो मैं समझूंगी कि इट्स ग्रेट. ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट.
0: माय टाइम विद कशिका.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezaar kis baat ka? Aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye. Shan Foods, asli swaad har ghar ke liye.
2: MediaWorks complaints. How can I help?
3: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
2: Thank you.
3: It's all I can think about.
2: What does it sound like?
3: Yeah, I'd rather not.
2: Go on, why don't you have a crack?
3: Okay, got a plumbing problem.
2: Oh, I need a bit more than that.
3: They've got your back.
2: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
3: Oh, okay.
4: There's no better plumber to give it a crack.
2: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
3: No, I want a plumber.
5: Advertise with
6: MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
7: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
8: IKEA.
9: TradeDepot.co.nz.
10: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 7kg clothes dryer just $249. 9kg heat pump dryer just $499. 10kg 9-star energy rated heat pump dryer $899. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
11: Flights to the Gold Coast now on sale with Qantas. Trade winter layers for sunshine, beach walks, rooftop cocktails and unforgettable family adventures. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
12: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
13: Office Shoutout.
14: ऑफिस शार्ट आउट की बात आ रही है तो मेरे पास इस समय माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हिल गई मैं, बट कभी कभी सीट से हिल जाते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है. बट मंजूषा, आप मुझे सुन रही हैं पुकेकोई से, थैंक यू सो मच. एंड नीता देसाई, आप मुझे पुकेकोई से सुन रही हैं एंड यू आर इन्जॉइंग द ब्यूटिफुल ट्रैक्स. आपको एक पर्टिकुलर सॉन्ग पसंद आ रहा है जो मैंने सोचा चलो अब आपके लिए थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन Stay tuned, keep humming on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. लेकिन इसके साथ साथ भाई करण औजला आ रहे हैं और ये 25 अगस्त के दिन यानी कि hardly 20 days are left. तो अगर आप इस रात को 25 तारीख को और भी लिट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा मैसेज आपको करण औजला को भेजना है. अब आप पूछ रहे होंगे कहाँ, तो ये हमारे फेसबुक के पेज पर आप पहुंच जाइए एक डबल पास जीतने के लिए. वहां पे एक पोस्ट है, उसमें एक मैसेज लिखिए करण औजला जी को, आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड कर देंगे. वैसे हम rova.nz के जरिए या livenation.co.nz के जरिए आप हमें हमसे यह इन्फॉर्मेशन भी और ले सकते हैं. लेकिन अभी के लिए मैं कह सकती हूँ स्पा करीना जाने की तैयारी ज़रूर कीजिए एट ऑन आई कैन से दैट 25th of August.
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: वैसे एक बात तो है कि ऑकलैंड इज ब्रांचिंग आउट और लॉन्ग अवेटेड सिटी रेल लिंक CRL पैसेंजर्स के लिए सेकेंड संडे ऑफ सितंबर जो है ये 13 सितंबर को खुलने वाला है। और अकॉर्डिंग टू एक बिलबोर्ड जो है वो देखा गया और उसमें एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ गया कि लोगों ने कहा अरे ये तो बाय मिस्टेक चला गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये ऑफिशियल हो गया एट द के रोड स्टेशन, जहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं ये रिवील हो रहा है। और मेयर ने खास तौर पे कहा कि दिस विल ओपन ऑन फ्राइडे, तो ये अब पता नहीं कि इट्स नॉट फ्राइडे बट इट इज़ गोइंग टू बी संडे एंड ओके CRL विल ओपन ऑन 13th of September। एक छोटा सा उनका मेरे ख्याल एरर हुआ था बोलते समय, बट ऑफिशियल रिबन कटिंग विल हैपन अ कपल ऑफ डेज बिफोर, सो वी आर ऑल सेट इन फॉर दिस। और ये 5.5 बिलियन का अंडरग्राउंड ट्रेन टनल 3 नए स्टेशंस के साथ विच विल बी टेकिंग इन न्यू पैसेंजर्स एंड अदर पैसेंजर्स, और कहा जा रहा है कि दिस विल बी इंटरेस्टिंग। वेल चलो ये यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, सो कुछ हर्डल्स बीच में ज़रूर आए थे जहाँ पर इन्हें क्रॉस ज़रूर कर लिया गया, लेकिन ये कंप्लीशन जो था कंस्ट्रक्शन का लेट जून में ख़त्म भी हो चुका था। सो यस, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्साइटमेंट, यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन। ये जो है 3.5 किलोमीटर्स का टनल, आई वुड लव टू गो बाय इट। सो ये दिस इज़ अंडर द CBD और फिर ये एग्जिस्टिंग सबर्बन ट्रेन के स्टेशंस को ज्वाइन करने वाला है। वाओ, आज वैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आदित्य नारायण भाई, इनको इंडियन आइडल में मैं बहुत पसंद करती हूँ जैसे होस्ट, बट हाँ गाते भी बहुत ही झूम कर है, मज़ेदार। तो चलिए सुनते हैं बर्थडे बॉय को।

द मच अवेटेड रामायण का ट्रेलर ऑफ कोर्स लास्ट वीक हम लोगों ने देख ही लिया था, लेकिन इसके साथ साथ ये कॉन्टेम्पलेशन हो रहा था कि दिवाली की रिलीज, यानी कि दिवाली इज फॉलिंग ऑन 8th of November, राइट? लेकिन क्या ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स वाले दिन, दिवाली के दिन मूवी रिलीज होगी या कब रिलीज होगी? एक स्पेकुलेशन था 30th October के दिन ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसकी जो डेट है रिलीज की 6th of November की डेट तय हुई है. एंड ये पता चल रहा है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में 6th of September के दिन रामायण फिल्म जो है ये रिलीज की जाएगी. सो वी आर ऑल गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट.

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: This Thursday.
2: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvainers, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
1: See online for T's and C's.
3: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ. अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
9: Dream Diary की बात करती हूँ तो आपको सपना आ रहा था कि टेस्ट बट टेस्ट रिप्रेजेंट करता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन इन योर लाइफ और कभी कभी आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो आपने पहले शायद नहीं किया और ये कंपटीशन फेस कर रहे हैं आप और इस सिचुएशन से आपको पता नहीं कि कोई गारंटी आपको मिलेगी नहीं लेकिन सिचुएशन आपको आपकी एबिलिटीज़ के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है. सो ये टेस्ट जो है आपका रिफ्लेक्ट कर सकता है एक फाइट एक असमंजस एट यू नो एक कन्फ्यूजन या फिर एक सेंस ऑफ प्रेशर एक सिचुएशन जहां आप फील करते हैं दैट यू नो योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ आल्सो ऑन लाइन विद दिस. तो अगर आपको लगता है आप ये टेस्ट दे रहे हैं या देने वाले हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. चलिए दिल से दिल तक की तरफ हम बढ़ते हैं और एक ऐसे ट्रैक की तरफ चलते हैं जिनका बर्थडे आज सेलिब्रेट भी किया जा रहा है. दैट्स नन अदर देन विशाल भारद्वाज. कितने गाने कितनी इनके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें जो थी वो आगे आई थी और पर्टिकुलरली जब इनकी मूवी ओंकारा यू नो ओंकारा 2006 में आई तो उसके बाद से ही नेवर लुक बैक.
8: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: चलिए पहुंच चुकी हूं मैं अब थ्रोबैक की तरफ. जो 0800 रचना आपके लिए इधर उधर जाने से बचना ये लेकर आ रही हैं. कल इनके साथ टेलीफोन लाइन पर बातचीत भी होने वाली है तो डेफिनेटली इनका इंतज़ार हमें रहेगा. लेकिन अभी के लिए इस पर्टिकुलर सॉन्ग को आपके लिए लेके चलती हूं. बर्थडे बॉय जो है आदित्य नारायण ने, उदित नारायण के बेटे ज़रूर हैं लेकिन इनको गाने का शौक शुरू से था. अब कैसे, हाँ देखिए सुनिए

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 11 overnight, temperature of 1 आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है एंड फ्रॉस्ट जो है वो रात तक डेवलप होती चली जाएगी हल्की हवाओं के साथ साथ. इस समय आप 6 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं. 5:41 पर सनसेट बताया जा रहा है.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? 11:03 हो रहे हैं आपकी घड़ी में और मेरी घड़ी मिलाकर. हमारे लिए माय टाइम का वक्त होता है जहाँ पर मिड मॉर्निंग मज़ा भी अब शुरू हो चुका है. वैसे प्रोग्राम की जब मैं शुरुआत करने वाली थी ना, थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था यहाँ स्टूडियो में, तो मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई थी बिकॉज योर डेस्क ऊपर नीचे हो गया था. ओके, नाउ वी आर सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम्स. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें जो है ना, छोटी छोटी बातों के साथ जुड़कर बड़ी बड़ी बन जाती हैं. ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग टू मी. लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से पहले ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता और वक्त के बाद

चाहने से भी कुछ नहीं मिलता, तो मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं नॉर्मल रहूं। ये बीच में वो एक चोकिंग फीलिंग आ गई थी क्योंकि वो एक स्प्रे ऑन हो गया था। अब पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हुआ मेरे साथ। माय गॉड, ये व्हाट हैपेंस इज दैट हमारा ये जो पैनल है ना, जिस पर हम लोग ये यू नो म्यूज़िक वॉल्यूम माइक ऑन ऑफ करते हैं, तो ये एडजस्टेबल है। एंड एक बटन है सिट, एक बटन है, एक बटन है स्टैंड। तो मैंने सोचा कि मेरी हाइट के हिसाब से, पूजा स्टॉलर, तो मैंने कहा मेरी हाइट के हिसाब से मैं इसको सिट कर देती हूँ, यानी छोटा कर देती हूँ, कम कर देती हूँ। आई डिड नॉट रियलाइज कि वहाँ पर एक डिसइंफेक्टेंट वाला स्प्रे पड़ा हुआ है। अब वो नीचे तो कर दिया, उसके साथ साथ वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी बढ़ता चला गया, वो भी प्रेस होता चला गया। आई एम वंडरिंग कि यह कहाँ से एकदम से यू नो फीलिंग आने लगी, मैं चोक होने लग गई, यू नो काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि वो स्प्रे अपने आप प्रेस होता चला जा रहा था। फॉर्चुनेटली आई कॉल्ड अप द पीपल, द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दे केम एंड सॉर्टेड इट आउट एंड इट वॉज फाइन। बट आई एम फाइन नाउ, डोंट वरी अबाउट इट। हमने स्टूडियो को खोला पूरा, उसमें से एरिएट किया, हवा आने दी, दैट्स इट। चलो गाना बजाती हूँ, पीछे का हाल तो पता ही दिया आपको। बजाओ क्या? बर्थडे बॉय आदित्य नारायण, इनका गाया हुआ ये गाना।

0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: एक बात तो है वैसे कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ना, जो हमारे बालों को हम जब लुक आफ्टर करते हैं ना, ये बोरो कर रहा है हमारे स्किन केयर का रोड मैप. क्योंकि स्कैल्प की जो फर्स्ट फिलॉसफी होती है कि आपके जो बाल होते हैं नरिश होने चाहिए, एंड आपकी जो स्किन होती है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, एंड आपकी हेयर लाइन जो है ओ माई गॉड रिसीड करने लग जाती है. सो ये डब्ड स्किनफिकेशन जो है, स्किनिफिकेशन मैं ऐसे कह सकती हूँ, ऑफ हेयर हेयर केयर, ये एक मेन ड्राइवर बन जाती है जहाँ आपकी स्कैल्प को, आपके बालों को ट्रीट करना होता है. हाई परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होती है, एक ट्रीटमेंट चाहिए होती है, एक रूटीन आपको अपना स्किन केयर का रेडी करना होता है, और ये आपके लिए एक डेली रूटीन जैसा बनने लग जाता है. सिंपल क्लेंजिंग से लेके सीरम लेड एक्टिव जो सॉल्यूशंस हैं, पता नहीं हेयर ऑयल्स हैं, शैम्पूज हैं, जिस तरह से हम अपने गार्डन में पानी देते हैं ठीक उसी तरह से हमें अपनी स्किन को भी वैसे ध्यान रखना चाहिए. हेल्थी स्कैल्प जो होती है एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाती है स्ट्रॉन्ग हेल्थी हेयर के लिए. और ये चैलेंज जो होता है तब होता है जब आप इसको बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं. ये स्ट्रेस जो आपका होता है, आप किसे इसको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि इट इफेक्ट्स योर हेयर, इट इफेक्ट्स योर स्किन एज वेल. कोल्ड वेदर, इनडोर हीटिंग, लो ह्यूमिडिटी, ये आपके स्कैल्प के लिए एक बैरियर बन जाते हैं. यानी कि ड्राइनेस, इचिनेस, फ्लेकिंग, थिनिंग, आपकी सेंसिटिविटी बालों की बढ़ती चली जाती है, और फिर बाल डिहाइड्रेटेड फील होने लग जाते हैं. हाइड्रेशन की आपको इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सो एक टेलर मेड अगर आपके पास स्किनिफिकेशन या हेयर ट्रेंड आपका जो भी है, जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि इट माइट जस्ट हेल्प यू इम्प्रूव इट. कुछ लोग जो होते हैं ये तरह तरह के सीरम्स का इस्तेमाल करते हैं, आपके जो स्कैल्प होते हैं ना वो कई बार उससे हेल्प करते हैं हेयर के सीरम के साथ. और कुछ उसमें अमीनो एसिड होते हैं, कुछ एक पोस्ट बायोटिक टेक्नोलॉजी जो होती है, पेप्टाइड्स होते हैं, ग्रीन कैवलियर, ये आपके रूट्स में अगर इन्फ्यूज़ हो जाएँ तो आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से आपके बालों को लुक आफ्टर कर सकती है. सो ये एक सेंसिटिव स्कैल्प, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट इट. फ्लेकीनेस जो है बहुत ज़्यादा लोगों में आते हैं. जेंटल क्लेंजर आपके लिए हेल्प कर सकता है आपके स्केल, आपके जो स्कैल्प की इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाने के लिए. सो कोशिश कीजिए एक जेंटल कंडीशनर का आप इस्तेमाल करें, और आप टेस्ट ज़रूर उसको पहले कर लीजिए क्योंकि आपके उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपके ठीक है कि नहीं, वो आपकी स्किन में अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हुआ है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स किस तरह है, स्किन प्रोटेक्टिव है कि नहीं, बहुत कुछ है. और ये नेचुरल जो साइकिल का ग्रोथ है ये आपका इम्प्रूव ऐसे हो सकता है.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August, and you could win one of 25 $200 Prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
11: This Tuesday.
12: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only. So hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetas, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
13: See online for T's and C's.
14: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
15: Join the Tribe!
14: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
15: join the Tribe!
16: Get fresh deals from the fresh food people at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, or yummy ambrosia apples, $4.79 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
1: तो पिछले घंटे पे मैंने बताया था कि रामायण जो मूवी है ये रिलीज होने वाली है 6th of November के दिन, और उसके बाद मैंने सिक्स वर्ड स्टोरी भी आपकी इनवाइट की थी, तो आपका टेक्स्ट आया और आपने कहा गेट स्पार्कलर्स रेडी फॉर नवंबर स्पेल्स। ओ वाओ, आपने इस चीज़ को रिलेट किया और आपने ब्रैकेट्स में लिख के भेजा कि दिस इज रिलेटेड टू द अनाउंसमेंट यू मेड अबाउट द मूवी विच इज गोइंग टू रिलीज एंड मच अवेटेड। ऑफ कोर्स रामायण रिलीज होने वाली है, सो गेट स्पार्कलर्स रेडी फॉर नवंबर स्पेल्स। वेल सेड। एंड साथ साथ अगर आप बातें कर ही रहे हैं इसके बारे में, तो मैंने सोचा चलो आपको कम्युनिटी न्यूज़ में भी कुछ बता देती हूँ। रामलीला जो है ये होने वाली है 8th of August के दिन, यानी कि परसों, एट द वैदिक सेंटर, ग्लासगो एवेन्यू। $10 की टिकट है और मास्टर अशोक से आप संपर्क कर सकते हैं फॉर डिटेल्स, जहां 02117954599 के जरिए आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ चिन्माय मिशन आपको भगवद गीता डिकोडेड की एक मास्टर क्लास में इनवाइट कर रहे हैं, जिसे सिखा रहे हैं वेदांत टीचर ब्रदर ईशान चैतन्य, और ये बेस्ड होने वाली है ऑन द कमेंट्री ऑफ पूज्य स्वामी चिन्मयानंद। ये इंटरैक्टिव सेशन होगा जो कल होगा शाम 7:30 से 9 बजे तक न्यूलिन कम्युनिटी सेंटर न्यूलिन में। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप chinmaya.org.nz के जरिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन जो है 22nd and 23rd of August के दिन बकिनहेड स्काउट्स हॉल में कंपटीशन करने वाले हैं, टूर्नामेंट करने वाले हैं। अगर आप अभी भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो पंकज मोंगा से बातें करें ऑन 0210908507। इसी वीकेंड पर होने वाला है मेघ उत्सव। सावन का महीना शुरू हो चुका है और मेघ बरस रहे हैं, ऐसे में मिस्टिक इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं कल्चरल परफॉर्मेंसेस, फूड स्टॉल्स, बच्चों के लिए एक फूड कॉर्नर, बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर, और साथ साथ गेम्स, एक्टिविटीज़, शॉपिंग के लिए ढेर सारे स्टॉल्स। अब ये होगा परसों 8th August के दिन माउंट एल्बर्ट वॉर मेमोरियल हॉल में 4:30 से 8:30 बजे तक। एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

विशाल मिश्रा क्या गाते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल ये ट्रैक था। अच्छा चलिए, इसके साथ साथ वैसे एक बात बता देती हूँ, ये रवितेज देव भी बहुत अच्छा गाते हैं। उनके डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन, भजन, कीर्तन अगर आप सुनना चाहते हैं, एक अपलिफ्टिंग इवनिंग आपके लिए तैयार की है, एक ट्रेडिशनल डिवोशन जो है आपके लिए कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट के साथ, टैलेंटेड वोकलिस्ट जो हैं और इनके साथ म्यूजिशियंस, एक वाइब्रेंट कॉन्सर्ट जो है वो आपके लिए सेटअप की जा रही है। साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं, विच इज़ बीन क्यूरेटेड बाय एनजेड कल्चरल ट्रस्ट, और ये गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी जो है आपके लिए 22nd ऑफ अगस्त के दिन शाम 7 बजे वैदिक सेंटर में होने वाला है। $30 की टिकट है। स्नैक्स एंड कावा जो है ये आपको ऑन साइट मिलने वाले हैं। eventbrite.co.nz के जरिए आप ये टिकट ज़रूर खरीद सकते हैं। बातें कर रहे थे अबाउट विशाल मिश्रा, तो विशाल भारद्वाज का आज बर्थडे भी है और उनका ये गाना वाओ।

0: शिकार।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: वैसे दिल तो बच्चा है जी, लेकिन दिल थोड़ा कच्चा है जी। रीजन इज दैट जेटस्टार का ये जो अनाउंसमेंट आया है कस्टमर मनी के लिए, जहाँ पे ओवरहेड जो लॉकर्स जो हैं एयरक्राफ्ट में, अब उनकी भी प्राइसिंग होने वाली है। यानी कि द प्राइसेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम $23 ऑनवर्ड्स। क्वांटस का जो ये लो बजट जेटस्टार का जो एयरलाइन है, ये कैरी ऑन मॉडल जो है रखने वाले हैं। पहले तो ये था कि दे वर गोइंग टू रिमूव दैट 7 किलोज का एक वेट लिमिट रखा हुआ था, राइट। पहले उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये इस साइज़ के बैगेज के ऊपर एक फीस लगाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन फ्रॉम 2nd of February 2027 जेटस्टार की जो बुकिंग्स हैं उसमें एक वन बैग अंडर द सीट, जो कि आपका बैकपैक हो सकता है, हैंडबैग हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, दैट्स इट, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर कुछ कैरी करना है, इट्स कॉल्ड द प्रायोरिटी कैरी ऑन। अब जिनको अपने साथ बैगेज कैरी करना पड़ेगा, उनको अपने लिए एक प्रायोरिटी कैरी ऑन जो है प्री परचेज करना पड़ेगा। ये एड ऑन जो है आपके लिए एक बैग एक्स्ट्रा जो है आप ओवरहेड लॉकर्स में आप अगर लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अब पहले होता था ना कि पैसेंजर्स जो पहले आ जाते थे उनको बहुत सारी जगह मिल जाती थी, लेकिन जेटस्टार ने ये जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, ये $23 वन वे कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड फ्लाइट्स में, जैसे कि डनीडन टू ऑकलैंड वन वे इट वुड स्टार्ट फ्रॉम $23, क्राइस्टचर्च टू वेलिंगटन वन वे वुड स्टार्ट फ्रॉम $28, ऑकलैंड टू ब्रिस्बेन वुड बी $34। सो थिंग्स लाइक दिस आर गोइंग टू डेफिनेटली हैपन, एंड दे रिमूव द 7 किलोज वेट लिमिट बैग फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स। इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। जो बैग का साइज़ है वो बताया जा रहा है 40x30x20 cm। ओवरहेड बैग जो प्रायोरिटी कैरी ऑन जो आपका होगा, दैट कैन बी अप टू 56x36x23 cm। ओह, दिस इज रियली सैड, इजंट इट।
0: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: This Tuesday.
8: No time, Briscoe's lady. The sale is for one day only, so hurry in for up to 60% off all electrical heating, duvetners, kitchen appliances, sheets, and much, much more. Thursday only. Open late at Briscoe's.
9: See online for T's and C's.
10: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: Rescue me, recycle me.
3: रेस्क्यू में रिसाइकिल में हम बातें कर रहे हैं अबाउट लेफ्ट ओवर रोटी। अब रोटी को आपने तवे पे डाल दिया, इसके अगर हमें पिज्ज़ा बनाना पड़ा तो कैसे करें? थोड़ा सा घी या बटर लगाइए और उसके बाद एक क्लासिक पिज़्ज़ा सॉस उसमें ऐड करिए, थोड़ी वेजिटेबल्स उसके ऊपर आप लगा दीजिए और थोड़ी सी केचप आप अपने ऊपर से डाल दी, थोड़ी ग्रेटेड चीज़ उसके ऊपर से डाल दी और काली मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगानो, बस दैट्स अबाउट इट। ये आप अटेम्प्ट मत करना अगर आपकी रोटी थिन है, पतली है। ज़रूर आपकी रोटी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, जो मोटी रोटियाँ जो होती हैं, और फिर उसको आप एक हल्का सा ढक्कन लगा दीजिएगा और फ्लेम पे, लो फ्लेम पे उसे पकने दीजिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स पक जाएंगे, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, चलो मिलकर खाते हैं फटाफट ये एक अमेजिंग सा चपाती पिज्ज़ा। चलो ये चपाती पिज्ज़ा हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, आई वुड लव टू ट्राई दिस आउट। बट आई हैव अ न्यूज़ विच आई वुड लाइक टू शेयर। मैं डनीडन गई थी कुछ एक दो साल पहले और 1877 में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 21-room मैंशन जो कि डनीडन के सदर्न कोस्ट में था, वो इट्स कॉल्ड द कागल्स कासल। और उसके बाद यू नो इट वॉज़ ब्रॉड बैक कि इसको हम दोबारा से रीडू करके उसको फिर से हम लेकर आएंगे। तो उसमें इन्होंने 1900s में इस पैलेस, इस कासल को बेच दिया था और फिर इसका डेमोलिशन होने वाला था इन 1990। बट उसके उस समय के ओनर्स ने वहाँ डोनेशन लेने के बाद इसकी डेमोलिशन जो है उसको रोक दिया और फिर काम करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे एक कागल्स कासल ट्रस्ट जो है वो स्टीवन ने तैयार की। ये अब जो है ये वहाँ पर एक नाइट क्लब और एक उस तरह का एक वेन्यू जैसे बन गया था, बट विच वॉज़ नॉट वेरी वेरी लीगल। इट वॉज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर हैविंग अ अल्कोहल और समथिंग लाइक दिस। बट ये साइट जो है वेरियस ओनर्स के थ्रू निकल के गए। एट वन स्टेज द करंट मेयर की फैमिली ने भी इसको ओन करने की कोशिश की थी, बट इस पर काम चलना शुरू हो गया। हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर इस पर लगाए भी गए थे, बट द मेजोरिटी ऑफ द रिपेयर्स जो है वो वापस टूट टूट कर वापस निकल कर आ रहे थे। नाउ द थिंग इज दैट दे आर सेइंग दैट ये जो है ये कोस्ट लाइन पर है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ता चला जा रहा है। हाउ सैड इज दैट, आई होप इट डजंट कम डाउन।
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है गुरुवार, बृहस्पतिवार या वीरवार, जो भी इसे कहना चाहें। मेरी मुलाकात आपसे होगी TGIF के मूड में, यानी कि शुक्रवार के मूड में। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें सभी को याद रखिएगा एंड स्टे वार्म। गरम गरम पानी, मतलब कोसा कोसा पानी, मतलब पूरा दिन अगर आप पीते रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी में एक वो ठंडक जो है ना वो बैठेगी नहीं। कोशिश कीजिएगा कि मेरे जाते जाते ये जो टिप है आप ज़रूर संभाल लें, ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट इन ठंड के दिनों में। ठंडा पानी तो मतलब टैप वाटर बिल्कुल भी मत पीजिए, आप कोशिश कीजिए दैट। एनीवे, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्व्स एंड सी यू टुमारो।

0: $1,000 spending money. The biggest mystery giveaway is coming to Hum. I'ma get away. Listen on 104.2 FM and Rover.
1: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
2: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800